शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
0: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: ये है कैसा जादू मेरे लिए, तो सच भी भरम है। सुनिए
0: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए,
0: कहिए कहिए।

0: एक सिपाही, एक छोटा सा पपी और एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। रिन टिन टिन। जब एक बेघर पपी हॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां किसी राजा या किसी बिलियनर की नहीं होती, कभी कभी वो कहानी एक छोटे से पपी की होती है। एक ऐसा पपी जिसकी आंखें भी पूरी तरह नहीं खुली थी, जिसके पास ना घर था, ना माँ थी, ना कोई सहारा, और फिर भी उसने ना सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि एक पूरी डॉग ब्रीड का भविष्य बदल दिया। आज की कहानी सिर्फ एक डॉगी की नहीं है, ये कहानी है दया की, एक मौके की, और इस बात की कि कभी कभी दुनिया बदलने के लिए बस एक इंसान का रुक जाना काफी होता है। चलिए आज से लगभग एक सदी पहले चलते हैं। पहला विश्व युद्ध, World War I। हर तरफ गोलियों की आवाज, बॉम्ब के धमाके, टूटे हुए घर, जली हुई जमीन, धुआं ही धुआं, हवा में बारूद की गंध, और हर तरफ सिर्फ एक चीज, खामोशी। वो खामोशी जो किसी बड़े युद्ध के बाद रह जाती है। फ्रांस के एक इलाके में एक अमेरिकन सिपाही चल रहा था। वो युद्ध के बाद के मैदान का जायजा ले रहा था। हर तरफ तबाही थी, लेकिन इसी खामोशी के बीच उसने एक बहुत हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। वो उस आवाज की तरफ बढ़ा, एक टूटे हुए केनल के पास, और वहां उसने जो देखा उसने उसका दिल हिला दिया। मिट्टी और पत्थरों के बीच 5 छोटे छोटे जर्मन शेफर्ड पपीज थे, इतने छोटे कि उनकी आंखें भी अभी खुली नहीं थी। उनकी माँ का ना कोई पता था, ना कोई देखने वाला था, ना कोई बचाने वाला था। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं किसी की तकलीफ समझने के लिए उसकी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। ली डंकन भी बचपन में अनाथ हो गए थे। उनकी माँ भी इतनी गरीब थी कि बच्चों को ऑर्फनेज में छोड़ना पड़ा। उन्होंने तन्हाई देखी थी, बेघर होना महसूस किया था, और शायद इसीलिए जब उन्होंने उन पपीज को देखा तो उन्होंने सिर्फ डॉगीज नहीं देखे, उन्होंने अपना बचपन देखा। उन्होंने फैसला किया कि इन्हें यहां नहीं छोड़ेंगे। वो उन पपीज को अपने मिलिट्री कैंप ले गए, सभी को संभाला, लेकिन आखिर में 2 पपीज उनके पास रह गए, एक मेल और एक फीमेल। उन्होंने उनके नाम रखे रिन टिन टिन और नेनिट। ये नाम उन्होंने उन छोटी फ्रेंच डॉल से प्रेरित होकर रखे थे जो उस युद्ध के दौरान बच्चे सिपाहियों को गुड लक के लिए दिया करते थे। जब युद्ध खत्म हुआ, ली डंकन अमेरिका लौटने लगे, लेकिन उनके सामने एक मुश्किल आई, पपीज को अमेरिका कैसे लेके जाएं? उन्होंने हिम्मत की, बहुत मुश्किल से उन्हें साथ ले गए। सफर बहुत लंबा था, दुखद था, और उस सफर में नेनिट जिंदा नहीं बच सकी, लेकिन रिन टिन टिन बच गया। अमेरिका पहुंचते ही ली ने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी, और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम डॉग नहीं है। रिन टिन टिन बहुत ही इंटेलिजेंट था, एक बार कमांड समझता और फिर कभी नहीं भूलता। वो तेज भागता, ऊंची छलांग लगाता और हर कंपटीशन जीतने लगा। लेकिन ली डंकन के मन में एक और सपना आया,
1: उन्हें लगा ये सिर्फ कंपटीशन का चैंपियन नहीं, ये तो फिल्म का हीरो बन सकता है। लोग हंस पड़े, एक डॉगी और एक्टर बनेगा? लेकिन सपने देखने वालों को लोग पहले हमेशा अजीब ही समझते हैं। ली हर रोज रिन टिन टिन को हॉलीवुड की सड़क

को पर ले जाता, इस उम्मीद में कि कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर एक बार इस डॉग को देख ले। और एक दिन वही हुआ। 1922 में रिन टिन टिन को अपनी पहली फिल्म मिली और फिर 1923 में आई एक फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया। फिल्म उतनी हिट हुई कि उस वक्त के एक संघर्ष कर रही फिल्म कंपनी को डूबने से बचा दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि रिन टिन टिन की सफलता ने वॉर्नर ब्रदर्स को उस मुश्किल दौर से निकलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सोचिए, एक पपी जो कभी युद्ध के मैदान में अकेला पड़ गया था, अब हॉलीवुड का सुपरस्टार बन चुका था। उस वक्त रिन टिन टिन हर हफ्ते इतना पैसा कमाता था जितना कई बड़े एक्टर्स भी नहीं कमा पाते थे। हजारों फैन लेटर्स आते, बच्चे उसके दीवाने थे, उसकी फिल्में हाउसफुल चलती थी। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी बाकी है। उस समय अमेरिका में एक अजीब सा माहौल था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद लोग जर्मनी से जुड़ी हुई हर चीज से नफरत करने लगे थे और जर्मन शेफर्ड डॉग्स भी इस नफरत का शिकार बन रहे थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके नाम में जर्मन शब्द था। लोग उन्हें अपनाना ही नहीं चाहते थे, कई जगह उन्हें छोड़ दिया जाता था, अबैंडन कर दिया जाता था। लेकिन फिर एक चेहरा सिनेमा की स्क्रीन पर चमका, हमारा रिन टिन टिन। लोगों ने पहली बार जर्मन शेफर्ड को एक वफादार दोस्त के रूप में देखा, एक हीरो के रूप में देखा, एक प्रोटेक्टर के रूप में देखा। और धीरे धीरे वही ब्रीड जो लोग छोड़ रहे थे, अमेरिका की सबसे पसंदीदा डॉग ब्रीड्स में शामिल हो गई। सोचिए, अगर उस दिन ली डंकन रुकते नहीं, अगर वो सिर्फ एक सिपाही बनकर आगे बढ़ जाते, तो शायद रिन टिन टिन की कहानी कभी लिखी ही नहीं जाती। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो वो नहीं होता जो दुनिया जीत लेता है, हीरो तो वो होता है जो किसी कमजोर को गिरने से बचा लेता है। एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी दया, एक पल की इंसानियत कभी कभी सदियों तक याद रहती है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि काइंडनेस कभी वेस्ट नहीं जाती। आप नहीं जानते कि आपका एक छोटा सा अच्छा काम किसी और की पूरी दुनिया बदल सकता है। तो अगली बार जब आप किसी बेघर जानवर को देखें या किसी जरूरतमंद को देखें, तो एक पल के लिए रुक जरूर जाइएगा। हो सकता है कि उस पल में किसी और की पूरी कहानी बदल जाए, जैसे ली डंकन ने बदल दी, जैसे रिन टिन टिन ने दुनिया को सिखा दिया कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर हौसला और प्यार साथ हो, तो अंजाम इतिहास बना सकता है। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा और फिर मिलूंगी आपसे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: चिंटू रेल में सफर कर रहा था। सामने बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? चिंटू बोला, मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा।
2: What?

दुश्मन जो जिंदगी बचा गया, एक सच्ची कहानी जो हमें सिखाती है कि इंसानियत हर जंग से बड़ी होती है। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूं। अगर आपके सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा हो और उसकी जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ एक बटन दबाने पर निर्भर हो, तो आप क्या करेंगे? बताइए बताइए, क्या आप अपना फर्ज निभाएंगे या अपनी इंसानियत? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब है। ये कहानी है दो पायलट्स की, दो देशों की, दो दुश्मनों की, और एक ऐसे फैसले की जिसे इतिहास आज भी सलाम करता है। दोस्तों, ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उस दौरान की, जब जंग अपने सबसे खौफनाक रूप में थी। आसमान में फाइटर प्लेन्स गरज रहे थे, नीचे धरती पर बॉम्ब्स गिर रहे थे, हर तरफ धुआं, आग और मौत का साया। लेकिन इसी जंग के बीच एक अनलिखा नियम था, किसी किताब में नहीं लिखा गया था, किसी कानून में भी नहीं, लेकिन कई फाइटर पायलट्स उसे दिल से मानते थे, और वो नियम था।

जो सिपाही अपनी रक्षा नहीं कर सकता उस पर हमला मत करो, जैसे पैराशूट के नीचे उतरता हुआ पायलट। वो अब लड़ नहीं रहा, सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, और असली बहादुरी बेबस पर वार करने में नहीं होती। अब आया 20 दिसंबर 1943, यूरोप का आसमान, बर्फीली हवा और एक जर्मन फाइटर पायलट फ्रांस स्टिगलर, अनुभव से भरपूर, बहादुर और अपने देश के लिए लड़ने वाला सिपाही। उस दिन उसके सामने आया एक अमेरिकन बॉम्बर प्लेन B-17, लेकिन वो प्लेन का उड़ता हुआ मलबा ज्यादा लग रहा था। उसके शरीर में इतने बड़े बड़े छेद थे कि अंदर बैठे हुए घायल सिपाही दिख रहे थे। टेल गनों की जगह टूट चुकी थी, कई क्रू मेंबर्स खून से लथपथ थे। प्लेन मुश्किल से हवा में टिक पा रहा था। फ्रांस स्टिगलर के लिए ये आसान मौका था, बस एक बटन दबाना था और कुछ ही सेकंड्स में वो प्लेन हवा में बिखर जाता, तितर बितर हो जाता। लेकिन उसका फर्ज था और यही उसके ऑर्डर्स थे, और शायद यही उसके देश की उम्मीद भी थी। लेकिन उसने बटन नहीं दबाया। क्यों? क्योंकि उसने प्लेन नहीं देखा, उसने इंसान देखे। उसने दुश्मन नहीं देखा, उसने घायल लोग देखे। उसके मन में एक बात आई, ये लोग तो वैसे ही हैं जैसे पैराशूट से लटकता हुआ कोई बेचारा सा सिपाही। और उस अनलिखे नियम ने उसकी उंगली ट्रिगर से हटा दी। सोचिए, एक तरफ ड्यूटी और दूसरी तरफ इंसानियत, एक तरफ मेडल और दूसरी तरफ दया। और उसने क्या चुना? इंसानियत और दया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। फ्रांस ने सिर्फ प्लेन को नहीं छोड़ा, वो उसके साथ साथ उड़ता रहा। क्यों? ताकि दूसरे जर्मन पायलट्स उस पर हमला ना कर दें, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उसे निशाना ना बना दें। एक दुश्मन अपनी ही दुश्मन की सुरक्षा कर रहा था। जब दोनों प्लेन समुंदर के पास पहुंचे, फ्रांस ने अमेरिकन पायलट की तरफ देखा। अमेरिकन पायलट का नाम था चार्ली ब्राउन। दोनों की नजरें मिली और चार्ली को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फ्रांस ने बस हल्का सा सल्यूट किया और अपना प्लेन मोड़कर वापस चला गया। चार्ली ब्राउन अमेरिका लौट आया, उसकी पूरी क्रू बच गई। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहा, कौन था वो जर्मन पायलट और उसने मुझे क्यों बचाया? समय बीतता गया, जंग खत्म हो गई, लोग अपनी जिंदगी में लौट गए। 50 साल बीत गए, 50 years, लेकिन चार्ली ब्राउन उस चेहरे को कभी नहीं भुला पाया। उसने उस जर्मन पायलट को ढूंढना शुरू किया, पुराने रिकॉर्ड्स देखे, लोगों से बात की, लेटर्स लिखे, मिलिट्री फाइल्स खोजी। और फिर 1990 में एक चमत्कार हुआ, उसे पता चल गया फ्रांस स्टिगलर जिंदा है। दोनों मिले पूरे 50 साल बाद, ना यूनिफॉर्म थी, ना जंग थी, ना हथियार, सिर्फ दो बुजुर्ग आदमी, एक जर्मन और एक अमेरिकन। और जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आए, वो जोर से गले लग गए, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सोचिए, एक पल का फैसला 50 साल बाद भी दो दिलों को इस तरह जोड़ सकता है। उसके बाद दोनों गहरे दोस्त बन गए, फेस्टिवल साथ मनाए, एक दूसरे के घर गए, फैमिलीज मिली, और जब तक जिंदा रहे एक दूसरे को भाई कहते रहे। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो कौन है? फ्रांस, चार्ली या वो अनलिखा नियम? मुझे लगता है हीरो वो पल था जब एक इंसान ने यूनिफॉर्म से पहले अपने दिल की बात सुनी।
हम अक्सर सोचते हैं कि बहादुरी सिर्फ जीतने में होती है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी माफ कर देने में होती है, दया दिखाने में होती है और सही काम करने में होती है, और वो भी तब जब कोई आपको देख नहीं रहा। आज के जमाने में हम सोशल मीडिया पर अच्छाई दिखाने के लिए फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन असली नेक काम वो होता है जिसका कोई कैमरा ही नहीं हो, कोई ताली नहीं हो, कोई सर्टिफिकेट नहीं हो, सिर्फ आप और आपका जमीर। फ्रांस टिगलर को उस दिन शायद किसी ने मेडल नहीं दिया, लेकिन उसने एक पूरी क्रू को घर पहुंचने का एक मौका दिया। किसी मां का बेटा बच गया, किसी बच्चे के पिता बच गए और किसी पत्नी के पति वापस आ गए। और शायद इंसानियत का असली मतलब यही है। तो दोस्तों, आज जब आप भी किसी से गुस्सा हो या किसी को सिर्फ इसलिए गलत समझने लगे क्योंकि वो दूसरी तरफ का है, तो एक बार फ्रांस और चाली को याद कर लीजिएगा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, मिलूंगी फिर आपसे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। तब तक के लिए याद रखिए, असली जीत हमेशा इंसानियत की ही होती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया गजब है ये दुनिया वाले भी, मोबाइल खराब तो बच्चा जिम्मेदार, और अगर बच्चा खराब तो मोबाइल जिम्मेदार।

ब्रांड, एक फैसला और इतिहास का वो दाग जो आज भी धुलता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, हम सब लोग कभी ना कभी किसी ब्रांडेड शोरूम के बाहर रुकते जरूर हैं। कभी किसी शर्ट को देखकर कहते हैं, वाह क्या ब्रांड है, क्या क्वालिटी है, क्या फिट है। कभी किसी सूट पर लिखा नाम देखकर लगता है, इस कंपनी का तो बहुत नाम है भाई। लेकिन क्या हर बड़ा नाम हमेशा एक खूबसूरत कहानी लेकर आता है? या कभी कभी किसी चमकते हुए लोगों के पीछे इतिहास का एक अंधेरा सा छुपा होता है? आज की कहानी किसी कपड़े की नहीं, किसी फैशन शो की नहीं, बल्कि एक फैसले की है जो बिजनेस को आसमान तक ले गया, लेकिन इंसानियत की नजरों में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ गया। और शुरुआत होती है एक छोटी सी सिलाई की दुकान से, एक छोटा सा दर्जी और उसके बड़े बड़े सपने। साल था 1930, जर्मनी। जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा, एक दर्जी जिसके पास पैसे कम हो रहे थे और काम लगभग बंद था। कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी दुकान में बस कुछ ही सिलाई मशीन्स बची थी। और हर सुबह वो दुकान खोलता लेकिन ग्राहक नहीं आते। उसे लगने लगा था कि शायद उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उसे एक मौका मिला, एक ऐसा मौका जिसने उसकी कंपनी को बचा लिया। लेकिन उस मौके की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं चुकाई गई। उस दर्जी का नाम था ह्यूगो फर्डिनेंड बॉस। 1931 में उन्होंने नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली। बाद में वो एसएस के स्पॉन्सर मेंबर भी बने। उस वक्त जर्मनी में अडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी तेजी से मजबूत हो रहे थे, और जैसे जैसे उनका प्रभाव पड़ा वैसे वैसे यूनिफॉर्म्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। आर्मी के लिए यूनिफॉर्म्स, एसएस के लिए यूनिफॉर्म्स, हिटलर यूथ के लिए यूनिफॉर्म्स, और ये सारे ऑर्डर्स ह्यूगो बॉस की फैक्ट्री को मिलने लग गए। एक छोटी सी टेलरिंग वर्कशॉप धीरे धीरे एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। बिजनेस तेजी से बढ़ा, कमाई बढ़ी, फैक्ट्री बढ़ी और नाम बढ़ा। लेकिन हर सिलाई के साथ एक और चीज भी जुड़ती गई, एक नैतिक बोझ। कभी सोचा है कपड़े सिर्फ शरीर नहीं ढकते दोस्तों, कभी कभी वो एक विचारधारा का पहनावा होते हैं। यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं होती, यूनिफॉर्म एक पहचान होती है, एक जिम्मेदारी होती है और कभी कभी एक डर की निशानी बन जाती है। जिन यूनिफॉर्म्स को ह्यूगो बॉस की कंपनी बना रही थी, उन यूनिफॉर्म्स को पहनकर लाखों लोगों ने दुनिया भर में अत्याचार किए। ये बात भी इतिहास का हिस्सा है कि ह्यूगो बॉस ने नाजी यूनिफॉर्म्स का निर्माण किया, हालांकि उन्होंने उनका डिजाइन नहीं बनाया था, डिजाइन अलग लोगों ने तैयार किया था, लेकिन उन यूनिफॉर्म्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन उनकी फैक्ट्रीज में हुआ था। जंग बढ़ती गई, ऑर्डर्स बढ़ते गए, और फिर युद्ध के दौरान फ्रांस और अन्य जगहों से लाए गए फोर्स लेबरर्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर को फैक्ट्री में काम करवाया गया। सोचिए, जो लोग खुद युद्ध के शिकार थे उनसे वही यूनिफॉर्म सिलवाई जा रही थी जिन्हें पहनकर उनके देश पर कब्जा किया गया। ये इतिहास का बहुत कठिन और दर्दनाक पहलू है, और इसीलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सिर्फ सक्सेस नहीं, उस सक्सेस की कीमत को समझना जरूरी है दोस्तों। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, हिटलर का अंत हुआ, जर्मनी हार गया और फिर शुरू हुई जवाबदेही।

ये दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी फैशन ब्रांड्स में से एक है। आज का ह्यूगो बॉस वही कंपनी नहीं है जो 1930 के दौर में थी। कंपनी ने अपने इतिहास को माना है, पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए हैं, फोर्स्ड लेबर के इतिहास को एक्सेप्ट भी किया है और समय के साथ अपनी अलग पहचान भी बनाई है। लेकिन इतिहास मिटता नहीं, वो सिर्फ याद दिलाता रहता है। दोस्तों, ये कहानी किसी एक कंपनी की बुराई या तारीफ की नहीं है। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। अगर सफलता का रास्ता गलत फैसलों से होकर गुजरता हो, तो क्या वो सफलता वैसे ही चमकती है? बिजनेस में प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन प्रिंसिपल्स उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। पैसे कमाना गलत नहीं, लेकिन पैसा किस तरह कमाया गया, ये सवाल भी उतना ही जरूरी है। हर जनरेशन को ये याद रखना चाहिए कि एक फैसला सिर्फ आज नहीं बदलता, कभी कभी वो अगले 100 साल तक याद रह जाता है। दोस्तों, जब भी आप किसी ब्रांड का नाम देखिए, उसकी क्वालिटी जरूर देखिए, लेकिन कभी कभी उसकी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि हर लोगों के पीछे एक हिस्ट्री होती है। कुछ कहानियां गर्व से सुनाई जाती हैं और कुछ सिर्फ हमें इतना याद दिलाती हैं कि सफलता और इंसानियत दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा। हम फिर मिलेंगे एक और अनोखी कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, जीवन के उस दौर से गुजर रहा हूँ, पुराने गाने सुनूं तो बीवी कहती है किसकी याद में मरे जा रहे हो, और अगर नए गाने सुनूं तो कहती बड़ी जवानी छा रही है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। आइए दोस्तों, मिलवाते हैं पश्ताना दुर्रानी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीते हुए कुछ दिनों पहले कातार की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के भविष्य पर एक सम्मेलन हुआ था। इस जलसे को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने काबुल के निजाम से जब ये कहा कि अपने देश में लड़कियों की तालीम और महिलाओं की नौकरी करने पर उसने जो अपमानजनक पाबंदी लगा रखी है उसे वो फौरन वापस ले और स्कूल की कक्षाओं से लेकर उन तमाम ओहदों पर औरतों की भागीदारी सुनिश्चित करें जहां से निर्णायक फैसले होते हैं, तो पश्ताना दुर्रानी की मुहिम की याद हो आई। अपनी जान पर खेलकर वो अफगान लड़कियों तक ज्ञान की रोशनी बिखेर रही हैं। अफगानिस्तान के कांधार इलाके के जलमई दुर्रानी एक तरक्की पसंद कबायली नेता थे जो लड़कियों की तालीम की बढ़ चढ़कर हिमायत करते थे। जाहिर है कट्टर पंथियों को उनकी ये बात ठीक नहीं लगती थी। उन्हें कई बार खामोश रहने को कहा गया, लेकिन जलमई दुर्रानी लगातार मुखर रहे, बोलते रहे। ऐसे में जब मुल्क गृह युद्ध में चल रहा हो और लंबा खींचा ही जा रहा हो और कांधार इलाके पर तालिबान का पूरा नियंत्रण हो गया हो, तो दुर्रानी परिवार के सदस्यों के पास देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। वो भागकर पाकिस्तान जा पहुंचे, जहां क्वेटा में उन सबको शरण मिली। करीब 27 साल पहले क्वेटा के ही एक शरणार्थी शिविर में पश्ताना का जन्म हुआ। उनके पिता अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह की जगहों में इन खानाबदोश जिंदगियों को अब इज्जत का मुकाम सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मिल सकता है। लिहाजा उन्होंने अपनी नई नस्लों की शिक्षा को लेकर वो पहले से कहीं ज्यादा संजीदा हो उठे। उन्होंने अपने अस्थाई घर को स्कूल में बदल दिया और अपनी पत्नी और परिवार की दूसरी पढ़ी लिखी औरतों को उन शिविरों की बच्चियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब इसी तरह के माहौल में पश्ताना पली बढ़ी। होश संभाला तो उन्होंने देखा कि उनकी मां और चाची किस तरह हमसाया घरों के लोगों को कायल किया करती कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेज दें। पश्ताना ने पाकिस्तान में ही हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी दिली तमन्ना थी कि आगे की तालीम वो अपने मुल्क की ही किसी यूनिवर्सिटी से करें। तब तक अफगानिस्तान में निजाम भी बदल चुके थे और चारों तरफ इस बदलाव की चर्चा भी थी। कई औरतें न सिर्फ सरकारी मुलाजमात और सियासत में लौट आई थीं, बल्कि अपना कारोबार भी चलाने लगी थीं। साल 2013 की बात है, दुर्रानी परिवार ने वतन वापसी का फैसला लिया। पश्ताना तब सिर्फ 16 साल की थी। अपने पुरखों की माटी को चूमने की खुशी ही अनूठी होती है। पूरा दुर्रानी खानदान बहुत खुश था, लेकिन कंधार लौटने की पहली ही रात जिस सच से पश्ताना का सामना हुआ उसने उनकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। खानदान की लड़कियां जब मिली तो उन पर यह हकीकत खुली कि उनके पूरे जिले में जहां 400 से भी ज्यादा परिवार रहते हैं एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता यह एहसास भी हुआ कि लड़कियों की पढ़ाई तो सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। एक दिन खानदान की ही एक छोटी बहन आई और हसरत भरी निगाहों से पश्ताना को देखते हुए कहने लगी, बाजी मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूं। पश्ताना शिक्षित थी, उनके पास अपना लैपटॉप था। वो कॉन्फ्रेंस के लिए काबुल जाया करती और सबसे बढ़कर उन्हें पिता का पूरा साथ हासिल था।
1: एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जब पश्ताना काबुल जा रही थी

तब उसी बहन ने हुकूमत के नाम एक खत दिया जिसमें यह करुण गुजारिश थी कि उनके जिले में एक लड़कियों का स्कूल खोला जाए ताकि वो भी पढ़ सके। सरकार की तरफ से ना कोई जवाब आना था ना आया, लेकिन पछताना उस हसरत के आगे पसीज उठी। आखिरकार उन्होंने उस बच्ची के पाठ्यक्रम की सामग्री और सहायक वीडियोस इंटरनेट से डाउनलोड किए और उसे पढ़ाना शुरू किया। बच्ची इस लगन से पढ़ती रही कि जल्द ही वो मोड़ आया जब उसे कंधार शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। इस घटना ने पछताना को प्रेरित किया कि उन सभी तमाम लड़कियों को वो डिजिटली पढ़ा सकती हैं जिनकी पहुंच में कोई स्कूल नहीं। इसी नेक इरादे से उन्होंने साल 2018 में लर्न अफगानिस्तान के नाम से एक निशुल्क ऑनलाइन स्कूल खोल दिया, अफगानिस्तान का पहला डिजिटल स्कूल नेटवर्क। इसके जरिए वो अब तक कंधार के 7,000 से ज्यादा लड़के लड़कियों को शिक्षित कर चुकी हैं और 80 शिक्षकों को भी डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। मगर पछताना का ये काम कभी निरापद नहीं रहा, क्योंकि कंधार से तालिबान कभी खत्म ही नहीं हुए थे। और फिर जब वो 21 साल की थीं, उनके पिता का इंतकाल हो गया, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गई। साल 2021 में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया और तब स्थानीय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बताया कि उनका कत्ल किया जा सकता है। पछताना ने अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला ले लिया और वो चली गई। इन दिनों वो वहीं से अपने मिशन में जुटी हैं। साल 2021 में बीबीसी की तरह प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स ने भी उन्हें 100 प्रभावशाली लोगों में गिना है। औरतों को अपने हक हुकूक के लिए हमेशा ही भारी संघर्ष करना पड़ता है। आज से 125 साल पहले भारत में सावित्री भाई फूले के साथ भी तो क्या क्या हुआ, यह हमारे इतिहास का हिस्सा है। मगर उन्होंने उस वक्त हमारे देश में स्त्री शिक्षा की जो ज्योत जलाई, उसे आज तक पूरा हिंदुस्तान रोशन है। उम्मीद है अफगानिस्तान की आने वाली नस्लें भी पछताना दुर्रानी को उसी अदब से याद करेंगी।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: कौवे ने मटके से पूछा, देखो अगर तुम आग में तपाकर बनाए जाते हो फिर भी इतनी गर्मी में अपने अंदर पानी को कैसा ठंडा रख पाते हो? मटके ने कहा, तू पानी पीले का लिए ज्यादा पंचायत मत कर।

एक बार एक राजा ने इतना ज्यादा सुरक्षित महल बनवाया कि उसमें किसी भी दुश्मन के घुस सकने की कोई आशंका ही ना रहे। उस राजा ने पूरी दुनिया को जीतना चाहा था, तो जाहिर सी बात है उसके बड़े सारे दुश्मन भी थे। अब क्योंकि पूरी दुनिया में दुश्मन हो गए थे तो स्वाभाविक है भय डर भी बढ़ गया था। डर बढ़ा तो सुरक्षा की जरूरत पड़ गई, इसलिए उसने ये मजबूत जबरदस्त अभेद्य महल बनवाया। इस महल में एक ही दरवाजा था, खिड़कियां भी नहीं थी, कहीं कोई हवा भी न घुस जाए, कहीं कोई जगह न रह जाए जिससे कोई भी दुश्मन कभी भीतर आने की सोच भी सके। इस बड़े सारे महल में एक ही दरवाजा था और इस दरवाजे पर हजारों नंगी तलवारों का पहरा भी लगा दिया गया। अब पड़ोस के राजा उस बहुत ही सुरक्षित महल को देखने आए, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह, बहुत आनंदित हुआ, मैं भी ऐसा ही महल बहुत जल्द बनवाता हूं। यह बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें तो कोई खतरा लगता ही नहीं। जब पड़ोस का राजा विदा ले रहा था तो मेजबान राजा से उसने कहा, आपने सचमुच बड़ा कमाल का काम किया है, कोई राजा कभी इतना सुरक्षित महल कभी नहीं बनवा पाएगा। तभी सड़क किनारे एक बूढ़ा फकीर जोर जोर से हंसने लग गया। राजा ने पूछा, अबे पागल, तू हंस क्यों रहा है बे? फकीर ने कहा, हुजूर, एक भूल रह गई इस महल में, और तो सब ठीक है मगर एक ही दरवाजा है, यही गलती हो गई। भाई, इससे भी तो दुश्मन भीतर जा सकता है ना, इसलिए आप भीतर जाएं और इस दरवाजे को भी बंद करा दें, चिनवा दें, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो पाएंगे, फिर कभी कोई दुश्मन घुस ही नहीं सकेगा कहीं से भी। राजा ने कहा, अबे पागल, अगर मैं इस दरवाजे को भी चिनवा दूं और भीतर हो जाऊं तो ये महल नहीं मेरी कब्र बन जाएगा। फकीर ने कहा, कब्र तो ये बन ही गया है, सिर्फ एक दरवाजा ही तो बचा है। एक दरवाजा है, दुश्मन नहीं तो कम से कम मौत तो इस एक दरवाजे से भीतर आ ही जाएगी। आप ऐसा करें कि भीतर हो जाएं, फिर मौत भी नहीं आ पाएगी। सम्राट ने कहा, जाने का सवाल ही नहीं, मौत के आने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। फिर फकीर ने कहा, तो फिर ठीक से समझ लीजिए, जितने ज्यादा दरवाजे थे इस महल में उतना ही जीवन था आपके पास, जितने दरवाजे कम हुए उतना जीवन कम हो गया। अब एक दरवाजा बचा है तो थोड़ा सा ही जीवन बचा हो गया, इसको भी बंद कर दीजिए, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा कि एक भूल रह गई है इसमें, और वो जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, जितनी हम सुरक्षा ढूंढते हैं उतनी ही असुरक्षा का अनुभव करते हैं। असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी का जो अनुभव है वो सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी की खोज से ही पैदा होता है। ये एक दुष्ट चक्र है। असुरक्षा से बचने की जो आकांक्षा है वही असुरक्षा पैदा कर देती है। इसलिए असुरक्षा से राजी हो जाओ, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, मान लो कि आप असुरक्षित हैं। अचानक ही पाओगे कि असुरक्षा गायब हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर जाएं और मुसीबत को बुलावा दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है, सावधान रहें लेकिन हर समय डरे रहने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ख्याल रखिएगा।

0: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। गोल चबूतरा। आज जिस्म है, कल याद हो जाएंगे, मैं तो कब का आगे बढ़ गया हूं। वक्त से कहो मेरे साथ चले, आज नहीं है मेरा, ये बात सच है, लेकिन जरा जरा सा वो मेरे शेरों में रह गया है।
1: उठ सबके कदम, देखो रम पम।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पड़ोस की औरतें आपस में बातें कर रही थी। बहन, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर हम चांद पर जाकर बस जाएंगे तो करवा चौथ कैसे मनाएंगे?

शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: हम सभी सफल होना चाहते हैं ना? यह बात और है कि हम सभी के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। क्यों? कोई बहुत अमीर होना चाहता है, कोई बहुत प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई बहुत पावरफुल होना चाहता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा लेखक बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन, कोई बहुत बड़ा दार्शनिक, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन। लेकिन हम सभी अपनी सफलताओं के पीछे भागते तो रहते हैं ना? ये जरूरी नहीं है कि क्या चाहते हैं हम, क्या सफलता पाना चाहते हैं हम। कई बार जिंदगी में सफलता की परिभाषा ढूंढते हुए, डेफिनेशन ढूंढते हुए बहुत सारा वक्त गुजर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। बड़े आश्चर्य की बात है, काफी अच्छी पकी हुई उम्र के लोगों से भी अगर हम पूछें कि सफलता के मायने क्या हैं आपकी नजरों में, तो शायद वो भी ठीक से बता ना पाए। बड़ी मजेदार बात है, हम इंसान इंडिविजुअली बहुत भयंकर झूठे होते हैं, बहुत अच्छा झूठ बोलना जानते हैं, खास करके अपने आप से। अब ये बात आपको कुछ अजीबोगरीब सी लगेगी, हम अपने आप से झूठ बोलते हैं? जी हां, देखिए ना, कभी किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे तौर पर सच्चाई से देते हैं क्या हम? सोच के देखिए, दिल के अंदर झांकने वाली बात है ये, किसी को मत बताइए। आप किसी के लिए आंसरेबल नहीं है, आप खुद को और अपने ऊपर वाले को आंसरेबल हैं। चिंता ना करिए, कोई आपको जज नहीं करेगा। तो जरा कोशिश कीजिए, सफलता के मायने आपकी निगाह में क्या है, थोड़ा विचार करें। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, किसी को ना बताएं। एक बार किसी नौजवान ने सोक्रेटिस से पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? सोक्रेटिस उसका सवाल सुनकर मुस्कुराए और फिर उससे कहा, तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो, वहीं पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सफलता का रहस्य क्या है। अगले दिन नौजवान जब सोक्रेटिस से मिला तो उन्होंने उसे अपने साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा। आगे बढ़ते बढ़ते पानी जब नवयुवक के गले तक जा पहुंचा, तभी अचानक सोक्रेटिस ने उसका सर पकड़कर पानी में डुबो दिया। उन्होंने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह नीला नहीं पड़ गया। सोक्रेटिस ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही नौजवान ने सबसे पहले हांफते हांफते तेजी से सांस लेना शुरू किया। सोक्रेटिस ने उसी समय उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी, तुम क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, केवल सांस लेना। सोक्रेटिस ने स्नेह से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही गहराई से चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम सांस लेना चाहते थे, तो वह तुम्हें मिल जाएगी।

यही कामयाबी पाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। ये तो बात हुई फॉर्मूला की जिससे हमें सफलता मिलेगी, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। हमारी नजर में सफलता के मायने क्या हैं? हमारी नजर में सफलता की परिभाषा क्या है? हमारी नजर में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, किसी के साथ डिस्कस करने की भी कोई जरूरत नहीं। हमें अपने अंदर झांकना है और सच जरूर बोलना है अपने आप से, और हमें ईमानदारी से यह ढूंढना है कि हमारी परिभाषा क्या है सक्सेसफुल होने की। बहुत सारी अमीरी, अल्टीमेट फिटनेस, बहुत सारे अच्छे संबंध, बहुत सारी इंटेलिजेंशिया, शांति, पीस, क्या आप मेरे साथ हैं इस डेफिनेशन को ढूंढने के लिए? क्या है सफलता?

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
6: हमारे जल संसाधन,
7: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
8: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
7: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर, जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
8: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
7: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
8: कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है और उसके नीचे भूमिगत जल।
7: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
8: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
7: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मानसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, दो कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
8: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 10वां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
7: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है। कहीं विशाल नदियां, तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और तीन तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
8: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है।

किसी प्रदेश में बाढ़ आ जाती है। या कई मौतें जल प्रदूषण से हो जाती हैं।

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहु उद्देश्य परियोजनाओं के उदाहरण है। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक की घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सावधानी से जमा किया हुआ पानी साफ होता है और सुरक्षित भी।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: मीनू दीदी
1: बोलो।
0: ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
0: अरे हाँ सुनो दीदी।
1: हाँ
0: ये जंगल कैसा होता है?
1: जंगल
2: जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
1: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, हिरण, हाथी, हाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
1: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है, है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
1: अच्छा
2: समझे? हाँ ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
2: हाँ भाई अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
1: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
2: अरे बेटा पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़, पौधे, ये सब कुछ। अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा वो कैसे दादाजी?
2: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: और बेटे अगर वन न हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
1: वो कैसे दादाजी?
2: सुनो वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ पेड़ पौधों के अंदर जो नमी

0: होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
1: अच्छा।
0: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें, जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
1: अच्छा दादाजी, वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
0: अरे बेटे, इसके बहुत से कारण हैं। जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
1: अच्छा।
0: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काटकर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
1: अच्छा।
0: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
1: अच्छा दादाजी, दादाजी ये झूम खेती क्या है?
0: देखो बेटा, झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा, ऐसा करते हैं?
0: हाँ, इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
1: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
0: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
1: अच्छा।
0: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
1: दादाजी,
0: बोलो बेटे,
1: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
0: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
1: हाँ जी।
0: देखो जरा कौन आया है।
1: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: अरे रेंजर चाचा आप आइए। नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर आओ भाई और सुनाओ कैसे हो। आओ आओ इधर आओ इधर।
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा और सुनाओ बच्चों दादाजी से क्या बातें हो रही थी।
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए।
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर,
2: बिल्कुल,
1: और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों
0: जी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहां वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
0: अच्छा
1: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा
1: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
1: काका हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
0: वो कौन सी कदम है चाचा जी?
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा
1: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
0: अच्छा
1: जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी।
0: चाचा जी।
1: हाँ बेटा।
0: फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी है।
1: शाबाश।
0: हाँ और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
0: चलो चलो। मैं भी पेड़ लगाऊंगा। हाँ मैं भी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैयां सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई। पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं?
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
4: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गोरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
3: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
5: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
3: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे हैं। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
5: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
3: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़। यहाँ से इसमें हंसने की क्या बात है?
5: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
3: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
5: ठीक है,
3: चल चल हट हट।
5: ये अब नहीं निकलेंगी।
3: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
4: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गोरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को चिठोली सूझती।
5: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
3: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
2: जी?
3: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
2: जी।
3: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
2: जी। अच्छा पिताजी।
3: हट, हट, हट।
4: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लग गए। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
5: अरे अरे,
3: अरे
5: क्या करते हो जी?
3: गलती से लग गया।
5: आराम से
4: गोरैया।

0: ऊंची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
1: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
0: माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
2: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
0: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
2: अरे
1: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
0: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
3: सुनो सुनो, देखो जी, इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
2: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
1: सुनो तो, रुक जाओ।
0: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़ी और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
2: गई।
0: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
4: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी चुन कर ये।
0: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
1: तुम्हारे बस की नहीं है।
2: फिर कोशिश करता।
0: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
2: अब देखो,
0: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके, बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
5: पिताजी देखो देखो देखो, ऊपर देखो माँ, पिताजी
1: हाँ,
5: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
1: अरे हाँ बेटी।
0: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। ची ची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
1: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया, आ जाओ गोरैया।
0: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
2: अरे
0: वो उनकी नन्हे नन्हे चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
2: सच में
6: छोटे और बड़े।
7: अरे छोटे बड़े
8: जी, दादाजी
7: मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
8: जी दादाजी।
7: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो।
8: हम खेलेंगे।
7: हाँ जाओ बेटा
8: खेलेंगे।
9: ओ भाई छोटे।
10: हाँ भाई बड़े।
9: आज हम पार्टी करते हैं।
10: हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में? हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
11: हाँ भाई बड़े, ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो यहाँ खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
10: सही कहा भाई तुमने, अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकते हैं।
11: हाँ भाई बड़े, मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
10: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
11: हाँ हाँ, हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
12: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे?

0: मिल गई।
1: मेरे को तो चॉकलेट और मिठाई मिली।
2: तो रोटी और चावल मिले।
1: बहुत स्वादिष्ट है।
3: छोटे?
4: हाँ भाई बड़े।
3: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
4: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
1: एक कुरेद दो।
5: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
6: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
7: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो।
6: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।
7: तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना, रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब क्या था ब्रश?
6: नहीं मम्मी।
7: देखा अब दिखाओ जरा कहाँ हो रहा है दर्द? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
5: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
7: नमस्ते डॉक्टर साहब।
8: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
7: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
8: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
6: चीनू।
8: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुँह खोलो मुँह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो। बस अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे। क्यों है ना कमला जी?
7: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
8: देखो बेटा कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है ना? कितने अच्छे लगते हैं दांत, तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या बताए? ऊपर नीचे ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
7: जी बिल्कुल।
8: है ना
6: डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
7: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
8: समझ गया। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश। समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी? लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।
5: ये सारी बातें सुनकर चीनू के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं।
1: अरे भाई छोटे।
6: हाँ भाई बड़े।
1: आप तो हमारे आराम के दिन गए।
6: हाँ
1: हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे।
6: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
1: हाँ चलो चलो दादाजी। दादाजी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है।
6: भूख लगी है।
9: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में

0: चलकर वहाँ जगह बनाते हैं। चलो
1: चलो आओ दादी, चलो
2: चलो
1: दादी, चलो।
3: इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों, अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम का खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। किसान साथियों, आशा करते हैं कि हमारा यह खेती बाड़ी कार्यक्रम कहीं न कहीं इस खेती बाड़ी कार्यक्रम से लाभ ले रहे होंगे। किसान साथियों, हम रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी में हो रहे बदलाव एवं खेती बाड़ी में जो नवीनतम कृषि है उसे हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात हम इसमें क्या क्या बदलाव ला सकते हैं आदि सभी जानकारियों को आप तक पहुँचाने के का हमारा यह एक प्रयास है। तो किसान साथियों, हम आशा करते हैं हमारे यह कार्यक्रम आपको कहीं न कहीं बहुत ही लाभप्रद होंगे। साथ ही जो किसान भाई, हमारे किसान भाई हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, हमारा पता है रेडियो स्टेशन चेतना हाई स्कूल परिसर, इंदौर रोड, गढ़वाड़ा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। आप हमें कॉल के माध्यम से भी आपके सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9425143603 पर। किसान साथियों, आज का हमारा जो खेती बाड़ी कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है वह यह है, APO से सशक्त होते किसान। जी हाँ किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे APO से सशक्त होते किसान। तो इसका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, इससे जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।

0: किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। ये संगठन खेती किसानी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एफपीओ से कई किसान जुड़े होते हैं और इससे उन्हें फसल का वाजिब भाव मिलना आसान हो जाता है। एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी उपज का मोल भाव करने का मौका मिल रहा है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है बल्कि कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक जैसे उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। एफपीओ ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को इकट्ठा कर किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। एफपीओ से खासकर छोटे किसानों को काफी फायदा हो रहा है और किसानों की आय बढ़ रही है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार 2021-22 में 2500 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। इससे करीब 60,000 किसानों को मदद मिलेगी। 2500 एफपीओ बनाने का काम केंद्र की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 5 साल के लिए हरेक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हरेक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। देश भर की सहकारी समितियां एफपीओ के गठन में सहयोग करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में निवेश को बढ़ाया जा सके। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हरेक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। एफपीओ गतिविधियों का प्रबंधन इस तरह किया जाता है जिससे सदस्यों को तकनीकी जानकारियां, वित्त व उपज के लिए अच्छा बाजार व बेहतर कीमत मिल सके।
1: तो जाना आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया किसान उत्पादक संगठन और जिसका उद्देश्य अगर हम देखें तो यही कि कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो सके, ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि जो किसान है उनका भी विकास हो पाए। और जब जब बात आर्थिक विकास की कही जाती है, करी जाती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे हमारे किसान जो है ना सिर्फ अकेले बल्कि एकत्र होकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में अगर हम देखते हैं किसान उत्पादक संगठन, ये सबसे आगे हमें नजर आते हैं। इस बारे में गौरव जी आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से एक उद्देश्य को लेकर सरकार जो है उन्होंने इसकी शुरुआत की।
2: मुकुल जी, जैसा हम लोगों का यहाँ पे बहुत छोटे लघु किसान हैं, 85% जो फार्मर हैं हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं
1: जी,
2: तो करीब करीब एक दशक पहले भारत सरकार ने ये एफपीओ मूवमेंट स्टार्ट किया था। आइडिया ये था कि इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल की बहुत सारे फार्मर एक साथ में आए, एक साथ में आकर अपने उत्पाद का विक्रय करने का प्रयास करें
1: जी।

0: अलग अलग तरीके के हम लोगों ने कुछ आउटपुट साइड में जहां पे लोगों ने आज हमारे साथ नरेंद्र पवार जी आपने बताया जैसा जुड़े हैं, कुछ आउटपुट में काम कर रहे हैं, कुछ फार्म मैकेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, फिर जैसा आपने जिक्र किया कि जैविक खेती को लेकर कुछ उस मिशन के साथ में लेके एफपीओ काम कर रहे हैं
1: जी।
0: तो इस तरीके से आज की तारीख में काफी हम लोगों को इसमें सक्सेस देखने को मिली इस मूवमेंट के द्वारा
1: जी।
0: और उसी से उत्साहित होकर भारत सरकार ने एक सेकंड इसका फेज स्टार्ट किया जो 29 फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम लोग करीब 10,000 एफपीओ और बनाएंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा। तो इस प्रकार से ये एफपीओ का मूवमेंट अभी अपने प्रोग्रेस कर रहा है।
1: बिल्कुल, तो देखिए सफलता की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है। शशि भूषण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी गौरव जी हमें जानकारी दे रहे थे कि देखिए हर एक क्षेत्र में, क्योंकि कृषि में माना जाता है कि असीम संभावनाएं हैं, और उन्हीं संभावनाओं को ना सिर्फ हम मान सकते हैं कि जो हमारे युवा हैं वो भी अब एफपीओ से जुड़ रहे हैं, उनका एक रुझान नजर आता है, तो कहीं ना कहीं एक कौशल विकास के साथ साथ कोशिश यही कि जो कृषि क्षेत्र है उसको और बढ़ावा दिया जाए।
2: अभी बिहार, अभी जो कृषि उत्पादक संगठन का बात जो चल रही है मुख्य रूप से, या जो आपका एफपीओ के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, खास करके एफपीओ का जो संगठित सामूहिक खेती एक बहुत बड़ा गठन है, और खास करके इसका जो आत्मा योजना के तहत पूरे इंडिया में आपका FSG का निर्माण किया गया
1: जी।
2: जो फार्मर्स किसान कृषक हितार्थ समूह और कृषक खाद्य सुरक्षा समूह, ये दो ऐसा समूह का निर्माण है जो पूर्व में चल रहा था, लेकिन अभी जो कृषक उत्पादक संगठन की बात जो चल रही है
1: जी।
2: खास करके यह कृषक उत्पादन संगठन के माध्यम से ही पूरे भारत का यह विकास किया जा सकता है, और कृषक उत्पादन संगठन कंपनी जो आपका जो इसमें जो खेती कर रहे हैं, खास करके किसान, छोटे छोटे किसान है, किसान के पास बहुत कम जमीन है, और मुख्य रूप से यदि सामूहिक रूप से हम खेती करते हैं
1: जी।
2: तो हमारा उत्पाद जो तैयार करते हैं, बहुत से जैसे टमाटर की खेती कर रहे हैं, सब्जी का खेती कर रहे हैं, वो छोटे छोटे स्तर पर कर रहे हैं, बहुत कम जमीन उनके पास है, 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1 बीघा की जमीन है, और उस क्षेत्र में यदि तैयार करते हैं एफपीओ, तो वो संगठित होकर वो ट्रक से है जो मंडी में पहुंच सकता है, और आसानी पूर्वक वह उत्पाद को मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृषक उत्पादक संगठन तभी सक्सेस होगा जब वह किसान हमारे प्रशिक्षित होंगे, ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षण यदि ले लेते हैं, उनको प्रशिक्षण और एक्सपोजर कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि प्रशिक्षण लेकर और जगह जगह पर देखकर किसान को उत्साहित होंगे कि हमारे समूह, वो खास करके कृषक उत्पादक संगठन में जो खेती कर रहे हैं वहां पर भ्रमण करने से अन्य किसानों को भी उससे जोड़ने का मौका मिलेगा, उस संगठन से, संगठन जो संगठित होकर खेती करेंगे, जिससे उनका उत्पाद एवं उत्पादकता मूल्य में वृद्धि होगा, वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, जिससे उत्पादन लागत कम होगा और उत्पादन,
1: यानी ये सारे फायदे जो हैं वो मिल सकेंगे हमारे किसानों को एफपीओ से जुड़कर। और जैसा अभी यहाँ शशि भूषण जी बता रहे थे कि देखिए जो एक किसान है वो जब तक खुद खेत पर नहीं जाएंगे, जब तक खुद जो एफपीओ बने हुए हैं उनसे नहीं बात करेंगे, तब तक वो विश्वास नहीं आ पाता, भले ही कितने ही विशेषज्ञ उनको जानकारी दें। और जैसा मैं आपको मुलाकात कराई थी शुरुआत में, हमारे साथ नरेंद्र जी जो है उनसे हम जानना चाहेंगे। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपका सफर हम जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई कि एक एफपीओ जो है, किसान उत्पादक संगठन जो है, इसका निर्माण करना, फिर कैसे ये एफपीओ इतना मजबूत स्थिति में आया कि अब जो बाकी एफपीओ है उनके लिए एक सहारा बना हुआ है।
3: बेसिकली हमारा जो एफपीओ है डायरेक्ट मार्केटिंग में काम करता है, मतलब मार्केट लिंकेजेस में काम करता है। हमने ये देखा कि हम जो किसान के बच्चे हैं वो एजुकेशन लेने के बाद कोई जॉब वगैरह ढूंढते हैं या फिर कोई बिजनेस ढूंढते हैं, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ हम अगर एक्टिविटी करते हैं तो इसमें अच्छा काम भी बन जाएगा और हमारे फार्मर को भी सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि एफपीओ का काम होता है, एफपीओ का काम होता है कि ग्रुप तो पहले से ही बने हुए हैं, मतलब फार्मर एक पहले से ही संगठित रूप में काम करने वाला मतलब मनुष्य प्राणी है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने गांव में बैठ के एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है वो एक साथ ही करते हैं, तो जिसमें सब शेयरिंग करना, एक दूसरे को सपोर्ट होने वाली चीज है। लेकिन जब उसका माल हार्वेस्ट होता है तो मार्केट तक जाने

0: जो प्रोसेस होती है, जो सप्लाई चेन होती है, उसमें किसान का भूमिका नहीं है अभी तक। तो हमने सोचा कि जो फार्मर्स के बच्चे हैं गांव से आए हुए हैं, वो जो अगर दूसरे यहाँ पे कुछ जाए जॉब वगैरह करें, इससे अच्छा कि जो हमारा फार्मर का प्रोड्यूस है वो बेचने की सप्लाई चेन हम इस्टेब्लिश करें, ताकि हमारे फार्मर्स को अच्छा बेनिफिट मिले और हमारे जो रूरल यंगस्टर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और उसी हिसाब से हमने जो वर्क है वो डिसाइड किया कि फार्मर्स प्रोडक्शन तक तब तक का काम करेगा और हम जो उनके बच्चे हैं वो अपने सप्लाई चेन खड़ी करेंगे खुद की, ताकि हम अपने फार्मर्स को अच्छा पैसा दे पाएंगे और कंज्यूमर को अच्छी सर्विस देके जो कुछ अच्छा बेनिफिट मिल रहा है वो हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर हमारे गाँव के लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी वजह से हमारे यहाँ के लोगों को अच्छा पैसा भी मिला और हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा बन लगे एपीओ की वजह से। सब काम हमें आसानी से, एपीओ का मतलब क्या है कि एक तो हम सब काम करते हैं, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, एपीओ हमें लीगली बॉन्ड करता है
1: जी,
0: कि ये एक्टिविटीज करने के लिए हमें लीगली सपोर्ट करता है, ये सब चीजें करते हैं, हमें जो कुछ एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। हर बिजनेस की तरह एग्रीकल्चर एक बिजनेस है जिसमें सारी डिपार्टमेंट है, जैसे स्टैटिस्टिक है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, सेल्स है, मार्केटिंग है, प्लानिंग है, फ्यूचर फोरकास्टिंग है, ये सब चीजें अकेला किसान नहीं कर सकता। तो आप इसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज है वो आप एपीओ के थ्रू ले सकते हैं, उनको एक लीगल बॉन्ड में जुड़ा सकते हैं, ताकि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए सब काम करें और सबके साथ जाके सबका बेनिफिट
1: जी। तो देखिए किस तरीके से सबका साथ सबका विकास हो सकता है, नरेंद्र जी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि जब तक किसान संगठित नहीं होगा तब तक शायद उतना फायदा कृषि क्षेत्र से हमें नहीं मिल सकेगा। गौरव जी अगर देखा जाए, क्योंकि सरकार का प्रयास भी यही रहा है कि एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है 10,000 नए जो एफपीओ हैं उनके निर्माण का, इस दिशा में कितना हम आगे बढ़े हैं?
2: मुकुल जी, जैसा मैंने बताया कि ये स्कीम के अनाउंस होने से पहले करीब 10,000 एफपीओ बन चुके थे
1: जी,
2: और जो नया स्कीम है जिसमें जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गवर्नमेंट का, इसमें इन्होंने 10,000 एफपीओ अनाउंस किए हैं जो कि अगले 2-3 साल में, अभी करीब करीब 2,500 एफपीओ जो हैं जिसके लिए अलग अलग इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, एसएफएसी है, नेफेड है, नाबार्ड है, एनसीडीसी है, तो इन लोगों ने सीबीबीओज के साथ में मिलके करीब करीब 2,500 एफपीओ जो हैं वो इन द मेकिंग है, अभी अलग अलग चरणों में बन रहे हैं
1: जी,
2: और अगले 2-3 साल में करीब करीब 10,000 एफपीओ और बन जाएंगे। तो 3 साल के बाद अगर हम एक पूरा आंकड़ा देखें तो करीब करीब पूरा कंट्री के अंदर 20,000 के करीब एफपीओ हैं जो फंक्शनल होंगे
1: जी। लेकिन सीबीबीओ की भी अगर हम बात करते हैं तो एक अहम कड़ी के तौर पर ये काम कर रहा है लगातार, लेकिन एक किसान अगर किसी गांव की हम बात करते हैं या जो हमारे दर्शक शायद उनके जहन में भी ये बात आए, कैसे वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकते हैं या उसके निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं?
2: इसमें बेसिकली सीबीबीओ जो है वो जमीनी स्तर पे काम करने वाली संस्थाएं होती हैं जो वहां पे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके साथ टच में होती हैं, और जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनके तरीके उनके माध्यम से करीब करीब वहां पे एक इनफॉर्मल ग्रुप की संरचना होती है जिसको FIG बोलते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, जो शशि भूषण जी भी बता रहे थे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उसी तरीके से कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, पहले उनकी संरचना होती है, करीब ऐसा 20-25 ग्रुप ग्राउंड पे क्रिएट किए जाते हैं
1: जी,
2: और फिर इन ग्रुप्स को एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है जहां पे मदद की जाती है उनको अच्छे उत्पाद पाने के लिए, एग्रीकल्चर के इनपुट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको मार्केटिंग की सुविधाएं दी जाती हैं
1: जी,
2: और इसके बाद उनको एक फेडरेशन के तहत जिसको हम लोग 20-25 ग्रुप का आज की तारीख में जो एफपीओ है उसके अंदर हम लोग फेडरेट करते हैं, तो करीब करीब 300 से 500 किसानों का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का इस प्रकार से हम लोग संरचना करते हैं
1: जी। ये बिल्कुल देखिए किस तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं वो संगठित हो सकें, और खासतौर से शशि भूषण जी अगर देखा जाए जब हम एग्री बिजनेस की हम बात करते हैं, जो किसान है सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं बल्कि उसको एक उद्यमी के रूप में या एक व्यापारी के रूप में देखें, तो ये शायद एक जो बड़ा बदलाव है ये एफपीओ की वजह से अब हमें नजर आने लगा है।
3: एफपीओ के माध्यम से इसमें बहुत काफी बदलाव आ रही है, बहुत काफी इसमें बदलाव हुआ है कृषक उत्पादक संगठन से, और किसान का उत्पाद आज भी देखिए जो एफपीओ का ही देन है कि जर्दालू आम लंदन गया, जीआई टैग जर्दालू आम पर मिला, जीआई टैग आपका लंकी पर मिला, तो इस पर एक बाहर मतलब एक्सपोर्ट करने की अपार संभावना है, और इस क्षेत्र में बिहार का धरोहर बहुत काफी चीज है, चिनिया केला हो गया, लीची हो गया, मखाना हो गया, तो इस क्षेत्र में एफपीओ के माध्यम से ही पूरे हम पूरे वर्ल्ड में इसका हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारे किसान को, खास करके एफपीओ से जुड़े हुए हैं जो फार्मर्स किसान हैं, उनका जो रेट, जो वैल्यू एडिशन की बात है कि आमदनी कैसे बढ़े, तो यहाँ पर उतना रेट नहीं मिल पाता है। मखाना बिहार में हो रही है, शहद हो रही है बिहार में, बहुत काफी मात्रा में इसकी हो रही है, लेकिन एफपीओ के माध्यम से हम संगठित होकर यदि कार्य करते हैं तो हमारा उत्पाद राज्य और देश में तो होगा ही होगा। जो बिहार का जो सोच है कि हर भारतीय के थाली में एक व्यंजन बिहार का हो, तो इसके माध्यम से बिहार के स्तर से हमारे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में यह फेमस हो सकता है कि इस उत्पाद को हम आज जो यहाँ पर मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हम लोग स्टेट में 2500 फार्मर्स का सिलेक्शन किया गया और मास्टर ट्रेनर को तैयार किया जा रहा, और इसमें खास करके यहाँ पर जो इनकम नहीं हो रहा था, लेकिन बी वेनम के माध्यम से बी वेनम निकालने का एक प्रोसेस बिहार में इसका स्टार्ट हो गया, जिसको इंटरनेशनल मार्केट में 1,20,00,000 रुपए केजी तक इसकी मार्केट है। तो बी वेनम, परफोलिस, रॉयल जेली ये सब नहीं निकालते थे, लेकिन 50 बक्से से पहले 1 से 1.5 लाख रुपया इनकम करते थे, लेकिन आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, आधुनिक तकनीकी से हम खेती करते हैं, मधुमक्खी पालक करते हैं, तो हमारा 8 से 10 लाख रुपये उत्पादन मिलता है, उत्पादन का कॉस्ट जो,
1: यानी आज के समय में जो हम स्मार्ट फार्मिंग की बात करते हैं, स्मार्ट फार्मर उससे जुड़े हुए हैं, और ये जो स्मार्टनेस है हम मान सकते हैं एफपीओ के जरिए देखिए अब आ रही है। नरेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे शुरुआत की गई, लेकिन जब हम विपणन की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, जो काम आपका एफपीओ बखूबी कर रहा है, तो ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि एफपीओ ने कहीं ना कहीं जो दूसरे किसान हैं उनको भी असीम विकल्प और संभावनाएं दिखाई वैश्विक बाजार की तरफ भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर कोई भी मार्केट अगर हम पकड़ते हैं तो मार्केट में ऐसा कोई नहीं कि एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के या फिर एक ही फार्मर की चीजों की जरूरत होती है, अलग अलग एरिया के फार्मर आते हैं, सब सिटीज जो है मेट्रो सिटीज बन गए। जैसे अगर मुंबई की बात करते हैं, मुंबई पुणे की, तो यहाँ पे दिल्ली से लोग है, चंडीगढ़ से लोग है, बिहार से लोग है, चेन्नई से लोग है, तो सब लोगों की सब रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक साथ अगर ज्यादा एक्टिव जाते हैं तो हम अलग अलग तरीके के वराइटीज के प्रोड्यूस, एग्री प्रोड्यूस उनके तक यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने नाफेड़ के साथ भी किसान मंडी किया, तो उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे चेरी में, चेरी नाफेड़ ने जो कश्मीर के एफपीओज है उनका चेरी नाफेड़ के साथ मिलकर हमने मुंबई में लाए। जैसे हमारे महाराष्ट्र के जो एफपीओज है, जिसका हमारा खुद का जैसे वेजिटेबल का प्रोडक्शन है, कहाँ पे ऑरेंजेस का प्रोडक्शन है, कहाँ पे मैंगो का प्रोडक्शन है, ये जो चीजें मेट्रो सिटीज में लगती है वो हम उनके साथ टाइप करके उनको भी मार्केट लिंक दे देते हैं। इसे भी हमारे लगभग 168 ग्रुप्स और एफपीओज है, जिसका हम सालाना 100 करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सीधा बेचते हैं। सर ने भी उनकी मन की बात में प्रशंसा की है, लेकिन कोई भी मार्केट डेवलप करना है तो एफपीओ के थ्रू आप वहां तक जा सकते हैं, और एक ग्रुप के तरह, मतलब कोई भी चीज देखो, हम सीधी चीज है कि हम जितने बड़े हो जाते हैं, जितने लोग जुड़ते जाते हैं, तो उतना ही काम बड़ा हो जाता है। जितने बड़े हो जाते हैं तो स्केल की जो हमें बेनिफिट है वो अपने आप मिल जाते हैं। तो स्केल करने के लिए देखो, मार्केट में हर चीज जा रही है, पहले भी जा रही थी एफपीओ में, पहले जैसे जैसे जैसे समाज बना है 2000 साल से लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। हम अगर एक साथ होते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो काम करने वाले लोग हैं या हमारे जो सेम इंटरेस्ट वाले लोग हैं उनका बेनिफिट सिक्योर करना हमारे एफपीओ का जरूर काम है। तो जितने ज्यादा एफपीओ जुड़ जाते हैं तो उतने ज्यादा आपका मजबूत संगठन हो जाता है, और उतना ज्यादा आपका शेयर मार्केट बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल नरेंद्र जी, इतने ज्यादा जो एफपीओ आपने बताया जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ उसमें इतने संख्या में जो किसान है वो आपसे जुड़े हुए हैं, और जैसा आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने भी उस बात को सराहा, वो किस तरह का अनुभव रहा आपके लिए?
0: बिल्कुल बढ़िया सर, जब अगर कोई चीज आप बनाते हैं, देखो हम फार्मर के बच्चे हैं, हम कोई चीज ऐसा तो नहीं कि 10 साल 20 साल प्रेडिक्ट करके बना सकते हैं। हम आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कुछ चीज बनाते हैं कि अभी हमारा माल आज जो हार्वेस्ट किया है वो बेचने के लिए हम कहाँ पे जाए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, इस वजह से हमें पता चलता है। यही चीज अगर गवर्नमेंट के लेवल पे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और ऐसी प्रशंसा करती है तो हमें और भी उसमें अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है, और हमारे देशी जो लोग है बाकी उनको भी लगता है गवर्नमेंट इन छोटी छोटी चीजों को अगर प्रशंसा कर रही है तो गवर्नमेंट इन चीजों में ध्यान दे रही है, तो उसके जैसे और हजारों लड़के तैयार हो जाते हैं और हजारों एफपीओ बन जाते हैं कि जो चाहते हैं कि हम अपना मार्केट तैयार करें और हमारे किसानों को भी बेनिफिट देते हैं।
1: बिल्कुल नरेंद्र जी, लेकिन ये आपका बड़प्पन है, आप अभी भी इसको छोटी बात कर रहे हैं, जबकि खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को सराहा भी है और लगातार इसी वजह से भी हम मान सकते हैं कि कोशिश की जा रही है और ज्यादा मजबूती जो है वो किसान उत्पादक संगठन क्षेत्र में आ सके। और खासतौर से गौरव जी, अगर देखा जाए एक जिला एक उत्पाद जैसी भी योजनाएं हैं सरकार की, तो क्या इनका भी समावेश हम मान सकते हैं?
2: बेसिकली जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम है, इसका मेन लक्ष्य यही है इकोनॉमी ऑफ स्केल लाने के लिए। हर एक एरिया की अपनी एक विशेषता है कि जैसे स्ट्रॉबेरी है आपकी, वो महाबलेश्वर से आती है, या आपका दशहरी है वो मलिहाबाद से है, उसी तरीके से आपका जो बासमती है वो उसके लिए तरावड़ी है या अमृतसर है। तो उस तरीके से उस एरिया की जो विशेषता है, वहाँ पे मेजोरिटी फार्मर्स जो हैं आप हम पाते हैं कि वो उस क्रॉप के उत्पाद में संलिप्त होते हैं
1: जी।
2: तो ये जो स्कीम है इसका कन्वर्जेंस FPO के साथ में इसीलिए किया जा रहा है कि उस एरिया की जो उस एरिया की एक विशेषता है उसका कमर्शियल स्केल पे फार्मर को रियलाइजेशन बढ़ा के दिया जा सके इस FPO के संगठन के माध्यम से
1: जी।
2: तो उसी तरीके से ODOP स्कीम का गवर्नमेंट ने कन्वर्जेंस किया ये FPO स्कीम के अंदर। तो ज्यादातर जो कोशिश है उस एरिया के अंदर प्राइमरी लेवल पे उस क्रॉप को जरूर उसमें इन्वॉल्व किया जाए जिस जो उस एरिया की विशेषता है,
1: यानी FPO जो है इससे भी जुड़ सकें।
2: यस,
1: तो देखिए किस तरीके से जब भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, एक जिला उत्पाद जैसी जो योजनाएं हैं उनके जरिए भी कोशिश यही कि अगर वहां पे ज्यादा फायदा हो रहा है तो किसान अगर संगठित होंगे, अगर उनके वहां कोई किसान उत्पादक संगठन है तो वो इस योजना से जुड़कर और भी ज्यादा लाभ ले सकता है। और इसके लिए अलग अलग राज्यों से भी हमने देखा किस तरह का जो रुझान है वो होता नजर आया। शशि भूषण जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से करीब अगर हम बात करते हैं बिहार राज्य की भी, तो यहां भी करीब 200-300 के करीब जो FPO है उनका निर्माण अभी हो चुका है। लेकिन इन FPO में सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं किसी उत्पाद को लेकर आपको रुझान नजर आता है या जो कृषि के संबंधित सेवाएं हैं उनको लेकर रुझान नजर आता है?
3: अभी जिस कृषक उत्पादक संगठन का मुख्य रूप से यहाँ पर ऑर्गेनिक का है जो बढ़ावा ज्यादा दिया जा रहा है, जैविक खेती का
1: जी,
3: जैविक खेती पर, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन काफी मिल जाता है और इस चीज को यदि हम लोग FPO के माध्यम से ऑर्गेनिक का यदि हम प्रोडक्शन करते हैं, इसका नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड है। ऑर्गेनिक का फोकस करने की आवश्यकता है, खास करके यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, उत्पादन तो कर ही रहे हैं, उत्पादन में कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की सिस्टम की ओर यदि जाते हैं तो हमारा उत्पादन लागत कमेगा और उत्पादन लागत कमने के साथ साथ हमारा वैल्यू एडिशन बढ़ जाता है और खास करके पर्यावरण को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए भी, और ह्यूमन में जो आज जो कोविड जो चल रही है इसमें भी बहुत काफी उपयोग में लाया जा सकता है, खास करके इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो ऑर्गेनिक खाना है, जैविक खेती करना है, जैविक खेती करके हम उत्पाद को अच्छे ढंग से इसके उपयोग में ला सकते हैं और हमारे किसान है खुशहाल होंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि उत्पादन को लागत को कम करने में जैविक ही ऐसा है। इस पर किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत काफी महंगा नहीं है, जैविक को वह घर में ही तैयार कर सकते हैं, खास करके जैविक खेती करना करने के लिए जो प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल बर्मी कंपोस्ट जो है जो हमारा प्राकृतिक प्रवाह है वह दिन रात हमारे केचुआ खेत जोत रहा है और मिट्टी की संरचना को सुधार कर रहे
1: हैं। हमारे FPO जो है लगातार इससे जुड़कर और भी अच्छी आमदनी जो है वो ले रहे हैं और उसी वजह से लगातार कोशिश की जा रही है कि और भी जो किसान हैं वो इस संगठन से जुड़ सके, यानी जो किसान उत्पादक संगठन है इससे जुड़ सके। और अभी तक जाना आपने कि किस तरीके से कोई अलग से हम कह सकते हैं ऐसा नहीं है, एक कंपनी हम मान सकते हैं किसान की जिसमें वो खुद अलग अलग पदों पर होते हैं और उसके बाद हिस्सेदारी जो है वो पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है, तो पारदर्शिता इस प्रणाली में हमें नजर आती है, मुनाफा किसान को इसमें होता है, उसके साथ साथ आधुनिक कृषि में हमारे आधुनिक किसान की जो हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन आने वाले समय में इनको कैसे हम मान सकते हैं कि जो इनकी कड़ी है वो अब जुड़ पाएगी स्टार्टअप से, और उसके बाद जब आत्मनिर्भर कृषि की हम बात करते हैं वो भी FPO के जरिए साकार हो सकेगा।
4: किसान उत्पादक संगठन, जी हाँ किसान साथियों, जो FPO है इसके माध्यम से बहुत सारे किसान जो हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा किसान है वो अपना एक संगठन के माध्यम से अपनी जो आमदनी है उसे बढ़ा सकता है। चर्चा का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। FPO से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण चर्चा बातों को हम जानेंगे और भी महत्वपूर्ण इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज पर।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार किसान उत्पादन संगठन के बारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: एफपीओ मूवमेंट है, जिसके तहत ये छोटे किसानों को साथ में लाकर ये एफपीओ की संरचना की जा रही है। दूसरा जो मूवमेंट है, वहाँ पे स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, जो स्टार्टअप मूवमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, DST है, वो लोग स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा इंक्यूबेशन एजेंसी को सपोर्ट करते हैं
3: जी।
2: तो ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये लोग जो एग्रीकल्चर के पेन पॉइंट्स हैं, ये ऐसे सब इलीट इंस्टीट्यूट से आते हैं, IIM, IIT से, जो कोशिश कर रहे हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके तहत किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के पेन पॉइंट्स हैं, चाहे वो प्री हार्वेस्ट के हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के हैं, उसको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है
3: जी।
2: जैसे प्री हार्वेस्ट के अंदर कुछ स्टार्टअप्स हैं, IIT कानपुर ने अभी एक ऐसा सॉइल टेस्टिंग का मशीन का इजाद किया, जिसमें कि रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है, जो उसको चलाने की कॉस्ट है, ऑलमोस्ट ना के जैसे है, और उसके अंदर विद इन मिनट्स वो सॉइल टेस्ट कर पाते हैं
3: जी।
2: तो इस तरीके की प्री हार्वेस्ट के टेक्नोलॉजी है, जो उन्होंने एग्रोनेक्स्ट एक स्टार्टअप के साथ टाई अप किया उसको ग्राउंड पे ले जाने के लिए। ऐसे कृषि तंत्र एक FPO है, सॉरी स्टार्टअप है, जिसने एक ऐसा ही ऑटोमेट किया सॉइल टेस्टिंग का प्रोसेस को। ऐसे एक इंटेलो लैब करके एक स्टार्टअप है, जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांजेक्शन्स में व्यापारी के साथ में फार्मर्स को, वो क्वालिटी फ्रंट पे आती है। तो उन्होंने,
3: गौरव जी, एक दूसरे के पूरक होते हमें ये नजर आ रहे हैं अगर हम FPO और स्टार्टअप्स की बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए अगर आपको जरूरत पड़ रही है इनपुट्स की या कच्चे माल की अगर हम बात करते हैं, तो वो शायद हमारा FPO जो है वहां पर वो भली भांति वो कार्य कर रहा है।
2: हाँ जी, FPO एक साइड में है, और जो टेक्नोलॉजी का समावेश है यहाँ पे, वो स्टार्टअप मूवमेंट के द्वारा देखने में आ रहा है
3: जी।
2: तो ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से पूरक के जैसा कार्य कर रहे हैं
3: जी, बिल्कुल। और यहाँ शशिभूषण जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब क्योंकि अब जैसे ही जो FPO का निर्माण होता है, उसके बाद समस्याएं उनके सामने रहती हैं, कुछ चुनौतियां भी सामने रहती हैं, और शायद काफी हद तक जो उनकी चुनौतियां हैं उनका समाधान अगर वो स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं या सरकार की तरफ से उन्हें मदद मिल रही है, तो काफी हद तक वो समाधान हो जाता है। बिहार की अगर बात करें, तो क्या वहां भी एक मजबूत कड़ी के तौर पर नजर आ रहे हैं हमारे जो FPO हैं और जो एग्री स्टार्टअप्स हैं?
4: बिहार स्टेट में भी स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं, उनको हम लोग है जो प्रशिक्षण के माध्यम से, खास करके ट्रेंड होना अति आवश्यक है। यदि जब तक हम लोग प्रशिक्षित नहीं होंगे, तो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मुर्गी पालन करना है, बकरी पालन करना है, मधुमक्खी पालन करना है, तो स्टार्टअप करने के पहले उनको है जो प्रशिक्षित किया जाता है, और खास करके उनको यह वहाँ लोकल स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र है, आत्मा कार्यालय है, जिला कृषि कार्यालय है, तो वहाँ से संपर्क स्थापित करके हमारे प्रखंड स्तर पर भी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक वहाँ पर सहयोग करते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी उनको एडॉप्ट कराते हैं, और बामिती स्तर से उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, खास करके ATM BTM और जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज में हमारे जुड़े हुए हैं, कृषि समन्वयक भी है जो ब्लॉक स्तर पर है, और उनको हम लोग प्रशिक्षित करके और प्रशिक्षण लेकर उनको किसान का जो जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई मुर्गी पालन करना चाहते हैं, कोई बकरी पालन करना चाहते हैं, तो उनको विशेष तौर पे प्रशिक्षित करके और उनका जो भी प्रॉब्लम होता है, जो चैलेंज है, उसको चैलेंज को दूर किया जाता है। खास करके यदि जब तक हम लोग उन किसानों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तब उनका जो लॉस होने की संभावना बनी हुई रहती है। और हर हमेशा खास करके कृषक उत्पादक संगठन हमारा FIG FAG का निर्माण किया हुआ है, उसके माध्यम से जो FPO से जुड़े हुए हैं, उनको भी प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था किया जाए, ताकि प्रशिक्षित होकर वह आसानी पूर्वक, जैसे जिस क्षेत्र में लोग डिस्ट्रिक्ट इसमें क्षेत्र क्षेत्र पर ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिस क्रॉप को फसल ले रहे हैं उस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा दिया जाए,
3: यानी बेहतर कुशलता और दक्षता के साथ कोशिश यही की जाती है। अगर प्रशिक्षण आप लेते हैं तो और बेहतर आप उसमें हो सकेंगे और ज्यादा निपुण आप उसमें हो सकेंगे, जिसका फायदा आपको आने वाले समय में मिल सकेगा। नरेंद्र जी, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले आपके सामने भी जाहिर तौर पर चुनौतियां रही होंगी जब एफपीओ का निर्माण आपने किया था, किस तरीके से बाजार तक पहुंचना है, लेकिन अब किस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो बाजार है या व्यापारी हैं बड़े, वो शायद खुद आप तक पहुंचते होंगे आप?
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बेसिक लेवल ही देखे तो इकोसिस्टम होती है जहाँ पे सारे मतलब प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग की चीज है, जब तक एक गट्ठे में ऑर्गेनाइज नहीं होती तब तक इसमें से कोई भी आदमी ठीक से काम नहीं कर पाता है। हमारा क्या काम होता है कि ये सब ऑर्गेनाइज करना, मतलब अच्छा प्रोड्यूस कंज्यूमर को चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ती है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन के लिए पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करना, फार्मर्स की रिसोर्सेस अवेलेबल करके देना, अच्छे इनपुट्स अवेलेबल करके देना, ये सब चीजें करनी पड़ती है। जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो ट्रीटमेंट होती है या सप्लाई चेन होती है, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हुए होते हैं, तो वो लोगों को आपको एक साथ जोड़ना पड़ता है और एक इकोसिस्टम बनानी पड़ती है जो आपकी स्ट्रांगली अप्रोच हो, सीड से लेके प्लेट तक, मतलब अपने फार्म से लेके कंज्यूमर के घर तक जाने तक की जो सप्लाई वो खड़ी करने के लिए जो आपको लोग जरूरत होते हैं वो आपको एक इसमें जोड़ने पड़ते हैं
3: जी।
5: और जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, वैसे लोग आपको मिल भी जाते हैं और लोग आपके पास आ भी जाते हैं, लेकिन आपको इसमें स्ट्रांग ऐसा मैसेज देना होता है लोगों तक कि एक अच्छे मॉडल है जहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से फार्मर्स का, बाकी स्टेक होल्डर का, सबका इंटरेस्ट कैसे बरकरार रहे, ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी के साथ कैसा अपना वर्क करे ताकि सबको बेनिफिट हो, लॉसेस कम हो, कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन बने जिसमें कंज्यूमर भी बेनिफिट मिले
3: जी,
5: फार्मर को भी बेनिफिट।
3: नरेंद्र जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि क्योंकि इतने सारे एफपीओ जो हैं वो आपसे जुड़ते हैं और एक कारोबार जो है बड़े स्तर पर पहुंचता है, और उसमें जब बात आती है हिस्सेदारी की या खासतौर से मुनाफे की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो हर एक एफपीओ है वहां ये सुनिश्चित किया जाता है कि कितना मुनाफा आपको मिल सकता है, क्योंकि किसान के जहन में ये विश्वास दिलाना कि यहां आपको इतना मुनाफा मिल सकता है ये कहीं ना कहीं मुश्किल रहता है, चुनौतीपूर्ण रहता है, तो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो किसान है उसका विश्वास नजर आता है एफपीओ को लेकर?
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने बात कही कि हमेशा ही होता है कि जब कुछ मिलता नहीं हो तब तक सब लोग साथ होते हैं एफपीओ के, जब कुछ मिलना चालू हो गया तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है, बहुत सारे चीजें हो जाती है उसमें
3: जी।
5: हम जिस तरह से काम करते हैं तो हम बेसिकली वर्क बेसिस पे काम करते हैं, हम जब काम चालू करते हैं तब भी डिसाइड करते हैं कि किसका क्या वर्क है और उसको वर्क के हिसाब से कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। जैसे हमारे इसमें अगर देखते हैं तो हमारे दो टीम बनते हैं, एक एफपीओ के कोई भी, एक जो होती है कल्टीवेशन वाली प्रोडक्शन वाली और दूसरी टीम जो होती है वो सेल्स वाली। एक फार्मर सब जो एक कम्युनिटी पर प्रोडक्शन कर रहा है तो हम ये डिसाइड कर देते हैं कि 40% अगर 20% सप्लाई चेन की कॉस्ट है और 20% सेल कटिंग को, तो 40% सेल्स में जाएगा, 60% प्रोडक्शन में जाएगा। जो प्रोडक्शन करने वाला फार्मर है उसने अगर 200 किलो भी कम्युनिटी प्रोडक्ट की है तो उसका सेल्स प्राइस देकर 60% उस फार्मर को सीधा जाता है, 40% वो सेल करने वाले को जाता है। इस हिसाब से अगर आप सब चीजें प्री डिफाइंड है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय तभी आपके काम बहुत लॉन्ग टर्म चला जाता है कि आपके सब चीजें डिफरेंट डिफाइन है, आपका जो जो जैसे काम कर रहा है वो बेसिस पे अगर सबको मिल रहा है, क्योंकि जब ग्रुप बड़े लेवल पे एक साथ आ जाता है तो हमेशा उसको एक चीजें लगती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ भी कुछ पता नहीं, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट तो उनको ट्रेनिंग देना भी होता है, जैसे कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं लोग तो उनको पता होता है कि मेरा एक पोर्टफोलियो है और मुझे इसके लिए उतना पैसा मिलने वाला है। वैसे ही एपीसी में हर किसी का एक पोर्टफोलियो होता है, हर आदमी कोई एक तो सुपरस्टार नहीं होता कि हर चीजें एक ही आदमी करेगा, तो जो आदमी जो काम कर रहा है उसको वो अच्छी तरह से निभाए और उसको उसके लिए पैसा मिले,
3: यानी सबकी जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित कर दी जाती है और उसी के अनुसार जो हिस्सेदारी आती है यानी जो मुनाफा है वो देखिए किस तरीके से हम मान सकते हैं कि एक सही अनुपात में, निश्चित अनुपात में हर एक एफपीओ तक पहुंचता है। और खासतौर से गौरव जी देखा जाए तो शायद आपको भी काफी तसल्ली मिलती होगी, काफी खुशी होती होगी जब एक किसान जो है कृषि में जो अर्थशास्त्र छिपा हुआ है जब उसको जानते हैं समझते हैं। तो
2: इसका मेन ऑब्जेक्टिव मुकुल जी यही है कि हम लोग जो किसान है उसको इसका जो इकोनॉमिक्स है वो समझ में आना चाहिए। जैसा शुरू में नरेंद्र पवार जी ने कहा था कि एग्रीकल्चर जो है इसमें बहुत सारा साइंस का समावेश है
3: जी।
2: यहाँ पे एक फार्मर को बॉटनिस्ट होना जरूरी है, उसको प्लांट पैथोलॉजिस्ट होना जरूरी है, उसको एग्रो इकोनॉमिस्ट होना जरूरी है। तो जिसका इन्होंने यहाँ पे अभी मेंशन भी किया किस प्रकार से ये लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उस तरीके का अलग अलग अपना पोर्टफोलियो का निर्वहन करते हुए एफपीओ जिस तरीके से अपना टारगेट अचीव करती है, तो ये काफी एक सक्सेसफुल मॉडल के जैसे ही हो रहा है।
3: कितनी संख्या तक किसान जो है वो एक एफपीओ में जुड़ सकते हैं, और अगर सबसे कम संख्या आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि कितनी एक न्यूनतम सीमा जो है वो कितनी है और अधिकतम कितनी है
2: इसमें? इसमें जो नया स्कीम है उसमें जैसे हिली एरियाज है जहां पे स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है कि कश्मीर की बेल्ट है या हिमाचल है या नॉर्थ ईस्ट एरियाज है, वहां पे 100 तक फार्मर्स को साथ में लेके एक संगठन का निर्माण होता है और ये संख्या जो है 200 तक भी जाती है, और इसके अलावा अगर कहीं पे थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है तो उसमें थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। जो नॉर्मल प्लेन एरियाज है वहां पे अभी 300 किसानों को लेके, मिनिमम 300 किसानों को लेके ऐसा एक एफपीओ बनाया जाता है जिसकी संख्या 500 और 500 से ऊपर 1000 तक भी चली जाती है
3: जी।
2: और कुछ बड़े एफपीओज हैं।

0: बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे किसान साथ में मिलकर आए, इस तरीके का जैसा नरेंद्र पवार जी का संगठन है, इस तरीके के संगठन का निर्माण हो और फिर उसके बाद में वो एक कॉरपोरेट के जैसा इसको इंस्टीट्यूशन को रन करें और जिसमें हर फार्मर की सहभागिता हो वैल्यू चेन सिस्टम के अंदर और उनको उनके जो प्रोडक्ट का बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो, उनकी आमदनी बढ़े।
1: बिल्कुल गौरव जी, लेकिन एक सवाल अक्सर जो किसान है उनके जहन में भी आता है, कई बार उन्होंने हमसे भी इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की है, जब हम बात करते हैं सहकारिता की, कॉपरेटिव की, उनसे कैसे हम जो एफपीओ है उसको अलग मान सकते हैं?
0: कॉपरेटिव और एफपीसी का जो अभी मेन डिफरेंस जो है, कॉपरेटिव जो है उसके अंदर भी ऐसे ही फार्मर संगठित होकर करते हैं, लेकिन उसमें जो नॉर्म्स हैं, बायलॉज जो होते हैं जो गवर्न करने के लिए, उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम है। और जो एफपीसी है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जो अभी नई जितनी भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रही है वो कंपनीज एक्ट के अंदर बन रही है, तो इसमें उस लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि उनको एफपीओ रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए किस तरीके के बायलॉज का वो लोग निर्माण करते हैं। तो ये अभी रियलाइज किया जा रहा है कि ये एक बेटर मॉडल है,
1: एक बड़ा अंतर इसको मान सकते हैं, जिस वजह से किसान खुद को थोड़ा सा स्वतंत्र भी मानते हैं कि इस तरह की देखिए जो बाधाएं हैं या बंदिशें हैं वो उन पर नहीं है। और खासतौर से शशि भूषण जी, अगर देखा जाए जो अब लगातार अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश की भी अगर बात की जाए, तो अब एक हम रुझान मान सकते हैं, खासतौर से एक समय था जब जो युवा पीढ़ी थी माना जाता था कि उनकी रुचि अब शायद कृषि में नहीं है, लेकिन अब वही युवा पीढ़ी है जो कि ना सिर्फ एफपीओ का निर्माण कर रही है, स्टार्टअप से जुड़ रही है और कोशिश यही कि आत्मनिर्भर कृषि के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
2: युवा पीढ़ी जो है खास करके इस क्षेत्र में एफपीओ के माध्यम से यदि आते हैं और उनका युवा को प्रशिक्षण लेकर और जिस सेक्टर में इंटरेस्टेड है, जिस क्षेत्र में वो इंटरेस्ट है, विकास मिशन के तहत भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कई कोर्सों पर, वर्मी कंपोस्ट हो गया, सीड प्रोडक्शन हो गया, मशरूम उत्पादन हो गया, गार्डेनर हो गया, जिस क्षेत्र में इंटरेस्टेड युवा वर्ग है वो यदि संगठित होकर इस क्षेत्र में एफपीओ के माध्यम से यदि आते हैं तो इसमें निश्चित तौर पे उन युवा वर्गों को रोजगार मिलेंगे और खास करके उन लोग युवा इसमें यदि आते हैं एफपीओ के माध्यम में जुड़ते हैं तो उनका जो आज जो बेरोजगार का जो बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, जो पलायन हो रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं और इस क्षेत्र में अपने ही क्षेत्र में लोकल में वोकल, लोकल क्षेत्र में अपने गांव के को यदि युवा वर्ग इसमें आते हैं कृषक उत्पादक संगठन करके और इसमें आत्मा योजना के तहत प्रशिक्षण लेते हैं और कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित हो जाते हैं तो वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं और अन्य किसानों को भी जो इसमें जुड़े हुए हैं उनको सदस्य बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और उनका उत्पाद देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजारों में भी जाएगा और उनका आमदनी सुदृढ़ होगा यदि संगठित होकर यदि खेती करते हैं, खास करके एफपीओ के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर हमारे बिहार ही नहीं पूरे राष्ट्र स्तर पर एक बहुत बड़ा इस पर साधन है और किसी से बड़ा कोई उद्योग नहीं है इस क्षेत्र का। यदि उद्योग के रूप में यदि हम चयन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें अधिक से अधिक बहुत काफी सभी लोगों को रोजगार मिल सकता है जिनके पास भूमि है।
1: जो बड़ी समस्या रहती है, चुनौती हम मान सकते हैं रोजगार की, वो भी एफपीओ के जरिए देखिए एक समाधान जो है, क्योंकि ना सिर्फ आपको खुद को रोजगार बल्कि जो बाकी और हैं उनको भी आप रोजगार मुहैया करा सकेंगे। साथ ही यहां नरेंद्र जी जानना चाहेंगे, एफपीओ की जब हम बात करते हैं, किसान उत्पादक संगठन की जब हम बात करते हैं, इसमें महिलाओं की भागीदारी की अगर बात की जाए, क्या कुछ ऐसे भी संगठन है जो आपसे जुड़े हुए हैं जो पूर्णतः जो महिलाएं हैं वो संचालित कर रही हैं, या जो और एफपीओ में कितनी किस जो भागीदारी है महिलाओं की वो नजर आती है आपको?
3: बिल्कुल सर, अगर इसमें पूरे सेक्टर में भी अगर देखते हैं, जैसे आपने बोला कि युवा क्यों आ रहे हैं यहाँ पे ज्यादा, तो जैसे रूरल एरिया में मतलब गांव में जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, ये सब लोग अभी के हैं जिनकी उम्र 30-35 साल है, हमारे उम्र के लोग है लड़के भी, तो जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है गाँव में तो वैसे गाँव के युवा इस बिजनेस में आ रहे हैं। वैसे ही जब हमारी औरतों को, हमारे जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा मिलेगी, अच्छा अवसर मिलेगी, रिसोर्सेस मिल जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। अभी महाराष्ट्र में अगर देखते हैं तो बहुत सारे महिलाएं संगठन है जो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अपने गौरव जी भी बोलेंगे, नाफेड़ के साथ भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो पुत्र शक्ति करके हमारे एक हुए, जो खुद ओनियन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लगभग

0: 45,000 मेट्रिक टन का उन्होंने इस साल उड़ीन का काम किया। अभी वो उनका कल मेरे पास आए थे, वो तो उनका एक प्राइवेट मार्केट बना रहे यूनियन का, बस जो वुमन महिला ही चलाएंगे, महिला ही उसके लाइसेंस वगैरह होके महिला ही परचेस करके महिला सेल करेंगे और महिला ही मार्केट चलाएंगे। अवसर और उपलब्धि अगर होती है तो महिला पुरुष ऐसा कोई फर्क नहीं है, गांव के लोग शहर के लोग ऐसा कोई नहीं, लेकिन सब जगह पर रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, जैसे शिक्षा हो, बाकी सारे रिसोर्सेज हो, अपॉर्चुनिटीज हो, तो बाकी कोई कम नहीं इसमें।
1: बिल्कुल, यानी मान सकते हैं कोई भी जो भेदभाव है देखिए वो नहीं है, फिर चाहे हम जो हमारे पुरुष किसान है उनकी बात करें, महिला किसानों की बात की जाए। जैसा नरेंद्र जी ने कहा कि संसाधन अगर हमें मिल जाते हैं तो फिर हर कोई यही चाहता है कि उसका आर्थिक विकास हो सके, वो तरक्की कर सके, और उसकी तरक्की के साथ साथ जुड़ी है इस देश की तरक्की भी।
2: आने वाले समय में भी अनेकों संभावनाएं हमें नजर आ रही है, तो इसमें और क्या क्या बदलाव होने हो सकते हैं आदि जानकारियों को हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। सो बने रहिए हमारे साथ रेडियो 90.8 FM के साथ।
3: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आप रेडियो आपकी बातें।
1: और खासतौर से महिलाओं की भी अगर बात की जाए तो ब्रेक में जाने से पहले नरेंद्र जी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि पूर्णतः जो महिलाएं हैं, कई ऐसे एफपीओ हैं जो वो संचालित कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण जो है वो भी इनके जरिए हो रहा है, रोजगार सृजन भी हो रहा है। और जब एक नए भारत की बात हम करते हैं, बदलते भारत की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं गौरव जी जो इस बदलते भारत की बदलती कृषि है वो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि एफपीओ से अब जुड़ती हुई नजर आ रही है।
4: अभी ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारी समस्या थी सीमांत किसानों की, उसको अब हम एफपीओ के माध्यम से उसको काफी तक प्रॉब्लम को हम लोग रिजोल्व कर पाए हैं। और आगे अगर हम लोग वृत्त चित्र के ऊपर देखें कि जैसा आपने भी थोड़ा जिक्र किया था कि और बामेती से शशिभूषण जी ने भी बोला था कि वहां से उनका एक्सपोर्ट हुआ पोटैटो बिहार से, तो उस तरीके की संभावनाएं इसमें जुड़ती जा रही हैं, जहां पे जो एफपीओज हैं वो वैल्यू चेन के अंदर उनकी हिस्सेदारी एक तरीके से बढ़ती नजर आ रही है। वहां पे आज की तारीख में बहुत सारे एफपीओज के ऐसे एग्जांपल हैं जो नरेंद्र पवार जी के जैसे आगे वैल्यू चेन में रिटेल एंड के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कॉरपोरेट काम कर रहे हैं, फार्म ग्रोसर के नाम से ऐसी एफपीओज हैं जो सीधा कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, उनका रियलाइजेशन बढ़ रहा है। और इसका जो अगला बड़ा हम लोग एक बदलाव देखेंगे कि ये एफपीओ उस लेवल तक पहुंचेंगी जहां पे ये डील स्ट्राइक करेंगे एक्सपोर्ट के लिए। बहुत सारे एफपीओज अभी इस तरीके की संभावनाएं तलाश रहे हैं, त्रिपुरा से पाइनएप्पल है वो यूके जा रहा है, या इधर से पोटैटो इनका बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, उस तरीके से मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज हैं
1: जो बड़ी नामी गरामी कंपनियां हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जो है वो करते नजर आ सकते हैं एफपीओ हमारे।
4: बिल्कुल, इस सिचुएशन में एफपीओ कुछ पहुंच चुके हैं जहां पे उनकी जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स हैं जो कन्वेंशनल प्लेयर्स हैं उनसे भी उन्होंने पास्ट में ज्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं, ग्रेप्स के केस में ऐसा हो रहा है। और मैंने वही बताया कि जैसे अब आगे भी संभावनाएं हैं जहां पे बहुत सारी ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं जो बाहर कंट्री में जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्लान कर रहे हैं डायरेक्ट सोर्सिंग का फार्मर या एफपीओ के द्वारा।
1: जी बिल्कुल, जैसा यहां देखिए गौरव जी ने कहा कि काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हम उनको जानकारी मुहैया करा रहे हैं। नरेंद्र जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी संख्या में जो किसान हैं आपसे जुड़े भी हैं, क्या आपको लगता है कि किस तरीके से जो प्रशिक्षण है उसको और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और उसमें जब हम तकनीकी ज्ञान की बात करते हैं या प्रयोगात्मक शिक्षा की जब खासतौर से बात की जाती है वो कितना जरूरी आपको लगता है कि किसान को तकनीकी जानकारी भी मुहैया कराई जाए?
0: बिल्कुल सर, इसमें जैसे एफपीओ एक साथ आ जाते हैं तो एफपीओ के थ्रू ये लोगों को ये सब सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन इसका एक हमें फंडामेंटल सोचना पड़ेगा कि हर कोई चीज में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन नई अपडेट हो जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में हो, वेदर के बारे में हो, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में हो, कोई डे टू डे मिलने वाली चीज है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि कोई एक एफपीओ के साथ जुड़े हैं तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। हमें बड़े लेवल पे हमेशा इंफॉर्मेशन फ्लो फार्मर तक पहुंचाना पड़ेगा कि वो अपने प्रोडक्शन में कैसे सुधार कर सकता है, कौन से नए सीड आए हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आए हैं, कौन से नए इनपुट्स आए हैं, सेल्स की क्या इंफॉर्मेशन है, मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च हम लोगों को कैसे दे सकते हैं, और डे टू डे होने ऑपरेशन डे टू डे होने वाली चीज है जो अपने गवर्नमेंट के थ्रू भी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम लेके फार्म विजिट करके फार्म फील्ड स्कूल के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू जैसे यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इसके थ्रू भी बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे कि फार्मर को डे टू डे बेस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे हम कोई भी आदमी है अगर यहाँ पे रहता है तो हमेशा रोज न्यूज देखता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा है। वैसे ही जैसे एग्रीकल्चरिस्ट है वो उन्हें हमेशा ये जानकारी मिलनी चाहिए कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, फार्मिंग में क्या बदलाव आ रहा है, टेक्नोलॉजी क्या बदल रही है, मार्केट कैसे बदल रहा है, और रोज का रोज मिलना चाहिए। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहायता लेके बहुत बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप भी इन्वॉल्व होंगे। यूपीओ तो होंगे लेकिन स्टार्टअप और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। जैसे गौरव जी की फर्म है जो इसमें बहुत अच्छा काम करती है, बस इंफॉर्मेशन ना देके आपको इंक्यूबेशन तक उनको लेना पड़ेगा ताकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर खड़ा हो। नहीं तो फिर क्या होता है ना, ये एक्टिविटी एक दो साल तक चलती है उसके बाद स्लो हो जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एपीओज है जो शुरुआत में तो अच्छे काम किए लेकिन उनको दिशा नहीं मिली, कुछ सपोर्ट नहीं मिला, उनकी कैपेसिटी जिस तरह से चाहिए ये एक दिन में डेवलप होने वाली चीज नहीं, तो उसको कंटिन्यूस एफर्ट लेने पड़ते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। तो एक कंटिन्यूस एफर्ट वाला एक प्लान और एक सोची समझी हमें शेड्यूल बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी सबको बढ़ावा देने के लिए।
1: बिल्कुल, तो एक सही रणनीति के साथ ना सिर्फ सही दिशा बल्कि जो एफपीओ उनकी दशा भी बेहतर रही इसके लिए लगातार हमें सक्रिय रहना पड़ेगा। और यहाँ शशि भूषण जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, कितना सहमत आप नरेंद्र जी की बातों से?
5: जो बताए बहुत बहुत काफी इस पर देने की जरूरत है, और खास करके जो नया नया मतलब टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट जो हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, इसकी नए नए जो इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत से वैरायटी नए नए वैरायटी आ गए जो अच्छे प्रोडक्शन हाई मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने के लिए इस चीज को होनी आवश्यकता है। और खास करके जो हमारे जो यूनिवर्सिटी जो रिसर्च कर रही है, अनुसंधान केंद्र शोध जो कृषि क्षेत्र में कर रही है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में भी बहुत काफी शोध हो रही है, इस पर निश्चित तौर पे यदि हम एफपीओ के माध्यम से जिस क्षेत्र में जो काम कर रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन हो, मत्स्य हो, इस क्षेत्र में बहुत काफी नई नई तकनीकी आ चुकी है और इसकी सूचना इन्फॉर्मेशन वो वैज्ञानिक और एफपीओ के जो कार्य कर रहे हैं इनको है जो इसके माध्यम से तकनीकी के माध्यम से इन वेबिनार के माध्यम से हो, तो हर हमेशा इन्फॉर्मेशन यदि मिलते हैं सही समय पर यदि इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो निश्चित तौर पे एफपीओ बहुत काफी आगे बढ़ेगी। यह तकनीकी जानकारी मुहैया कराना अति आवश्यक है और सूचना जो वैज्ञानिक के जो सूचना जो है मौसम वैज्ञानिक जो है मौसम के आधारित, क्योंकि कृषि एक मौसम आधारित है और मौसम यदि मौसम की जानकारी हो जाती है तो बहुत काफी खर्च को लागत को कम कर सकते हैं और जो मौसम के कारण हमारे फसल की बहुत काफी नुकसान होता है और इसमें मौसम आधारित को जानकारी निश्चित तौर पे किसानों को एफपीओ से जुड़े हुए हैं यदि वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो निश्चित तौर पे उस सही समय पर सही निर्णय लेकर वह उत्पादन को मार्केट में बेच सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, जब इसकी उपयोगिता करते हुए हमारे एफपीओ जो उपयोग करते हैं तो अन्य किसानों को जो सभी किसान उसमें जो मेन जो एफपीओ के जो है, जो है उनको यदि सूचना मिल जाता है और उनके माध्यम से वो प्रशिक्षित एक प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उनके जो सदस्य हैं जो 200-300 जो किसान फार्मर्स है उनको है भी सूचना इनके माध्यम से जाए ताकि सभी किसान जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभान्वित किया जा सकता है।
1: जी बिल्कुल शशि भूषण जी, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए इस बार के बजट में भी हमने देखा कि किस तरीके से कृषि शिक्षा पर भी जोर दिया गया और उसमें बदलाव की बात कही गई है पाठ्यक्रम में, तो जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं अलग अलग राज्यों में तो वहां फिर इसकी वानगी हमें देखने को मिलेगी, तमाम ये जो जानकारी है किसानों के बीच और बेहतर तरीके से पहुंच सकेगी।
5: कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र जो कृषि किसानों के साथ जो जुड़ने का जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र में वहां पर प्रक्षेत्र में जो फार्म साइंस सेंटर होते हैं वहां पर उस क्लाइमेटी के अनुसार किसानों को यदि वहां पर दिखाते हैं कि कौन सी वैरायटी और फसल कैफेटेरिया वहां पर फसल कैफेटेरिया की लगाई जाती है, धान लगाए गेहूं लगाए तो कैफेटेरिया को उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है और वहां पर यदि किसान देखते हैं कि हमारे कौन सी वेराइटी इस क्षेत्र में अच्छा एराइज करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज दे सकता है, तो उस क्षेत्र को विजिट कराने की आवश्यकता है। और एक्सपोजर यदि कराते हैं या एफपीओ बहुत ही बढ़िया कोई काम कर रहे हैं, जो एफपीओ के जो क्षेत्र में संबंधित जो क्षेत्र में अच्छा एफपीओ जो कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी अन्य एफपीओ के किसानों को वहां पर विजिट कराने की आवश्यकता है, ताकि उस एफपीओ के माध्यम से किस तरह खेती किया जा रहा है, तो परिभ्रमण और प्रशिक्षण एक मस्ट है। और एफपीओ के माध्यम से एफपीओ को भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।
2: किसान उत्पाद संगठन, जी हाँ किसान साथियों, इस संगठन के माध्यम से हमारा जो किसान है उसको एक नई आशा की किरण नजर आती है, क्योंकि इस संगठन के माध्यम से जो किसान है वो अपना जो उत्पाद है उसे देश और प्रदेश में कहीं पर भी उसे निर्यात कर सकता है। साथ ही आप और हम किसान भाइयों, हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा जो संगठन है इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं हमारी जो पहुंच है वह हम बढ़ा सकते हैं, और हमारा जो निर्यात है हम देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं और अच्छी से अच्छी आमदनी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसान साथियों, हमें आवश्यकता है हमारा जो संगठन है इसे मजबूत बनाने की, साथ ही जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। हम केवीकी के माध्यम से हम प्रशिक्षण ले सकते हैं, साथ ही हम विद्यालयों के माध्यम से भी हम इन अलग अलग जो खेती है उसके प्रशिक्षण हम लिए जा सकते हैं। साथ ही कोशिश करने की आवश्यकता है, हमारे जितने भी किसान संगठन है वह हमारी जो अपनी जो कृषि है उसमें नवीनता लाए और जो अपनी पहुंच है उसे बरकरार रखें, बढ़ा कर रखें। कि इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना है, आशा करते हैं आज की यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया 90.8 FM के साथ छबा की आवाज पर।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड, जहां हम मुलाकात करते हैं उन लोगों से जिनकी जिंदगी खुद एक कहानी, एक सफर और एक प्रेरणा होती है। आज हमारी मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रसोई को सिर्फ कुकिंग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे कल्चर, स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन कनेक्शन का एक खूबसूरत माध्यम बना दिया। शेफ, एंटरप्रेन्योर, एजुकेटर और जयपुर होम कुकिंग की फाउंडर शेफ पायल बियानी पिछले एक दशक से दुनिया भर के लोगों को भारतीय शाकाहारी भोजन की समृद्ध परंपरा से रूबरू करा रही हैं। जयपुर की पहली और अनोखी मार्केट टू टेबल टूर की शुरुआत करने वाली पायल जी ने न सिर्फ कुकिंग सिखाई, बल्कि राजस्थान की भोजन की परंपराओं को एक जीवंत अनुभव में बदल दिया। फिलोसफी में मास्टर्स डिग्री, न्यूजीलैंड से प्रोफेशनल कुकरी डिप्लोमा, इटली में कल्नरी ट्रेनिंग और अपने सफर में अनेक प्रयोगों के साथ पायल जी ने कुकिंग को एक कला और जीवन दर्शन दोनों बनाया है। शेफ पायल बियानी जी का जिंदगी अनप्लग्ड में दिल से स्वागत है। तो पायल बियानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम?
1: नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने मुझे इनवाइट किया आपके इस प्रोग्राम में, आपके जो लिसनर्स हैं उनके साथ मुलाकात के लिए, एक वर्चुअल मुलाकात के लिए आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच
0: जी। हमारी पूरी SN रेडियो की फैमिली बहुत एक्साइटेड है आज आपसे बातचीत करने के लिए, आपको सुनने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ जैसे मैंने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने गैदर किए हैं जीवन में। तो हम चलते हैं और शुरू करते हैं आपके करियर से ही, जहां पे आपने फिलोसफी में मास्टर्स किया, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लगा, और उसके बाद फिर आपने प्रोफेशनल कुकरी को अपना करियर बनाया। तो इन दोनों में पैरेलल क्या है मैम, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि फिलोसफी और कुकिंग को अगर हम देखते हैं तो देखने में अलग लगते हैं, बट इनका एक एक कॉमन ग्राउंड है कहीं ना कहीं, जहां पे लोगों को जीवन का स्वाद समझाना इन दोनों करियर पाथ्स या इन दोनों फील्ड्स का पर्पस है। तो आप इन दोनों में कैसे पैरेलल ड्रॉ करते हैं और कैसे फिलोसफी से आप कुकिंग की तरफ आए?
1: देखिए
0: तनुषा
1: जी, फिलोसफी जब मैंने पढ़ी

0: वो वैसे टेक्स्ट बुक होता है, सब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते पढ़ते मतलब मैंने ग्रेजुएशन भी फिलोसफी के साथ में की है एज अ माइनर, बट फिर मैंने मेजर सब्जेक्ट लेके मास्टर्स किया था. सो पढ़ने के दौरान ही हमारे डिस्कशंस होते थे, बिकॉज फिलोसफी यूजुअली जब क्लासेस होती है तो डिस्कशन क्लासेस होती है, देर इज नो राइटिंग क्लास. उसमें कुछ लिखवाया नहीं जाता, कुछ नोट्स नहीं मिलते, सिर्फ डिस्कशंस होते हैं टॉपिक पे. फिलोसफर्स जो होते हैं वो फिलोसफी की बात करते करते, आप जब पढ़ाई करते करते जब खत्म करते हैं, तब तक आपको ये रियलाइज होने लग जाता है कि जिंदगी में हर चीज में फिलोसफी है. हर चीज में आप कुछ भी चीज, कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई या अपनी यू नो लाइफ में कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर चीज के पीछे एक फिलोसफी होती है. तो जिसको हम बहुत कॉमन भाषा में एक आइडिया बोलते हैं, आइडिया. हर चीज का एक आइडिया होता है जो कि वर्चुअल होता है, जो कि जिसे आप कहते हैं इमेजिनेटिव होता है, और वो आउट ऑफ द जो भी कुछ आप ठोस में बनाने वाले हैं, जो भी आप प्रैक्टिकली बनाने वाले हैं, वो उसका एक फॉर्म होता है जो आपके दिमाग में बनता है.
1: जी
0: बाकी फिलोसफी हर चीज के पीछे होती है. पेड़ उगाने के पीछे फिलोसफी होती है, घर बनाने के पीछे फिलोसफी होती है, परिवार बनाने के पीछे फिलोसफी होती है, रिलेशन बनाने के पीछे, कुछ भी चीज, एनी थिंग. यू जस्ट पिकअप एनी सब्जेक्ट, एनी रिलेशनशिप, एनी कुछ भी चीज आप उठा के दुनिया में से देखेंगे, उसके पीछे कोई फिलोसफी जरूर होती है. साइंस के पीछे भी फिलोसफी होती है.
1: बिल्कुल.
0: तो कुकिंग इसी तरीके से, यू नो, कुकिंग भी एक ऐसा चीज है जो कि हमने मतलब ह्यूमन बींग्स की एक ऐसी स्किल है जो हम लोगों ने इतने अपने जितना भी डेवलपमेंट हुआ है हजारों साल करोड़ों सालों का, उसका एक स्किल डेवलप है. कुकिंग के पीछे भी एक फिलॉसफी होती है.
1: राइट.
0: वही चीज, उसी चीज ने मेरे को इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने का, एक मतलब मैं एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पे कैसे आई, उसमें हेल्प कर.
1: तो
0: मैं वो, हाँ मतलब मैं उस तरीके से अपने प्रोफेशन को देखती हूँ.
1: Right.
0: फाइनली इसको मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया.
1: वाओ.
0: How beautiful.
1: About that. Yeah. Amazing, amazing journey. और बहुत ही खूबसूरती से आपने दोनों में पैरेलल ड्रॉ किया. जीवन में हर चीज में फिलॉसफी है, हर चीज में एक फलसफा है. बहुत ही सही बात है. और कैसे एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की जर्नी है ये बेसिकली हर चीज में. तो हम बहुत हैप्पी हैं कि आप कुकिंग की तरफ आए, क्योंकि हमें आपके बहुत अमेजिंग खाने का जायका चखने को मिल रहा है. अब आगे चलते हैं मैम. आपने बहुत सारे लोगों को इंडियन वेजिटेरियन कुजीन सिखाई है, तो आप और आपने बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ भी डील किया है. बेसिकली आपका क्लाइंटेल जनरली फॉरेन क्लाइंट्स ही रहे हैं, जिस तरह का आपका कैरियोग्राफ रहा है. तो आपके अनुभव में जब आप किसी फॉरेन गेस्ट से पहली बार इंटरेक्ट करते हैं एक ट्रेडिशनल इंडियन किचन सेटअप में, तो उन्हें सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट करता है आपके एक्सपीरियंस में? वो रेसिपीज से अट्रैक्ट होते हैं, मसालों से हमारे अट्रैक्ट होते हैं, हमारी मेहमान नवाजी से अट्रैक्ट होते हैं, या इन सबका एक ब्लेंड होता है?
0: एक्चुअली देखिए, वैसे हमें इसमें थोड़ा सा मैं अपना मतलब जब आप फर्स्ट टाइम हम क्योंकि हम मैं फर्स्ट टाइम मिल रही होती हूँ बिल्कुल ही, मतलब मेरे से कोई इंट्रोडक्शन नहीं है किसी का भी. जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो जिंदगी में मेरे से पहली बार मिल रहे हैं. अधिकतर रिपीट क्लाइंट होते हैं, वो अलग बात हो गई. बट जब मैं पहली बार किसी से मिलती हूँ और वो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आया है कि कुछ वो भारतीय खाना इंजॉय करेगा, यू नो, कुछ हम खाएंगे, कुछ नई जगह का नया कल्चरल फूड हमें मिलेगा, तो उसके उसका जो फर्स्ट जो उसके दिमाग में जो भी पिक्चर्स होती हैं वो होती हैं बढ़िया सी सुंदर सी थाली, कुछ बढ़िया सा सुंदर सा कुछ चीजें, कुछ इंटरेस्टिंग समथिंग न्यू विच ही हैज नॉट एक्सप्लोर्ड. बट जो उनको यू नो सबसे ज्यादा जब हम प्रोसेस चालू करते हैं अपना, पहले हम यू नो चीजें दिखाते हैं उनको, मार्केट लेके जाते हैं, वो सब चीजें करते हैं, तो सबसे ज्यादा मजा आता है हमारे मसालों को देख के. सबसे एक्साइटमेंट उनको किसी चीज से होता है, अगर मैं आपके प्रश्न का सही जवाब दे रही हूँ, तो वो मसालों से होता है. क्योंकि हर दुनिया में हर खाने में मसाले होते हैं, बट जिस तरीके से भारत के अंदर भारतीय पारंपरिक भोजन में जो मसालों का समागम हुआ है, जो उसका इंटीग्रेशन हुआ है, वो यूनिक है.
1: बिल्कुल.
0: सो आई थिंक सो फ्रॉम फर्स्ट मोमेंट टू द लास्ट मोमेंट ऑफ आर होल एक्सपीरियंस, जो चीज उनको बार बार एक्साइट करती है वो मसालों का इंटीग्रेशन है. सो एंड देन यू नो दैट दैट गिव्स देम वेरी वेरी इट्स सरप्राइजिंग, मतलब उनको हर चीज में ऐसा कैसे ये ऐसे होता है, इतनी सारी चीजें होती है, ये सब चीजें होती है. सो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम, मैं उनको स्टार्ट करती हूँ चार मसालों से, चार से मैं उनको छह पे लाती हूँ, छह से मैं उनको आठ पे लेके जाती हूँ, आठ से दस पे लेके जाती हूँ, दस से बीस हो जाते हैं. सो वो देखते हैं कि इतना लंबा इसका बैंडविड्थ है और इसके अंदर से हम इतनी सारी चीजों से एक फ्लेवर बना रहे हैं. वो चीज उनको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है और वो चीज भारत के खाने को, भोजन को, हमारी परंपराओं को सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है. भारत का एक्चुअली जो ज्योग्राफी है जो सेंट्रलाइज है वो सारी दुनिया से उसके अंदर तो उसमें यू नो सब चीजें मिक्स होकर के एक नया नया कुजीन बना है. सो हम जो अभी ले रहे हैं, हम जो खा रहे हैं कुजीन, जो हम व्हाट यू नो जो आप कहेंगे जो प्रिवेल करता है कुजीन इस समय, ये बहुत लंबे शताब्दियों का मेल है.
1: बिल्कुल
0: यू नो उसका है. सो मसाले आए, मैं अपने गेस्ट को भी यही कहती हूँ कि इंडियन कुजीन इज जस्ट नॉलेज अबाउट स्पाइसेज, इट्स अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेज, इट्स ओनली दैट. सो स्पाइसेज इज टॉप मोस्ट. सो सबसे ज्यादा आई विल कीप इट, मैं उनको यही कहूंगी कि मसाले ही सबसे ज्यादा यूनिक है, सरप्राइजिंग है.
1: बिल्कुल, जैसे हमारा स्पाइस रूट रहा है और हमेशा हमें भी इंट्रीक करता है, तो बाहर वालों के लिए तो ये है ही बहुत स्पेशल कि किस तरह से इतने अलग अलग कलर्स के मसाले, इतने अलग अलग तरह के मसाले किस तरह से मिलते हैं और इतना यम्मी, इतना जायकेदार खाना हम बनाते हैं और इतने तरह के पकवान हम बनाते हैं हमारे देश में, तो विच इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंट्रीगिंग. तो इसी एहसास के साथ मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कोई गीत की फरमाइश करें तो वो कौन सा होगा, तो हम आपके लिए आज वही गीत प्ले करेंगे.
0: देखिए मुझे बड़ा खूबसूरत गीत पसंद है, मुकेश जी का गाया हुआ
1: जी,
0: गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे.
1: वाओ,
0: तो जीवन का ये बहुत ही मतलब बहुत ही अगेन बहुत बड़ा बहुत
1: फिलोसफिकल गाना है
0: जी, और लेकिन बड़ी सिंपल भाषा में समझाया गया है और बड़ा सब, अगर उसको आप समझना चालू करें तो आपकी लाइफ जीना आसान हो जाएगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, फ्रॉम द फिल्म रेशमी रुमाल.

0: क्या खूबसूरत गीत हैं, क्या खूबसूरत गीत हैं ये। सच में जीवन के छोटे छोटे फलसफे हैं। और क्या गायकी है मुकेश साहब की, बहुत ही उम्दा। वेलकम बैक पायल मैम।
1: धन्यवाद।
0: आगे चलते हैं। आपने पहला जयपुर का एक बहुत ही अनोखा अनूठा सफर शुरू किया जिसको हम मार्केट टू टेबल टूर बोलते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मार्केट टू टेबल टूर होता क्या है हमारे श्रोताओं के लिए, और मेरा दूसरा सवाल इसी के अंदर छुपा हुआ है तो वो ये है कि जयपुर की किसी सब्जी मंडी, किसी मसाले की दुकान या किसी पुरानी गली को अगर एक आवाज मिल जाए तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उन गलियों में इतना घूमते हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है वहां की ग्राउंड रियलिटीज और सब यू नो माहौल का, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि हमें राजस्थानी खाने के बारे में क्या कहानी सुनाएंगी वो गलियां।
1: तो तनुषा जी, अगर आपके सवाल का जवाब मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ कि हम इसको मार्केट टू टेबल टूर क्यों कहते हैं, जैसा कि लिटरल मीनिंग है मार्केट से टेबल तक का सफर, इसको ऐसे माना जाए, तो एक छोटी सी जर्नी हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको एक एक्सपीरियंस जर्नी की तरह देखिए। तो आप मार्केट से, वैसे मैंने जो मेरा जो अगेन आइडिया था इसके पीछे वो ये था कि मैं एक आम गृहिणी, भारत की एक आम मॉडर्न गृहिणी का जो दिन भर का सफर होता है वो क्या होता है, वो सामान खरीदती है, मंडी जाती है, सामान खरीदती है, आज की सब्जियां खरीदती है, कुछ मसाले वगैरह, कुछ तेल घी, जो आपके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आटा वगैरह, सब चीज खरीद के थैले में भर के घर लाती है, और फिर उससे सोचना चालू करती है कि अब चलिए क्या बनाया जाए। तो ये छोटा सा सफर वही दिखाता है, हम वही करते हैं, और ये बिल्कुल मार्केट टू टेबल है, जैसे उस खाने का सफर जो मार्केट से चालू हुआ और आपके टेबल पे आके खत्म हुआ। तो ये तो हमारे अपने मतलब हमारे नाम के पीछे की कहानी बताई आपको
0: जी।
1: और जैसा कि आपने पूछा कि राजस्थान की गलियां या मार्केट्स या हमारी मंडियां हमें क्या क्या क्या कहानी कहती होंगी, तो वो आपको कहेंगी कि इतनी बंजर जमीन जो है राजस्थान की जमीन, बहुत ही मुश्किल ज्योग्राफी है, बहुत ही टफ ज्योग्राफी कहलाती है, बहुत ही मुश्किल जगह है, बहुत आसान, बहुत आसानी से यहाँ कुछ भी नहीं होता,
0: बिल्कुल।
1: सो हमने जो भी कुछ अनाज, जो भी कुछ वनस्पतियां, जो भी कुछ सब्जियां या उगती हैं, तो साल में अब तो बहुत फर्क आ गया टेक्नोलॉजी की वजह से, बट ओरिजिनली जो देखा जाए कि हमारा खाना जो है वो बहुत ही मुश्किल से पाई हुई छोटी छोटी कम चीजों का बनाया हुआ बड़ा ही स्वादिष्ट मेल है,
0: बिल्कुल।
1: तो लेस इंग्रेडिएंट्स एंड मोर फ्लेवर्स,
0: बिल्कुल।
1: तो सारी कहानी उसी की है, सारी कहानी उसी की है कि कम चीजों में यहाँ की महिलाओं ने, जो कि एक्चुअल में जिनको जो सबसे बड़ी शेफ है दुनिया की, वो एक्चुअली इसीलिए लेडीज हैं, उन्होंने हमेशा से खाने की परंपरा को बहुत रिच बनाया, बहुत रिच बनाया। उनके पास कुछ भी नहीं होता, आज छाछ है तो वो छाछ से आपको कढ़ी बना देंगी, आज खाली प्याज बची है तो वो रोटी इतनी स्वादिष्ट बनाएंगे कि रोटी के साथ तो वो प्याज ही अच्छी लगेगी। तो हम राजस्थान का व्यक्ति जो है ना, वो बहुत खाना जो उसका है बहुत सादा खाना है,
0: बिल्कुल,
1: कम चीजों में वो संतुष्टि पाता है। सो हमारे जो भोजन है, हमारा जो राजस्थान का जो पारंपरिक भोजन है, वो उसकी कहानी असली यही है, कम चीजों में बेहद जिंदगी का स्वाद,
0: बिल्कुल, सादा जीवन, सरल जीवन, सुंदर जीवन।
1: एब्सोल्युटली।
0: आगे चलते हैं मैम। आपने बहुत तरह के पिकल्स और सॉसेस में एक्सपेरिमेंट किया है, आई थिंक 12 पिकल्स की एक रेंज है आपके पास। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप फिलोसफी भी पढ़ चुके हैं, तो एक बहुत फिलोसफिकल सा सवाल है कि अगर जिंदगी को एक आचार की बरनी माना जाए तो उसमें कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो जरूरी हैं ताकि वक्त के साथ उसका स्वाद और बेहतर होता जाए।
1: और
0: इसी के साथ एक और सवाल मैंने इसमें जोड़ दिया है, एक कोई आपके फेवरेट अचार की अगर रेसिपी आप बता सके तो हमारे लिसनर्स नोट डाउन कर लें।
1: ओके
0: जी।
1: सो चलिए, सब पहले आपको देखा जाए अचार का मतलब। सो अचार और लाइफ को अगर एक सेम मायने में रखा जाए तो अचार की बरनी और लाइफ की बरनी, अचार में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज अचार बनती है। उसमें फर्स्ट है नमक, सेकंड है ऑयल तेल, और तीसरी चीज है मसाले। अगर आप इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें तो नमक क्या काम करता है, नमक बेसिकली उसको मतलब जो भी आपने इंग्रेडिएंट का अचार डाला है उसका उसको गलाता है, उसको इंग्लिश में उसको कहते हैं क्योर करना, उसको आगे वो उसका प्रोसेसिंग करता है उसके अंदर, राइट
0: जी।
1: और तेल जो होता है वो उसको बाहरी आबो हवा मॉइस्चर ऑक्सीजन हर चीज से दूर रखता है, तो वो बेसिकली प्रिजर्वेशन का काम करता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मसाले होते हैं वो उसका स्वाद बढ़ाते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो ये तीन मेन कॉम्पोनेंट्स हैं अचार के, राइट। अगर इसको हम लाइफ के रूप में देखें तो लाइफ का जो नमक है वो है परिपक्वता, मेच्योरिटी।
0: ब्यूटीफुल,
1: राइट। तेल जो प्रिजर्वेशन का काम करता है, मेरे हिसाब से जिंदगी में आपको प्रिजर्व आपकी लाइफ के सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस के जो इफेक्ट्स हैं उनसे प्रिजर्व आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी कर सकती है। तो आध्यात्मिकता आपको आपका तेल बन जाता है,
0: ल्यूब्रिकेंट है।
1: तो इट्स सो यू नो इन टर्म्स ऑफ अचार इट्स गोइंग टू प्रिजर्व यू, इट्स गोइंग टू सेव यू फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स,
0: एब्सोल्युटली
1: आउटसाइड इफेक्ट्स। सो इट विल कीप यू जस्ट द वे यू आर, प्योर,
0: राइट।
1: देन आपकी लाइफ का जो यू नो जो स्वाद है वो बढ़ेगा आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके हंसी खुशी के पल, सुख दुख के साथ, आपकी मेमोरीज, ये सब चीजें लाइफ का स्वाद बढ़ाती है। सो इन तीनों का सही मिश्रण, कुछ भी चीज ज्यादा नहीं, कुछ भी चीज कम नहीं, तो अचार की फिलॉसफी आपको लाइफ में ऐसे काम आएगी।
0: बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें समझाया, और बिल्कुल सच है कि सच में एक आचार की बरनी और जीवन जिंदगी में बहुत पैरेलल्स हैं, और ये तीन चीजें जो हैं वो सच में जीवन को जीवन बनाती हैं। खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया मैम। इसी के साथ अगर आप एक रेसिपी बता दें हमारे श्रोताओं के लिए तो।
1: अच्छा चलिए, बड़ा क्विक तो होता है, सबसे आसान होता है हरी मिर्च का अचार।
0: जी,
1: हरी मिर्च का बहुत ही आसान होता है, कोई भी बना सकता है। बट अगेन कॉम्पोनेंट वेरी सेम सिमिलर, आपको नमक चाहिए, हरी मिर्चियां बढ़िया सीजनल चाहिए। सो अगेन जो भी अचार आप डालेंगे उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सीजनल होना चाहिए। जो वेजिटेबल या फ्रूट आप जिसका भी अचार डाल रहे हैं या जैम बना रहे हैं उसको बहुत सीजनल होना चाहिए, वो उसी सीजन में उगा हुआ हो और बेस्ट क्वालिटी हो। तो बढ़िया हरी थोड़ी सी पकी हुई मिर्चियां, मतलब हम थोड़ा सा उसकी पतली होनी होती है, मैं ज्यादा डीप नहीं जा पाऊंगी आपके साथ इस समय, समय की उसके वजह से। तो हरी मिर्चियों को आप स्लिट कर सकते हैं बीच में से एक चीरा लगा करके, पुछी हुई हरी मिर्ची, हाथ से कपड़े से पुछी हुई हरी मिर्ची को आप फटाफट चीरा लगा के एक प्लेट में रख दीजिए। तो पाव भर हरी मिर्चियां आपने ली है, उसके अंदर आप 50-50 ग्राम तीन मेन चीजें मिला सकते हैं, थोड़े से भुने हुए मसाले हैं ये, सो राई जो खटाई पैदा करेगी, सौंफ जो स्वाद लाएगा, और थोड़ी सी एक चम्मच दाना मेथी
0: जी,
1: ये आपके मसाले हैं। इसके अलावा नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ये आपका कलर और उसकी शार्पनेस बनाएगी
0: जी।
1: और इन सबको यू नो पिसे हुए मसालों को आप मिला करके थोड़ा सा तेल के साथ में एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे हम। एक चम्मच सिरका आप इसमें डाल सकते हैं ताकि वो थोड़ा प्रिजर्व हो जाए। एक चीज जो हमने पहले बात करी थी, नमक वो इसमें डलेगा। सो नमक थोड़ा सा बाकी मसालों से ज्यादा पड़ता है, आपने आम खाने से ज्यादा पड़ेगा, हम ये ना सोचे कि नमक तेज हो जाएगा क्योंकि नमक इसको पकाएगा इस अचार को
0: जी।
1: सो आम यू नो आम एवरीडे रेसिपीज से आप नमक थोड़ा सा डबल लेती
0: जी।
1: इन सब चीजों को आप मिला के पेस्ट सा बना के हरी मिर्ची के बीच में जो स्लिट बनाया है उसके अंदर आप भर दीजिए, और इनको एक जार के अंदर आप यू नो सूखा बिल्कुल कांच का जार ट्रांसपेरेंट उसके अंदर आप लगा दीजिए। एक एक करके स्टैंडिंग खड़ी कर सकते हैं या दबा सकते हैं एक के ऊपर एक स्टैक करके। फिर तेल को हम सरसों के तेल को गर्म करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, और फिर इस जार के अंदर ऊपर तक लबालब भर देते हैं ताकि ऊपर कोई उसका कोई एयर पॉकेट ना रह जाए, और जार को आप कस के टाइटली बंद करके 12 घंटे के लिए तपती हुई धूप में, मतलब खुली हुई धूप होनी चाहिए, प्योर दिन होना चाहिए, अच्छा बढ़िया साफ, उसमें आप रखिए और अगले दिन आप उसको एंजॉय कीजिए।
0: अरे वाह, मेरे तो मुंह में स्वाद आ गया, मेरे दिमाग में पिक्चर आ गई, मेरी प्लेट एक पराठा और उसके ऊपर ये अचार,
1: उसके ऊपर एक बढ़िया सी लंबी सी मिर्ची।
0: बिल्कुल बिल्कुल स्वाद आ गया सच में। और श्रोताओं जैसे आपने सुना बहुत ही क्लैरिटी से हमें ये, बिल्कुल बिल्कुल स्वाद आ गया सच में। और श्रोताओं जैसे आपने सुना बहुत ही क्लैरिटी से हमें ये रेसिपी मिली है, आई होप आपने नोट डाउन की हो, तो आप इसे जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा। मैम इसी मोड़ पे, इसी यू नो चटपटे अचार के स्वाद में हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे। अगर एक और गीत की फरमाइश मैं आपसे करना चाहूँ तो वो कौन सा होगा?
1: एक मूवी है बहुत बहुत ही खूबसूरत मूवी जिसपे, जो एक्चुअली बुक से बनी है, आर के नारायण जी की बुक है गाइड
0: जी,
1: और उसी के ऊपर देवानंद जी ने एक मूवी बनाई थी गाइड के नाम से। एस डी बर्मन का इसमें संगीत है और ये गाना उन्हीं का गाया हुआ है
0: जी,
1: वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ।
0: ब्यूटिफुल, अनदर फिलोसॉफिकल सॉन्ग। यस
1: जी, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ।
0: खूबसूरत खूबसूरत। चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही सुंदर गीत जो पूरी जीवन का एक सार है, एक फलसफा है, और ये खैर फिल्म भी जैसे कि मैम ने बताया बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, फ्रॉम द फिल्म गाइड।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक पायल मैम
1: जी।
0: एक और बहुत ही खूबसूरत गीत सुना हमने, आगे चलते हैं। मैम आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स यू नो लाइफ में पढ़ाव आपने पार किए हैं, अचीवमेंट्स आपने रहे हैं आपके, जैसे न्यूजीलैंड में आपने प्रोफेशनल कुकरी की पढ़ाई की, इटली में आपने हैंड्स ऑन कल्नरी ट्रेनिंग की, कैलिफोर्निया वॉलनट्स के प्रमोशनल इवेंट्स में काम किया, सेलिब्रिटी शेफ वरुण इमामदार के साथ आपने कोलैबोरेट किया और विवाना कल्चर होटल के लिए एक स्पेशल शेखावटी मेन्यू क्यूरेट किया। तो इतनी सारी जब उपलब्धियां रही हैं आपकी इंटरनेशनल एंड नेशनल, तो उन सबके बीच में आपके दिल के लिए, आपके दिल के सबसे करीब, जिसको आप सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यू नो एक प्राइज्ड आपका पोजेशन है, वो मेमोरी या वो अचीवमेंट कौन सा है आपके जीवन का?
1: तनिषा जी, मैं आपका क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत है, बट मैं आपको मतलब मैं कहना चाहूंगी कि मेरे लिए कभी भी अचीवमेंट्स, उपलब्धियां बहुत ही मायने नहीं रखे। वो सब चीजें मतलब इन्होंने ऑब्वियसली ये आपके बहुत ये मतलब ये पड़ाव होते हैं जिंदगी के, और मैं इसको ऐसा मानती हूँ कि ये बहुत ही यू नो बहुत मैं एक वर्ड जैसे जो कहते हैं अपन मंडेन है, बहुत ही यू नो कॉन्सेप्ट है ये अचीवमेंट्स। मेरे लिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है दुनिया में किसी को भी अपने अचीवमेंट्स पे खुशी होनी चाहिए, बट वो बहुत दिन तक उस चीज का कोई फायदा नहीं होता, उस चीज का कोई आपकी लाइफ में कोई उस चीज का असर नहीं होता, क्योंकि सिर्फ उसका अनुभव जो है जो आप अचीव कर रहे हैं उस समय जो आपको अनुभव होता है, जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं तो आपका डेस्टिनेशन एक खत्म हुआ है और उसका एक अनुभव होता है, वो कुछ क्षणों का होता है और उसके बाद में वो गुल हो जाता है,
0: बिल्कुल बबल फ्लेम जैसा
1: बबल होता है। तो वो अचीवमेंट कोई मिलना किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस, कोई भी यू नो ऐसी कोई चीज उपलब्धि हासिल करना वो एक क्षण होता है और वो क्षण गुजर जाता है।
0: करेक्ट।
1: लेकिन मैं उसको मानती हूँ कि जिंदगी के जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और ये कहीं आप पहुंचते हैं तो कभी आपको बहुत सुंदर वैली मिलती है, कभी कोई बहुत बड़ा कोई चीज कोई मोड़ पे आपको सुंदर झरना मिल गया, तो ये मेरे लिए लाइफ में वैसी चीज है जिनको मैंने देखा, उनसे उस समय अनुभव लिया, अपने आप को गेन किया और मैं आगे बढ़ गई।
0: सो
1: इस तरीके से मैं मतलब इसी तरीके से देखती हूँ, बट इसके यू नो उसके साथ साथ मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपके साथ में रह जाते हैं ना, वो आपको इनसे मिले हुए दोस्ती, इनसे मिला हुआ प्यार, इनसे मिली हुई इज्जत, तो आपकी उपलब्धियों से जो भी ये चीजें आपको अगर मिलती हैं तो वो आपके साथ जरूर एज अचीवमेंट चल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि इटली से मतलब जब मैंने वहां पे अपना एक्सपीरियंस लिया रह के वहां के लोगों के साथ में, तो उनसे मैंने खाने से रोमांस करना सीखा है, तो वो मेरी उससे मैंने खाने से प्यार करना सीखा। मेरा प्रोफेशनल डिप्लोमा, मेरी जो पढ़ाई हुई उसने मुझे किचन में डिसिप्लिन सिखाया, जो इवेंट्स और बड़े लोगों के साथ, बड़े शेफ्स के साथ में या बड़ी कंपनीज या रेस्टोरेंट्स के साथ काम किया, तो वो मेरे लिए उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस दिया है किचन के लिए। सो एज अ प्रोफेशन उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस दिया है कि किस तरीके से क्या चीजें हैंडल की जाती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर मैं सच में कहूँ तो मेरा अचीवमेंट, अगर मैं कभी अपनी जिंदगी में आखिरी मोमेंट पे अपने आप को मानूंगी कि मैंने कुछ हासिल किया है, तो वो होगा दो मेरे बेटे, जो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उनको अच्छा इंसान और संवेदनशील व्यक्ति बना पाई और जो हमेशा खुश और एक संतुष्ट ह्यूमन बींग बने, तो वो अभी वो टीनेजर्स ही है, अभी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। सो अगर मैं कभी अपने आप को ये मान पाऊंगी कि मेरे अचीवमेंट्स अच्छे रहे, तो मैं सिर्फ वो दो इंसानों को बड़ा करके एक अच्छा इंसान बना पाई, उसमें एक अपना अचीवमेंट मानूंगी, और वो मेरे सबसे प्राइज्ड पोजेशन होंगे।
0: ब्यूटिफुली आंसर्ड, बहुत ही स्पिरिचुअली आंसर्ड। सच है कि ये सब चीजें ट्रांजिएंट होती हैं, इनके पीछे जो रह जाते हैं वो सच में लोग हैं जो हमें मिलते हैं सफर में, जो हमें निखारते हैं अपने सफर के लिए, और ऑफ कोर्स योर ब्यूटिफुल सन्स, अगर उनके नाम मैं जान पाऊं तो हमारी एसएन फैमिली उनको हेलो कहना चाहेगी।
1: मेरे बड़े बेटे का नाम है नभास.
0: वाओ
1: नभास. या नभास, नभास का मतलब होता है नभ और ओस,
0: आकाश और ओस,
1: आकाश में ओस. तो आकाश की मिस्ट, अगर इंग्लिश में सिंपली बोलना चाहे तो मिस्ट उसका मतलब होता है.
0: ब्यूटिफुल.
1: एंड द सेकेंड वन ही इज नेम्ड एज कुशाग्र.
0: वाओ.
1: सो इट इज बिकॉज ऑफ इंटेलेक्ट. सो कुशाग्र इज बेसिकली इंटेलेक्ट.
0: जी, बहुत ही खूबसूरत नाम है. तो नाभास और कुशाग्र, आपको पूरी SN रेडियो फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपकी मदर आज यहाँ पे हैं, हम सब उन्हें सुन पा रहे हैं और वो इतनी ब्यूटिफुल एक पर्सनैलिटी है. तो आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस टू हैव अ मदर लाइक हर एंड इन योर लाइफ, एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज आपके फ्यूचर के लिए. गॉड ब्लेस यू.
1: थैंक यू.
0: आगे चलते हैं मैम. आजकल सोशल मीडिया पर फूड की बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ्स वायरल होती हैं. बहुत सारी रेसिपीज का भरमार है, फ्लड है एक्चुअली बेसिकली. तो अब आपके हिसाब से अच्छे कंटेंट और अच्छे खाने में क्या फर्क है? आई एम श्योर बहुत फर्क है, तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमें. और क्या कभी हम प्रेजेंटेशन के चक्कर में, सिर्फ दिखावे के चक्कर में जो एक्चुअल इमोशंस हैं, जो एक्चुअल टेस्ट है वो खो देते हैं खाने का?
1: बिल्कुल. मैं आपका सवाल पीछे से चालू करूंगी.
0: जी.
1: कि आपने जो बात बोली कि हम प्रेजेंटेशन के चक्कर में खाने का स्वाद खो चुके हैं. तो अगर आप आज किसी सोशल इवेंट में जाते हैं तो एक ही चीज मायने रखती है, उसका प्रेजेंटेशन. उसकी उसका वो मुंह में कैसा स्वाद कर रहा है, ये बहुत बाद में आता है. द फर्स्ट थिंग इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड. ये तो बड़ी बात हो गई, मतलब प्रोफेशनल जगह है, आप उसकी बात पार्टी है, कोई बात कर रहे हैं उससे भी. बट अगर आप किसी के घर भी जाते हैं, द फर्स्ट थिंग उनको जिस चीज के डर रहता है वो है कि चीजें दिखने में कैसे प्रेजेंटेड है टेबल के ऊपर. जो पुराने जमाने में नहीं हुआ करता. पुराना जमाना नहीं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही मैं, 10-12-15 साल
0: की.
1: तो अपने अपने दोस्तों के घर या अपने रिश्तेदारों के घर अगर आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपकी यू नो आपसे एक्सपीरियंस करती थी वो थी खुशबू. आप घर में घुसे तो एंटर करती सबसे पहले खुशबू आती थी, क्योंकि वो खाना वही बना है और कुछ घंटों से वहां पे प्रिपरेशन चल रही है, पिसाई हो रही है, धुलाई हो रही है, तलाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है. तो वो घर की आबो हवा में फैल जाता है और बाहर तक पड़ोसियों को पता लग जाता है कि साहब आज तो कोई
0: ये बना है, आज आज ये बना है.
1: खास बात है, कोई खास बात है,
0: कोई आ रहा है, यस यस,
1: या कोई मेहमान आ रहा है, नहीं तो कोई ना कोई खुशखबरी है साहब. इसलिए जो मैं बड़ी कहानियां हमेशा ये सुनाया करती हूँ अपने गेस्ट को कि भाई अगर घर में पूरी बन रही है और हलवे बन रहे हैं तो इसका मतलब घर में खुशखबरी है.
0: खुशखबरी है,
1: है? तो ये हमारे यहाँ खाना एसोसिएट होता था फ्लेवर से, उसकी खुशबू से, उसकी महक से, उसके इमोशन से, राइट?
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: अब प्रेजेंटेशन जहां तक आती है वो प्रोफेशनली जरूरी

0: गए तो
1: सब
0: लोग बाग
1: कुछ।
0: भेड़ चाल में अगेन रैट रेस में फंस गए हैं कि हम कौन ब्यूटीफुल प्लेट ऑफ फूड बनाएगा। ना तो किसी को ये पता है कि वो प्लेट ऑफ फूड उसकी वेस्टेज क्या है, उसका स्वाद क्या है, क्या चीज है। सो कलर्स आर बिकमिंग इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द आईज।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: मेरे लिए कभी भी ये मायने नहीं रखते, मेरे लिए ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। तो मैं, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी अगर हम बात ज्यादा डीप जाएंगे तो, बट मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मेरे लिए तो यही आज भी किसी के घर से किचन से आती हुई खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। मैं उसके किचन के बाहर से मुझे हींग की भी खुशबू आ रही है ना, तो मेरे लिए वो उनके उनके घर के माहौल को समझने का एक जरिया होती है कि अरे वाह
1: क्या
0: आंटी जी ने
1: बात
0: आज
1: है
0: आज बढ़िया सा तड़का लगाया हुआ है, हींग का दाल में सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। सो आई लीव दिस क्वेश्चन टू दिस पॉइंट ओनली। इट्स एक्सपीरियंस, बेसिकली इट्स एक्सपीरियंस। यस
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कि कैसे ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस ज्यादा है, एक सेंसरी ट्रीट है विजुअल ट्रीट से ज्यादा।
0: जी
1: तो ये बात अगर हम समझ जाएं तो शायद हमारा खाना उतना स्वादिष्ट हो जैसा हुआ करता था। सिर्फ एक विजुअल ट्रीट ना रह के एक सच में सेंसरी ट्रीट हो जो आपके एक स्वाद को, आपके महक को एक एक टिंगल करे और आपको एक्साइट करे कि आज क्या बना है इस गली में, इस घर में। तो जैसे कहते हैं कि हर घर कुछ कहता है, तो उसी तरह उस घर का खाना भी कुछ कहता है और उसकी खुशबू भी कुछ कहती है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया। मैम, इसी मोड़ पे हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे, आपकी ही फरमाइश पे एक और गाना।
0: अच्छा, अब मैं आपको सुनाना चाहूंगी एक बड़ा ही अच्छा मुकेश जी का गाया हुआ गाना है, राज कपूर जी पे फिल्माया गया है। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बड़ा ही खूबसूरत एंड अगेन वेरी फिलोसॉफिकल, बट बहुत बहुत प्यारा गाना है।
1: बहुत प्यारा गाना है सच में। और आप मुकेश के फैन हैं,
0: जी
1: तीनों ही गाने हमने मुकेश के सुने और बहुत खूबसूरत गाने आपने चुने हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए सुनते हैं एक दिन मिट जाएगा माटी के बोल फ्रॉम द फिल्म धर्म करम।
0: जरूर।
2: एक दिन

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक पायल मैम।
1: थैंक यू
0: मैम। आगे चलें तो आपने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में कुकिंग सिखाई है, एक मेंटोर के रूप में, एक ट्रेनर के रूप में
1: जी।
0: तो आपको एक ऐसा लाइफ लेसन अगर चुनना हो जो रसोई ने आपको सिखाया है और जो आप सोचते हैं कि हर इंसान में पास ऑन होना चाहिए, वो एक ट्रेट, वो एक क्वालिटी, तो वो क्या होगा?
1: क्वेश्चन बड़ा जोरदार है।
0: सब में फिलॉसफी ऐड करने की कोशिश की है हमने।
1: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मैं मेरा पर्सपेक्टिव फिलॉसफी बन गया है।
0: जी जी,
1: मैं कहूंगी कि देखिए खाना जैसे पहले वाले जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो खाने का जो भोजन की इम्पोर्टेंस है वो उसके इमोशंस, उसके सेलिब्रेशन, उसके उन चीजों से आती है। तरीके से ही उसी लय में मैं आगे बात करना चाहूंगी कि इट्स यू नो इट्स नॉट अबाउट द राइट इंग्रेडिएंट्स, इट्स नॉट अबाउट। सो किचन में मैं अपने क्लाइंट्स को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाना चाहती हूँ कि हर वक्त, या मैं जो सीखी हूँ किचन से, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि मैंने क्या सीखा अपनी कुकिंग से, कि हर समय परफेक्ट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, परफेक्ट लिस्ट ऑफ टाइम, परफेक्ट रेसिपी, सिर्फ यही मायने नहीं रखती। किचन कुकिंग आपको जो सिखाती है वो खराब चीज को अच्छा बनाना सिखाती है। सो कई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे अपन परफेक्ट पिक्चर की बात कर रहे थे, तो हमेशा जो पिक्चर में होता है वो परफेक्ट नहीं हो सकता।
0: करेक्ट।
1: खाने में खाना आप रोज सेम रेसिपी से बना लीजिए तो भी वो ऐसा हो सकता है कि बेस्ट ऑफ द यू नो इंग्रेडिएंट लेने के बावजूद भी, फैसिलिटी होने के बावजूद भी, एकदम मॉडर्न किचन होने के बावजूद भी आप घटिया खाना बनाए एकदम, जो खाने लायक ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: सो इट इज पॉसिबल, राइट?
0: बिल्कुल।
1: सो इट्स अबाउट द प्रोसेस, इट्स अबाउट द प्रोसेस, हाउ एवरीथिंग कम्स टूगेदर। सब चीजें कैसे आप उनको एक सार करके एक चीज में, एक भोजन के रूप में उसको पेश
0: कर सकते हैं,
1: कर सकते हैं। तो आप मतलब खाना बनाना इज नॉट रेसिपीज, इसलिए महिलाओं का काम जो है वो क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि वो बिना वो सबके लिए सोचते हुए, अपने फ्रिज को देखते हुए, अपनी ग्रोसरीज की लिस्ट को देखते हुए, आज की जो भी है मेरे पास में उसको देखते हुए, रोज सबकी पसंद का और उनके न्यूट्रिशन का खाना बना पाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये उनकी उपलब्धि है सबसे बड़ी, ये उनका एप्टीट्यूड है बहुत ही बड़ा, नॉट उपलब्धि, देयर एप्टीट्यूड, देयर क्वालिटी।
0: सच है।
1: तो मुझे किचन ने यही सिखाया है कि कैसे जब चीजें बिगड़ रही होती हैं, ऐसा लाइफ को भी आप मान सकते हैं, तो लाइफ में कई रोज आपके इंग्रेडिएंट्स अच्छे चल रहे होते हैं, फिर बुरे हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ कुछ ना कुछ होती रहती है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्योंकि दिन जिंदगी एक दिन सुबह चालू होती है और रात को खत्म हो जाती है, एंड ऑफ द डे आपका जो खाना निकल के आया, जो आपका वापस जो आपका बाय प्रोडक्ट आया है दिन भर का, कितना स्वाद है। तो स्वाद बनाना इज नॉट अबाउट इंग्रेडिएंट्स, इट्स अबाउट हाउ यू मेक देम, हाउ यू प्रोसेस देम। सो आई विल सम अप टू दैट, आई थिंक सो आई विल, मैं उसी पे रहना चाहूंगी कि इट्स अबाउट हाउ, दिस इज व्हाट किचन हैज टॉट मी।
0: Beautiful.
1: Taking every worst thing into a good thing.
0: बिल्कुल बिल्कुल, अपने imperfection से perfection तक reach करने की journey, और even if everything is not perfect, आपके पास imperfect ingredients हैं, तो उससे भी जो क्या आप best बना सकते हैं वही आपकी कला है, वही आपकी cooking है, और वही cooking की कला है actually। और आपने बहुत ही important एक point you know यहाँ पे हमें बताया कि कैसे गृहिणियां जो हैं हमारे घरों की, जो वुमेन फोक हैं, जो किचन में रोज जाती हैं और रोज तीन टाइम का खाना बनाती हैं, और सच में ये एप्टीट्यूड ही है कि वो हर तीन बार उतना ही न्यूट्रिशियस और उतना ही अच्छा खाना बना के सर्व करती हैं जो घर में सब खा पाते हैं। आई नो एक्सेप्शंस होते हैं, कई बार बच्चों को नहीं पसंद आता, बट अल्टीमेटली तीन बार का खाना इंटू 365 डेज और उसी एप्टीट्यूड से चीजों को बनाना इज कमेंट commendable. I think we should clap for our women folk and we should give them that credit ki unke paas wo aptitude hai aur wo quality hai jo bahut it's very difficult to actually have, and it just comes naturally to every woman in Indian, yes, Indian household.
1: Yes.
0: So which is amazing and commendable. Aapne ye point out kiya, uske liye bahut bahut thank you. Aur aapke sare hi jawab, aapke sare anubhavon ka ek samavesh hai jo bahut khoobsurti se hame batate hain ki kis tarah ka aapka ek safar रहा है, ग्राउंडेड सफर रहा है. सिर्फ ऐसे नहीं कि आप यू नो इन इलीट जगहों पे जाके काम कर रहे हैं और इन लोगों से मिल रहे हैं तो आपकी जर्नी एक डेवलप हो रही है, बट बहुत ग्राउंडेड लेवल से आपने अपना जीवन को जिया है और कनेक्टेड रहे हैं कहीं ना कहीं, वो बहुत खूबसूरती से आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होता है. मैम, हम अब आगे चलते हैं और आज का हमारा जो आखिरी सवाल है उस तक पहुंचते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आई थिंक ये भी, कि अगर आपको अपनी जिंदगी को एक सिग्नेचर डिश के रूप में सर्व करना हो तो उस डिश का नाम क्या होगा और इसकी इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन सी यादें, कौन कौन से लोग और कौन कौन से सपने शामिल होंगे?
1: ओहो, बड़ा ही घुमा के आपने क्वेश्चन बनाया है, बड़ा ही सवाल आपका और बड़ा मजेदार भी है और सोचने पे मजबूर कर रहा है मुझे बहुत ज्यादा.
0: जी जी,
1: तो क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा. मैं बड़ी सिंपल फिलॉसफी और सिंपल फूड को पसंद करने वाली व्यक्ति हूँ. दाल रोटी खाने
0: वाली, दाल चावल, चलिए मान लीजिए दाल चावल. जी जी जी जी,
1: लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा
0: जायकेदार बनाते हैं.
1: या जायकेदार बनाते हैं फिलोसफी का तड़का लगा के. तो बात ऐसा है कि यू नो मेरे हिसाब से जिंदगी का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो होता है वो प्यार, प्रेम, इश्क, जुनून, जज्बा. ठीक है, ये मेरा जहन से ये निकली हुई बात है. और अगर आप कहें कि वो कौन से यू नो कौन से लोग या कौन से रिश्ते या कैसी चीजें आपको यू नो कौन सी चीजें आपको वो बनाती हैं इंग्रेडिएंट, मतलब ये बेस्ट डिश बनाएंगी, तो आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त और आपका पार्टनर. सो वो तीन जने जो होते हैं वो लाइफ का सबसे बेस्ट और वर्स्ट, इट कैन बी एनीथिंग. सो दे आर इंग्रेडिएंट, सो दे कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ यू और द वर्स्ट आउट ऑफ यू. सो दे मतलब उनकी वजह से लाइफ में जो सिग्नेचर डिश आपके लाइफ की बनेगी वो किन तीन हिस्सों की वजह से बनती है.
0: बिल्कुल.
1: सो दैट्स हाउ फील. सो आई थिंक सो. चलिए दाल रोटी तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या नाम दिया जाए, बढ़िया सा कुछ नाम दिया जाए. ऐसा करते हैं, बड़ा रोमांटिक सा नाम दे देते हैं उसको, बोलते हैं धूप छाओ.
0: वाओ, ब्यूटीफुल.
1: सो इसको अगर हम विजुअलाइज करें एज अ एक्चुअल डिश आल्सो, सो इट इज पॉसिबल टू मेक. आई थिंक सो इफ यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग एज अ डिश, हम बना पाएंगे सुंदर सा एक अच्छा सा खाना, एक अच्छी सी डिश. तो मैं नाम दूंगी अपनी जिंदगी की सिग्नेचर डिश का, धूप छाओ.
0: ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. बहुत ही खूबसूरत मैम, और बहुत मजा आया आज आपसे बात करके. मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि ये इंटरव्यू काश खत्म नहीं हो, हम बातें करते जाएं और बहुत सारी और फिलॉसफी और खाने की बातें करते जाएं, लेकिन समय बलवान है. हमें रैप अप करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच आज ऐसे रेडियो के साथ जुड़ने के लिए, पायल बियानी मैम.
1: सो नाइस ऑफ यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एसएन रेडियो का बहुत ही धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे ये मौका दिया आपके साथ बातचीत का और आपके व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ में जुड़ने का. थैंक यू सो मच, धन्यवाद.
0: थैंक यू मैम. तो दोस्तों, पायल जी से आज बातचीत में हमने सिर्फ रेसिपीज और कुकिंग की बात नहीं करी, बल्कि उन कहानियों, उन रिश्तों और उन जज्बातों को भी महसूस किया जो हर किचन और हर प्लेट के पीछे छुपे होते हैं. आपने हमें याद दिलाया कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि यादें बनाता है, लोगों को जोड़ता है और संस्कृतियों के बीच एक सुंदर सा पुल का काम करता है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपने अनुभव और अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत रंगों को हमारे साथ साझा किया. दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड. मिलेंगे फिर एक नए मेहमान और एक नई कहानी के साथ, क्योंकि हर जिंदगी में एक गीत तो जरूर छुपा होता है, बस उसे महसूस करने की देर है. नमस्कार.

हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर घर

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। आइए दोस्तों, मिलवाते हैं पश्ताना दुर्रानी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीते हुए कुछ दिनों पहले कातार की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के भविष्य पर एक सम्मेलन हुआ था। इस जलसे को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने काबुल के निजाम से जब ये कहा कि अपने देश में लड़कियों की तालीम और महिलाओं की नौकरी करने पर उसने जो अपमानजनक पाबंदी लगा रखी है उसे वो फौरन वापस ले और स्कूल की कक्षाओं से लेकर उन तमाम ओहदों पर औरतों की भागीदारी सुनिश्चित करें जहां से निर्णायक फैसले होते हैं, तो पश्ताना दुर्रानी की मुहिम की याद हो आई। अपनी जान पर खेलकर वो अफगान लड़कियों तक ज्ञान की रोशनी बिखेर रही हैं। अफगानिस्तान के कांधार इलाके के जलमई दुर्रानी एक तरक्की पसंद कबायली नेता थे जो लड़कियों की तालीम की बढ़ चढ़कर हिमायत करते थे। जाहिर है, कट्टर पंथियों को उनकी ये बात ठीक नहीं लगती थी। उन्हें कई बार खामोश रहने को कहा गया, लेकिन जलमई दुर्रानी लगातार मुखर रहे, बोलते रहे। ऐसे में जब मुल्क गृह युद्ध में चल रहा हो और लंबा खींचा ही जा रहा हो और कांधार इलाके पर तालिबान का पूरा नियंत्रण हो गया हो, तो दुर्रानी परिवार के सदस्यों के पास देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। वो भागकर पाकिस्तान जा पहुंचे, जहां क्वेटा में उन सबको शरण मिली।

27 साल पहले क्वेटा के ही एक शरणार्थी शिविर में पश्ताना का जन्म हुआ। उनके पिता अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह की जगहों में इन खानाबदोश जिंदगियों को अब इज्जत का मुकाम सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मिल सकता है। लिहाजा उन्होंने अपनी नई नस्लों की शिक्षा को लेकर वो पहले से कहीं ज्यादा संजीदा हो उठे। उन्होंने अपने अस्थाई घर को स्कूल में बदल दिया और अपनी पत्नी और परिवार की दूसरी पढ़ी लिखी औरतों को उन शिविरों की बच्चियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब इसी तरह के माहौल में पश्ताना पली बढ़ी। होश संभाला तो उन्होंने देखा कि उनकी मां और चाची किस तरह हमसाया घरों के लोगों को कायल किया करती कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेज दें। पश्ताना ने पाकिस्तान में ही हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी दिली तमन्ना थी कि आगे की तालीम वो अपने मुल्क की ही किसी यूनिवर्सिटी से करें। तब तक अफगानिस्तान में निजाम भी बदल चुके थे और चारों तरफ इस बदलाव की चर्चा भी थी। कई औरतें न सिर्फ सरकारी मुलाजमत और सियासत में लौट आई थीं, बल्कि अपना कारोबार भी चलाने लगी थीं। साल 2013 की बात है, दुर्रानी परिवार ने वतन वापसी का फैसला लिया। पश्ताना तब सिर्फ 16 साल की थी। अपने पुरखों की माटी को चूमने की खुशी ही अनूठी होती है। पूरा दुर्रानी खानदान बहुत खुश था, लेकिन कंधार लौटने की पहली ही रात जिस सच से पश्ताना का सामना हुआ, उसने उनकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। खानदान की लड़कियां जब मिली तो उन पर यह हकीकत खुली कि उनके पूरे जिले में जहां 400 से भी ज्यादा परिवार रहते हैं, एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास भी हुआ कि लड़कियों की पढ़ाई तो सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। एक दिन खानदान की ही एक छोटी बहन आई और हसरत भरी निगाहों से पश्ताना को देखते हुए कहने लगी, बाजी मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूं। पश्ताना शिक्षित थी, उनके पास अपना लैपटॉप था। वो कॉन्फ्रेंस के लिए काबुल जाया करती और सबसे बढ़कर उन्हें पिता का पूरा साथ हासिल था। एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जब पश्ताना काबुल जा रही थी, तब उसी बहन ने हुकूमत के नाम एक खत दिया जिसमें ये करुण गुजारिश थी कि उनके जिले में एक लड़कियों का स्कूल खोला जाए ताकि वो भी पढ़ सके। सरकार की तरफ से ना कोई जवाब आना था ना आया, लेकिन पश्ताना उस हसरत के आगे पसीज उठी। आखिरकार उन्होंने उस बच्ची के पाठ्यक्रम की सामग्री और सहायक वीडियोस इंटरनेट से डाउनलोड किए और उसे पढ़ाना शुरू किया। बच्ची इस लगन से पढ़ती रही कि जल्द ही वो मोड़ आया जब उसे कंधार शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। इस घटना ने पश्ताना को प्रेरित किया कि उन सभी तमाम लड़कियों को वो डिजिटली पढ़ा सकती हैं जिनकी पहुंच में कोई स्कूल नहीं। इसी नेक इरादे से उन्होंने साल 2018 में लर्न अफगानिस्तान के नाम से एक निशुल्क ऑनलाइन स्कूल खोल दिया, अफगानिस्तान का पहला डिजिटल स्कूल नेटवर्क। इसके जरिए वो अब तक कंधार के 7,000 से ज्यादा लड़के लड़कियों को शिक्षित कर चुकी हैं और 80 शिक्षकों को भी डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। मगर पश्ताना का यह काम कभी निराबद नहीं रहा, क्योंकि कंधार से तालिबान कभी खत्म ही नहीं हुए थे। और फिर जब वो 21 साल की थीं, उनके पिता का इंतकाल हो गया, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गईं। साल 2021 में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया और तब स्थानीय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बताया कि उनका कत्ल किया जा सकता है। पश्ताना ने अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला ले लिया और वो चली गई। इन दिनों वो वहीं से अपने मिशन में जुटी हैं। साल 2021 में बीबीसी की तरह प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स ने भी उन्हें 100 प्रभावशाली लोगों में गिना है। औरतों को अपने हक हुकूक के लिए हमेशा ही भारी संघर्ष करना पड़ता है। आज से 250 साल पहले
भारत में सावित्री भाई फूले के साथ भी तो क्या क्या हुआ, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। मगर उन्होंने उस वक्त हमारे देश में स्त्री शिक्षा की जो ज्योत जलाई, उसे आज तक पूरा हिंदुस्तान रोशन है। उम्मीद है अफगानिस्तान की आने वाली नस्लें भी पश्ताना दुर्रानी को उसी अदब से याद करेंगी।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: कौवे ने मटके से पूछा, देखो अगर तुम आग में तपा कर बनाए जाते हो

एक बार एक राजा ने इतना ज्यादा सुरक्षित महल बनवाया कि उसमें किसी भी दुश्मन के घुस सकने की कोई आशंका ही ना रहे। उस राजा ने पूरी दुनिया को जीतना चाहा था, तो जाहिर सी बात है उसके बड़े सारे दुश्मन भी थे। अब क्योंकि पूरी दुनिया में दुश्मन हो गए थे तो स्वाभाविक है भय डर भी बढ़ गया था। डर बढ़ा तो सुरक्षा की जरूरत पड़ गई, इसलिए उसने ये मजबूत जबरदस्त अभेद्य महल बनवाया। इस महल में एक ही दरवाजा था, खिड़कियां भी नहीं थीं, कहीं कोई हवा भी न घुस जाए, कहीं कोई जगह न रह जाए जिससे कोई भी दुश्मन कभी भीतर आने की सोच भी सके। इस बड़े सारे महल में एक ही दरवाजा था और इस दरवाजे पर हजारों नंगी तलवारों का पहरा भी लगा दिया गया। अब पड़ोस के राजा उस बहुत ही सुरक्षित महल को देखने आए, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह, बहुत आनंदित हुआ, मैं भी ऐसा ही महल बहुत जल्द बनवाता हूं। यह बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें तो कोई खतरा लगता ही नहीं। जब पड़ोस का राजा विदा ले रहा था तो मेजबान राजा से उसने कहा, आपने सचमुच बड़ा कमाल का काम किया है, कोई राजा कभी इतना सुरक्षित महल कभी नहीं बनवा पाएगा। तभी सड़क

किनारे एक बूढ़ा फकीर जोर जोर से हंसने लग गया। राजा ने पूछा, अबे पागल तू हंस क्यों रहा है बे? फकीर ने कहा, हुजूर एक भूल रह गई इस महल में, और तो सब ठीक है मगर एक ही दरवाजा है, यही गलती हो गई। भाई इससे भी तो दुश्मन भीतर जा सकता है ना, इसलिए आप भीतर जाएं और इस दरवाजे को भी बंद करा दें, चिनवा दें, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो पाएंगे, फिर कभी कोई दुश्मन घुस ही नहीं सकेगा कहीं से भी। राजा ने कहा, अबे पागल अगर मैं इस दरवाजे को भी चिनवा दूं और भीतर हो जाऊं तो ये महल नहीं मेरी कब्र बन जाएगा। फकीर ने कहा, कब्र तो ये बन ही गया है, सिर्फ एक दरवाजा ही तो बचा है। एक दरवाजा है दुश्मन नहीं तो कम से कम मौत तो इस एक दरवाजे से भीतर आ ही जाएगी। आप ऐसा करें कि भीतर हो जाएं, फिर मौत भी नहीं आ पाएगी। सम्राट ने कहा, जाने का सवाल ही नहीं, मौत के आने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। फिर फकीर ने कहा, तो फिर ठीक से समझ लीजिए, जितने ज्यादा दरवाजे थे इस महल में उतना ही जीवन था आपके पास, जितने दरवाजे कम हुए उतना जीवन कम हो गया। अब एक दरवाजा बचा है तो थोड़ा सा ही जीवन बचा हो गया, इसको भी बंद कर दीजिए, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा कि एक भूल रह गई है इसमें, और वो जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों जितनी हम सुरक्षा ढूंढते हैं उतनी ही असुरक्षा का अनुभव करते हैं। असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी का जो अनुभव है वो सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी की खोज से ही पैदा होता है। ये एक दुष्ट चक्र है। असुरक्षा से बचने की जो आकांक्षा है वही असुरक्षा पैदा कर देती है। इसलिए असुरक्षा से राजी हो जाओ, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, मान लो कि आप असुरक्षित हैं। अचानक ही पाओगे कि असुरक्षा गायब हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर जाएं और मुसीबत को बुलावा दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है, सावधान रहें लेकिन हर समय डरे रहने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ख्याल रखिएगा।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है।

0: इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। गोल चबूतरा, आज जिस्म है कल याद हो जाएंगे, मैं तो कब का आगे बढ़ गया हूं, वक्त से कहो मेरे साथ चले, आज नहीं है मेरा, ये बात सच है, लेकिन जरा जरा सवो मेरे शेरों में रह गया है।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पड़ोस की औरतें आपस में बातें कर रही थी। बहन, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर हम चांद पर जाकर बस जाएंगे तो करवा चौथ कैसे मनाएंगे?

शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: हम सभी सफल होना चाहते हैं ना? यह बात और है कि हम सभी के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। क्यों? कोई बहुत अमीर होना चाहता है, कोई बहुत प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई बहुत पावरफुल होना चाहता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा लेखक बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन, कोई बहुत बड़ा दार्शनिक, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन। लेकिन हम सभी अपनी सफलताओं के पीछे भागते तो रहते हैं ना? ये जरूरी नहीं है कि क्या चाहते हैं हम, क्या सफलता पाना चाहते हैं हम। कई बार जिंदगी में सफलता की परिभाषा ढूंढते हुए, डेफिनेशन ढूंढते हुए बहुत सारा वक्त गुजर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। बड़े आश्चर्य की बात है, काफी अच्छी पकी हुई उम्र के लोगों से भी अगर हम पूछें कि सफलता के मायने क्या हैं आपकी नजरों में, तो शायद वो भी ठीक से बता ना पाए। बड़ी मजेदार बात है, हम इंसान इंडिविजुअली बहुत भयंकर झूठे होते हैं, बहुत अच्छा झूठ बोलना जानते हैं, खास करके अपने आप से। अब ये बात आपको कुछ अजीबोगरीब से लगेगी, हम अपने आप से झूठ बोलते हैं? जी हां, देखिए ना, कभी किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे तौर पर सच्चाई से देते हैं क्या हम? सोच के देखिए, दिल के अंदर झांकने वाली बात है ये, किसी को मत बताइए। आप किसी के लिए आंसरेबल नहीं है, आप खुद को और अपने ऊपर वाले को आंसरेबल है। चिंता ना करिए, कोई आपको जज नहीं करेगा। तो जरा कोशिश कीजिए, सफलता के मायने आपकी निगाह में क्या है, थोड़ा विचार करें। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, किसी को ना बताएं। एक बार किसी नौजवान ने सोक्रेटिस से पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? सोक्रेटिस उसका सवाल सुनकर मुस्कुराए और फिर उससे कहा, तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो, वहीं पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सफलता का रहस्य क्या है। अगले दिन नौजवान जब सोक्रेटिस से मिला तो उन्होंने उसे अपने साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा। आगे बढ़ते बढ़ते पानी जब नवयुवक के गले तक जा पहुंचा, तभी अचानक सोक्रेटिस ने उसका सर पकड़कर पानी में डुबो दिया। उन्होंने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह नीला नहीं पड़ गया। सोक्रेटिस ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही नौजवान ने सबसे पहले हांफते हांफते तेजी से सांस लेना शुरू किया। सोक्रेटिस ने उसी समय उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी, तुम क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, केवल सांस लेना। सोक्रेटिस ने स्नेह से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही गहराई से चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम सांस लेना चाहते थे, तो वह तुम्हें मिल जाएगी। यही कामयाबी पाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। ये तो बात हुई फॉर्मूला की, जिससे हमें सफलता मिलेगी। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, हमारी नजर में सफलता के मायने क्या हैं? हमारी नजर में सफलता की परिभाषा क्या है? हमारी नजर में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, किसी के साथ डिस्कस करने की भी कोई जरूरत नहीं। हमें अपने अंदर झांकना है और सच जरूर बोलना है अपने आप से, और हमें ईमानदारी से यह ढूंढना है कि हमारी परिभाषा क्या है सक्सेसफुल होने की। बहुत सारी अमीरी, अल्टीमेट फिटनेस, बहुत सारे अच्छे संबंध, बहुत सारी इंटेलिजेंशिया, शांति, पीस, क्या आप मेरे साथ हैं इस डेफिनेशन को ढूंढने के लिए? क्या है सफलता?

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रही और हमेशा हिट ही रही। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत,

चंडाल चौकरी चांद चुराने आए, चमचा चिलम चकोर चुरैया चूचू चू चल रहा है, भैया चूचू का मुरब्बा, भैया चूचू का मुरब्बा। टकला टकलू टाक टवोरी टकिया टपकी जा।

सा पेड़ा सांप सुने सरसाए सांप सुने सरसाए साए साए सुरमा सा सा संग समाए समय सबक समझाए खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या कम है। हुस्न की शोखियां जरा देखो, गाहे शोला है गाहे शबनम है। मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए, शम्मे महफिल में रोशनी कम है। बन गया है ये जिंदगी अब तो, बन गया है ये जिंदगी अब तो, तुझसे बढ़कर हमें तेरा गम है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय 90.8 FM की जरखेज लहरों पर। आप सुन रहे हैं रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर रुमानियत और जज्बात से लबरेज आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जब ढलती हुई रात अपने आंचल में तन्हाइयों को समेटती है तो रूह को किसी ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो सीधे दिल में उतर जाए। अमूमन हमने अपने अजीम फनकारों के फिल्मी नगमों को सुना है, मगर आज की महफिल कुछ जुदा है, कुछ खास है। आज हम उन अजीम आवाजों के उन पोशीदा शाहकारों को सुरों का जामा पहनाने जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर गजलियत के रंग में रंगे हैं। आज की इस नशिस्त यानी महफिल में गुजरे दौर के वो शहंशाह मौसीकी के बज़्म सजाएंगे जिन्होंने अपनी गैर फिल्मी गजलों, हिजर हिजर और वसल, दर्द और मोहब्बत के ऐसे नक्श छोड़े हैं जो कभी धुंधले नहीं होते। जब अल्फाज सीधे रूह से निकलते हैं तो वो शायरी नहीं, एक मुकम्मल एहसास बन जाता है। तो फिर देर किस बात की, अपने दिलों के दरीचे खोल दीजिए, खामोशी को जरा और गहरा होने दीजिए और डूब जाइए सुरों के इस सहर में। मुलाकात करते हैं आज की पहली मखमली गजल से। इस पुरसकून शाम का पहला नजराना पेशी खिदमत है उस अजीम फनकार की पैरवी में जिनकी आवाज का सोज सीधे रूह में सरायत कर जाता है। जी हाँ, मरहूम मुकेश साहब। यूं तो बंदिशों और फिल्मी दस्तूर में हमने उनकी गायकी के कई रंग मुलहजा किए हैं, मगर जब वो गैर फिल्मी महफिलों की जान बनते हैं तो उनका मिजाज एक अलहदा ही शक्ल अख्तियार कर लेता है। शायर शिव कुमार सरोज के इस बेहद नफीस और मुकद्दस कलाम को जब किशोर देसाई की मखमली धुनों का साथ मिला और उस पर मुकेश साहब ने अपनी बेसाख्ता सादगी बिखेरी तो हुस्न व इश्क की लाजवाब दास्तान मुकम्मल हुई। तसव्वुर की इंतहा तो देखिए, जहां महबूब के लबों की सुर्खी के आगे गुलाब भी अपना वकार खो देता है, वहां उनकी जुल्फों के साए में गहरी स्याह रात भी मात खा जाती है। अल्फाज की ये पाकीज़गी और सुरों का ये ठहराव आज के इस पुरकशिश माहौल को और भी हसीन बना देता है। तो आइए सुनते हैं और डूब जाते हैं मुकेश साहब की इस रूहानी गजल के दरिया में। मिसरा पेशे खिदमत है। तेरी अदा पे फिदा, तेरी अदा पे फिदा, हम तो क्या जमाना है, निसार तुझ पे मेरे दिल का ये खजाना है। तेरे शबाब से बढ़कर शबाब क्या होगा। फिर कहते हैं, तू मुस्कुराए तो जाती बहारें आ जाएं, दिले बीमार को फिर से करार आ जाए, तेरे करम का किसी से हिसाब क्या होगा। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तू ला जवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। आपकी नजर

सदियां गुजरी, फूल खिले थे जीवन की अंगनाई में। सदियां गुजरी, फूल खिले थे जीवन की अंगनाई में। आ जाती है यादें जिनकी, जाने क्यों तन्हाई में। अश्कों के खामोश लबों पर आज भी एक अफसाना है। फिर कहते हैं, रातों का सन्नाटा जैसे समझाता हो राज कोई। यूं लगता है कि आज कि जैसे देता हो आवाज कोई। ना जाने तकदीर में दिल की, ना जाने तकदीर में दिल की कब तक ठोकर खाना है। जिसने दिल को आंसू बख्शे, गम जिसका नजराना है, अब तक इसका दम भरता है, अब तक इसका दम भरता है, दिल भी क्या दीवाना है। इस मुकद्दस सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी अगली पेशकश गवाही दे रही है उस पाकीज़ा आवाज को, जिसमें छाई हुई खामोशी भी हजारों अफसाने बयां कर देती है। जी हाँ, रेशमी आवाज वाले मरहूम तलत महमूद साहब। तलत साहब की गायकी में जो एक रेशमी लर्जिश और नफासत है, वो सीधे रूह के तारों को छेड़ देती है। शायर जफर गोरखपुरी के इन पुरअसरार अल्फाज को जब मौसिकार सी के चौहान ने अपनी जहीन धुनों में ढाला, तो गम और तन्हाई का एक ऐसा हसीन साया वजूद में आया, जो दिल को अपनी आगोश में भर लेता है। तसव्वुर कीजिए, जब आधी रात के सन्नाटे में ऐसा महसूस होने लगे, कोई गुमशुदा सी आवाज हमें पुकार रही हो, तब दिल की बेबसी और तकदीर की ठोकरों का ये जिक्र और भी मुअस्सर हो जाता है। ये एक ऐसी दीवानगी है जहां दर्द ही दिल का सबसे अजीज सरमाया बन बैठता है। तो आइए, तन्हाइयों के इस पुरकशिश आलम में डूब जाते हैं और सुनते हैं तलत महमूद साहब की आवाज में ये बेहद सोज और गुदास से भरी नायाब गजल, जिसने दिल को जिसके बोल हैं, जिसने दिल को आंसू बख्शे, गम जिसका नजराना है, अब तक इसका दम भरता है, दिल भी क्या दीवाना है। आपकी नजर।

दोस्तों अल्फाज से एहसास तक के इस पाकीज़ा सफ़र में अब वक्त हो चला है उस अजीम फनकार के हुनर को सलाम करने का, जिनके सुरों की पुख्तगी और गायकी का मियार मुकद्दस तरीन माना जाता है। जी हाँ, सुरों के सरताज मरहूम मन्ना डे साहब। अमूमन मन्ना डे साहब की आवाज़ में हमने हर मिजाज के गीत सुने हैं, मगर जब वो खुद अपनी ही बनाई बंदिशों में ढलते हैं तो उनकी गायकी का एक अलहदा और नहायत संजीदा रूप सामने आता है। मशहूर नगमाकार मधुकर राजस्थानी के इन पुरसर और हसीन अल्फाज को जब मन्ना दा ने अपनी जहीन मौसिकी से संवारा तो बिछड़ते हुए हुस्न और टूटे हुए ख्वाबों की एक मुकम्मल तस्वीर उभर आई। जरा तसव्वुर कीजिए कि जब सुहाग और मोहब्बत की निशानी वो पाकीज़ा मोती नथली से जुदा होता है तो सिर्फ धागा नहीं टूटता बल्कि दिल का सारा धीरज और आंख की पूरी कायनात रो पड़ती है। सुरों की ये नफासत और इस अल्फाज की रवानगी आज के इस माहौल को दर्द से सरोबार कर रही है। तो आइए समातों को इस लाजवाब मौसीकी के हवाले करते हैं और सुनते हैं मन्ना डे साहब की इस बेहद नायाब पेशकश को। फरमाते हैं, रूप की अंगिया अंग में लागी, कैसे छुपाए लाज अभागी, लाज अभागी। मनवारे कहे आज, मनवारे कहे आज, भोर कभी ना होती रे। गजरारी अखियां रह गई रोती रे। नथली से टूटा मोती रे, नथली से टूटा मोती रे।

दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस रूहानी सफ़र में अब तक हम तन्हाई और हिजर के रंगों में डूबे हुए थे, मगर अब वक्त हो चला है उस अजीम फनकार की तरफ बढ़ने का जिनकी आवाज़ में ज़िंदगी का हर मिजाज रहता है, रमा रहता है। जी हाँ, हृदय दिल किशोर कुमार जी। यूँ तो ये शाहकार एक फिल्मी दस्तूर का हिस्सा है, मगर इसकी सादगी और इसका मफहूम यानी मतलब किसी मुकम्मल और पाकीज़ा गज़ल से कम नहीं। शायर योगेश साहब की इन पुरउम्मीद अल्फाज पर जब मौसिकार राजेश रोशन ने अपनी बेहद मखमली और पुरसकून धुन से नवाजा, तो छाए हुए अंधेरों के दरमियां एक नई सुबह को नई सुबह की उम्मीद जाग उठी। तसव्वुर कीजिए कि जब दिल मायूसियों की गहराइयों में डूबा है और अचानक एक सोज भरी आवाज धाड़स बंधाए कि ये तन्हाई और उदासी के दिन हमेशा नहीं रहने वाले, कहीं तो रोशनी की एक किरण मिलेगी, तब रूह को अलैदा ही तसल्ली बख्श सुकून मयसर होता है। किशोरदा के सुरों का ये संजीदा हैरान ठहराव आज की इस महफिल को एक नया उफुक यानी हाइट यानी क्षितिज दे रहा है। तो आइए मायूसियों को कहते हैं अलविदा और इस हसीन उम्मीद के साए में समायत फरमाते हैं किशोर कुमार साहब की आवाज़ में ये बेहद नायाब और रूहानी पेशकश। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो टलेंगे। फिर कहते हैं भले तेज कितना हवा का वो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े हैं सफर में तुझे फिर मिलेंगे।

तुम जो आए तो बहारों पे शबाब आया है, तुम जो आए तो बहारों पे शबाब आया है, इन नज़ारों पे भी हल्का सा नशा छाया है। अपनी आँखों का नशा और भी बढ़ जाने दो। दोस्तों, हमारी अगली पेशकश गवाही दे रही है सरजमीन मौसीकी की उस अजीम फनकार के आखिरी नजराने की, जिन्होंने बरसों तक हिंदुस्तानी संगीत की तकदीर को संवारा। जी हाँ, मौसीकी शहंशाह मरहूम नौशाद साहब। फिल्म ताजमहल का ये शाहकार नौशाद साहब के उस फन का आखिरी चिराग है जिसकी रोशनी कभी मध्यम नहीं हो सकती। अजीम शायर नक्श लायलपुरी साहब के इस बेहद हसीन, नाजुक और रोमानियत से लबरेज कलाम को जब नौशाद साहब के मुकद्दस धुनों का साथ मिला और उस पर हरिहरन साहब ने अपनी सोजो गुदास भरी मखमली आवाज का जादू बिखेरा, तो हुस्न और इश्क की एक मुकम्मल और अमर दास्तां वजूद में आ गई। तसव्वुर की इंतहा तो देखिए, जहां महबूब की जुल्फों के साए में और शाने पर बिखराने की जिद में जिंदगी का हर दर्द, यहां तक कि मौत का खौफ भी खूबसूरत हो जाता है। हरिहरन साहब के सुरों की ये नफासत और लफ्जों की ये पाकीज़गी आज की इस ढलती शाम को एक बेहद पुरकशिश और रूहानी एहसास से सरोबार कर रही है। तो आइए तसव्वुर के इस पाकीज़ा रंग में डूब जाते हैं और सुनते हैं हरिहरन साहब की आवाज में ये लाजवाब पेशकश। फरमा रहे हैं, सुर्ख होंठों पे गुलाबों का गुमा होता है, सुर्ख होंठों पे गुलाबों का गुमा होता है, कैसा मंजर हो जहां, ऐसा मंजर हो जहां होश कहां रहता है। ये हंसी होंठ मेरे होंठों से मिल जाने दो, अपनी जुल्फें मेरे शानों पे बिखर जाने दो, आज रोको ना मुझे हद से गुजर जाने दो, आपकी नजर।

तो दोस्तों, सुरों और अल्फाजों का ये पाकीज़ा कारवा जो आज हमारे अजीम फ़नकारों की गैर फिल्मी गज़लों के साए में शुरू हुआ था, अब अपने अंत तक पहुंच रहा है। वक्त की पाबंदी और घड़ियों की सुइयां अब हमसे विदा लेने का तकाजा कर रही हैं, मगर यकीन मानिए, ये सुर, ये शायरी और इन अजीम आवाज़ों का सोज हमारे दिलों के दरीचों में हमेशा रवा रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि

आज की इस शाम ने आपके दिलों को सुकून का एक नया एहसास बख्शा होगा। अब वक्त हो चला है आपसे रुख्सत लेने का। कल फिर इन्हीं रूहानी लहरों पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जज्बातों के कुछ नए अल्फाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की लहरों पर। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। आप इजाजत दीजिए, शब खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
5: नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। किसान साथियों, आशा करते हैं कि हमारा यह खेती बाड़ी कार्यक्रम कहीं न कहीं इस खेती बाड़ी कार्यक्रम से लाभ ले रहे होंगे। किसान साथियों, हम रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी में हो रहे बदलाव एवं खेती बाड़ी में जो नवीनतम कृषि है उसे हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात हम इसमें क्या क्या बदलाव ला सकते हैं आदि सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाने के का हमारा यह एक प्रयास है। तो किसान साथियों, हम आशा करते हैं हमारे यह कार्यक्रम आपको कहीं न कहीं बहुत ही लाभप्रद होंगे। साथ ही जो किसान भाई, हमारे किसान भाई हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है रेडियो स्टेशन चेतना हाई स्कूल परिसर, इंदौर रोड, गढ़वाड़ा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। आप हमें कॉल के माध्यम से भी आपके सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9425143603 पर। किसान साथियों, आज का हमारा जो खेती बाड़ी कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है वह यह है, APO से सशक्त होते किसान। जी हाँ किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे APO से सशक्त होते किसान। तो इसका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, इससे जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।

0: किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। ये संगठन खेती किसानी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एफपीओ से कई किसान जुड़े होते हैं और इससे उन्हें फसल का वाजिब भाव मिलना आसान हो जाता है। एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी उपज का मोल भाव करने का मौका मिल रहा है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है बल्कि कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक जैसे उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। एफपीओ ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को इकट्ठा कर किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। एफपीओ से खासकर छोटे किसानों को काफी फायदा हो रहा है और किसानों की आय बढ़ रही है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार 2021-22 में 2500 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। इससे करीब 60,000 किसानों को मदद मिलेगी। 2500 एफपीओ बनाने का काम केंद्र की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 5 साल के लिए हरेक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हरेक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। देश भर की सहकारी समितियां एफपीओ के गठन में सहयोग करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में निवेश को बढ़ाया जा सके। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हरेक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। एफपीओ गतिविधियों का प्रबंधन इस तरह किया जाता है जिससे सदस्यों को तकनीकी जानकारियां, वित्त व उपज के लिए अच्छा बाजार व बेहतर कीमत मिल सके।
1: तो जाना आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया किसान उत्पादक संगठन और जिसका उद्देश्य अगर हम देखें तो यही कि कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो सके, ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि जो किसान है उनका भी विकास हो पाए। और जब जब बात आर्थिक विकास की कही जाती है, करी जाती है, ये काफी महत्वपूर्न हो जाता है कि कैसे हमारे किसान जो है ना सिर्फ अकेले बल्कि एकत्र होकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में अगर हम देखते हैं किसान उत्पादक संगठन, ये सबसे आगे हमें नजर आते हैं। इस बारे में गौरव जी आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से एक उद्देश्य को लेकर सरकार जो है उन्होंने इसकी शुरुआत की।
2: मुकुल जी, जैसा हम लोगों का यहाँ पे बहुत छोटे लघु किसान हैं, 85% जो फार्मर हैं हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं
1: जी,
2: तो करीब करीब एक दशक पहले भारत सरकार ने ये एफपीओ मूवमेंट स्टार्ट किया था। आइडिया ये था कि इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल कि बहुत सारे फार्मर एक साथ में आए, एक साथ में आकर अपने उत्पाद का विक्रय करने का प्रयास करें
1: जी।
2: उनको हम लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से टेक्नोलॉजी की सुविधा है या इनपुट की सुविधा है, तो ये एक संगठन के माध्यम से इन छोटे किसानों तक पहुंचा जा सके। तो करीब करीब एक दशक से भारत सरकार की ये जो एफपीओ की मूवमेंट है, ये अब इसमें हम लोगों को काफी सक्सेस स्टोरी देखने को आई है, जिसमें हमारे साथ काफी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के हम लोगों ने कुछ आउटपुट साइड में जहां पे लोगों ने आज हमारे साथ नरेंद्र पवार जी आपने बताया जैसा जुड़े हैं, कुछ आउटपुट में काम कर रहे हैं, कुछ फार्म मैकेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, फिर जैसा आपने जिक्र किया कि जैविक खेती को लेकर कुछ उस मिशन के साथ में लेके एफपीओ काम कर रहे हैं
1: जी।
2: तो इस तरीके से आज की तारीख में काफी हम लोगों को इसमें सक्सेस देखने को मिली इस मूवमेंट के द्वारा, और उसी से उत्साहित होकर भारत सरकार ने एक सेकंड इसका फेज स्टार्ट किया जो 29 फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम लोग करीब 10,000 एफपीओ और बनाएंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा। तो इस प्रकार से ये एफपीओ का मूवमेंट अभी अपने प्रोग्रेस कर रहा है।
1: बिल्कुल, तो देखिए सफलता की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है। शशि भूषण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी गौरव जी हमें जानकारी दे रहे थे कि देखिए हर एक क्षेत्र में, क्योंकि कृषि में माना जाता है कि असीम संभावनाएं हैं, और उन्हीं संभावनाओं को ना सिर्फ हम मान सकते हैं कि जो हमारे युवा हैं वो भी अब एफपीओ से जुड़ रहे हैं, उनका एक रुझान नजर आता है, तो कहीं ना कहीं एक कौशल विकास के साथ साथ कोशिश यही कि जो कृषि क्षेत्र है उसको और बढ़ावा दिया जाए।
3: अभी बिहार, अभी जो जो कृषि उत्पादक संगठन का बात जो चल रही है मुख्य रूप से, या जो आपका एफपीओ के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, खास करके एफपीओ का जो संगठित सामूहिक खेती एक बहुत बड़ा गठन है, और खास करके इसका जो आत्मा योजना के तहत पूरे इंडिया में आपका एफआईजी एफएसजी का निर्माण किया गया
1: जी,
3: जो फार्मर्स किसान कृषक हितार्थ समूह और कृषक खाद्य सुरक्षा समूह, ये दो ऐसा समूह का निर्माण है जो पूर्व में चल रहा था, लेकिन अभी जो कृषक उत्पादक संगठन की बात जो चल रही है
1: जी,
3: खास करके यह कृषक उत्पादन संगठन के माध्यम से ही पूरे भारत का यह विकास किया जा सकता है, और कृषक उत्पादन संगठन कंपनी जो आपका जो इसमें जो खेती कर रहे हैं, खास करके किसान, छोटे छोटे किसान है, किसान के पास बहुत कम जमीन है, और मुख्य रूप से यदि सामूहिक रूप से हम खेती करते हैं
1: जी,
3: तो हमारा उत्पाद जो तैयार करते हैं, बहुत से जैसे टमाटर की खेती कर रहे हैं, सब्जी का खेती कर रहे हैं, वो छोटे छोटे स्तर पर कर रहे हैं, बहुत कम जमीन उनके पास है, 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1 बीघा की जमीन है, और उस क्षेत्र में यदि तैयार करते हैं एफपीओ, तो वो संगठित होकर वो ट्रक के माध्यम ट्रक से है जो मंडी में पहुंच सकता है, और आसानी पूर्वक वह उत्पाद को मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृषक उत्पादक संगठन तभी सक्सेस होगा जब वह किसान हमारे प्रशिक्षित होंगे, ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षण यदि ले लेते हैं, उनको प्रशिक्षण और एक्सपोजर कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि प्रशिक्षण लेकर और जगह जगह पर देखकर किसान को उत्साहित होंगे कि हमारे समूह वो खास करके कृषक उत्पादक संगठन में जो खेती कर रहे हैं वहां पर भ्रमण करने से अन्य किसानों को भी उससे जुड़ने का मौका मिलेगा, उस संगठन से, संगठन जो संगठित होकर खेती करेंगे, जिससे उनका उत्पाद एवं उत्पादकता मूल्य में वृद्धि होगा, वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, जिससे उत्पादन लागत कम होगा और उत्पादन,
1: यानी ये सारे फायदे जो हैं वो मिल सकेंगे हमारे किसानों को एफपीओ से जुड़कर। और जैसा अभी यहाँ शशि भूषण जी बता रहे थे कि देखिए जो एक किसान है वो जब तक खुद खेत पर नहीं जाएंगे, जब तक खुद जो एफपीओ बने हुए हैं उनसे नहीं बात करेंगे, जब तक वो विश्वास नहीं आ पाता, भले ही कितने ही विशेषज्ञ उनको जानकारी दें। और जैसा मैं आपको मुलाकात कराई थी शुरुआत में, हमारे साथ नरेंद्र जी जो है उनसे हम जानना चाहेंगे। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपका सफर हम जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई कि एक एफपीओ जो है, किसान उत्पादक संगठन जो है, इसका निर्माण करना है, फिर कैसे ये एफपीओ इतना मजबूत स्थिति में आया कि अब जो बाकी एफपीओ है उनके लिए एक सहारा बना हुआ है।
4: बेसिकली हमारा जो एफपीओ है डायरेक्ट मार्केटिंग में काम करता है, मतलब मार्केट लिंकेजेस में काम करता है। हमने ये देखा कि हम जो किसान के बच्चे हैं वो एजुकेशन लेने के बाद कोई जॉब वगैरह ढूंढते हैं या फिर कोई बिजनेस ढूंढते हैं, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ हम अगर एक्टिविटी करते हैं तो इसमें अच्छा काम भी बन जाएगा और हमारे फार्मर को भी सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि एफपीओ का काम होता है, एफपीओ का काम होता है कि ग्रुप तो पहले से ही बने हुए हैं, मतलब फार्मर एक पहले से ही संगठित रूप में काम करने वाला मतलब मनुष्य प्राणी है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने गांव में बैठ के एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है वो एक साथ ही करते हैं, तो जिसमें सब शेयरिंग करना एक दूसरे को सपोर्ट होने वाली चीज है। लेकिन जब उसका माल हार्वेस्ट होता है तो मार्केट तक जाने के जो प्रोसेस होती है, जो सप्लाई चेन होती है, उसमें किसान का भूमिका नहीं है अभी तक। तो हमने सोचा कि जो फार्मर्स के बच्चे है गाँव से आए हुए हैं वो जो अगर दूसरे यहाँ पे कुछ जाए जॉब वगैरह करें, इससे अच्छा कि जो हमारा फार्मर का प्रोड्यूस है वो बेचने की सप्लाई चेन हम इस्टेब्लिश करें, ताकि हमारे फार्मर्स को अच्छा बेनिफिट मिले और हमारे जो रूरल यंगस्टर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और उसी हिसाब से हमने जो वर्क है वो डिसाइड किया कि फार्मर्स प्रोडक्शन तक कब तक का काम करेगा, और हम जो उनके बच्चे है वो अपने सप्लाई चेन खड़ी करेंगे ग्रुप की, ताकि हम अपने फार्मर्स को अच्छा पैसा दे पाएंगे और कंज्यूमर को अच्छी सर्विस देकर जो कुछ अच्छा बेनिफिट मिल रहा है वो हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर हमारे गाँव के लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट करके दे। इसी वजह से हमारे यहाँ के लोगों को अच्छा पैसा भी मिला और हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा बनता गया। एफपीओ की वजह से इन सब काम हमें आसानी से। एफपीओ का मतलब क्या है कि एक तो हम सब काम करते हैं, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, एफपीओ हमें लीगली बॉन्ड करता है
1: जी,
4: कि एक्टिविटीज करने के लिए हमें लीगली सपोर्ट करता है, ये सब चीजें करते हैं, हमें जो कुछ एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। हर बिजनेस की तरह एग्रीकल्चर एक बिजनेस है जिसमें सारी डिपार्टमेंट है, जैसे स्टैटिस्टिक है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, सेल्स है, मार्केटिंग है, प्लानिंग है, फ्यूचर फोरकास्टिंग है, ये सब चीजें अकेला किसान नहीं कर सकता। तो आप इसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज है वो आप एफपीओ के थ्रू ले सकते हैं, उनको एक लीगल बॉन्ड में जुड़ा सकते हैं ताकि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए सब काम करें और सबके साथ जाके सबका बेनिफिट
1: जी। तो देखिए किस तरीके से सबका साथ सबका विकास हो सकता है, नरेंद्र जी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि जब तक किसान संगठित नहीं होगा तब तक शायद उतना फायदा कृषि क्षेत्र से हमें नहीं मिल सकेगा। गौरव जी अगर देखा जाए क्योंकि सरकार का प्रयास भी यही रहा है कि एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है 10,000 नए जो एफपीओ हैं उनके निर्माण का, इस दिशा में कितना हम आगे बढ़े हैं?
2: मुकुल जी जैसा मैंने बताया कि ये स्कीम के अनाउंस होने से पहले करीब 10,000 एफपीओ बन चुके थे
1: जी,
2: और जो नया स्कीम है जिसमें जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गवर्नमेंट का, इसमें इन्होंने 10,000 एफपीओ अनाउंस किए हैं जो कि अगले 2-3 साल में अभी करीब करीब 2,500 एफपीओ जो हैं जिसके लिए अलग अलग इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, एसएफएसी है, नेफेड है, नाबार्ड है, एनसीडीसी है, तो इन लोगों ने सीबीबीओज के साथ में मिलके करीब करीब 2,500 एफपीओ जो हैं वो इन द मेकिंग है, अभी अलग अलग चरणों में है, बन रहे हैं
1: जी,
2: और अगले 2-3 साल में करीब करीब 10,000 एफपीओ और बन जाएंगे। तो 3 साल के बाद अगर हम एक पूरा आंकड़ा देखें तो करीब करीब पूरा कंट्री के अंदर 20,000 के करीब एफपीओ हैं जो फंक्शनल होंगे
1: जी। लेकिन सीबीबीओ की भी अगर हम बात करते हैं तो एक अहम कड़ी के तौर पर ये काम कर रहा है लगातार, लेकिन एक किसान अगर किसी गांव की हम बात करते हैं या जो हमारे दर्शक शायद उनके जहन में भी ये बात आए कैसे वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकते हैं या उसके निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं?
2: इसमें बेसिकली सीबीबीओ जो है वो जमीनी स्तर पे काम करने वाली संस्थाएं होती हैं जो वहां पे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके साथ टच में होती हैं, और जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनके तरीके उनके माध्यम से करीब करीब वहां पे एक इनफॉर्मल ग्रुप की संरचना होती है जिसको एफआईजी बोलते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, जो शशि भूषण जी भी बता रहे थे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उसी तरीके से कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, पहले उनकी संरचना होती है, करीब ऐसा 20-25 ग्रुप ग्राउंड पे क्रिएट किए जाते हैं
1: जी,
2: और फिर इन ग्रुप्स को एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है जहां पे मदद की जाती है उनको अच्छे उत्पाद पाने के लिए, एग्रीकल्चर के इनपुट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको मार्केटिंग की सुविधाएं दी जाती हैं
1: जी,
2: और इसके बाद उनको एक फेडरेशन के तहत जिसको हम लोग 20-25 ग्रुप का आज की तारीख में जो एफपीओ है उसके अंदर हम लोग फेडरेट करते हैं, तो करीब करीब 300 से 500 किसानों का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का इस प्रकार से हम लोग संरचना करते हैं
1: जी। ये बिल्कुल देखिए किस तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं वो संगठित हो सकें, और खासतौर से शशि भूषण जी अगर देखा जाए जब हम एग्री बिजनेस की हम बात करते हैं जो किसान है सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं बल्कि उसको एक उद्यमी के रूप में या एक व्यापारी के रूप में देखें तो ये शायद एक जो बड़ा बदलाव है ये एफपीओ की वजह से अब हमें नजर आने लगा है।
3: एफपीओ के माध्यम से इसमें बहुत काफी बदलाव आ रही है, बहुत काफी इसमें बदलाव हुआ है कृषक उत्पादक संगठन से, और किसान का उत्पाद आज भी देखिए जो एफपीओ का ही देन है कि जर्दालू आम लंदन गया, जीआई टैग टैग जर्दालू आम पर मिला, जीआई टैग आपका सूची पर मिला, तो इस पर एक बाहर मतलब एक्सपोर्ट करने की अपार संभावना है, और इस क्षेत्र में बिहार का धरोहर बहुत काफी चीज है, चिनिया केला हो गया, लीची हो गया, मखाना हो गया, तो इस क्षेत्र में एफपीओ के माध्यम से ही पूरे वर्ल्ड में इसका हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे जिससे हमारे किसान को खास करके एफपीओ से जुड़े हुए हैं जो फार्मर्स किसान हैं उनका जो रेट जो वैल्यू एडिशन की बात है कि आमदनी कैसे बढ़े तो यहाँ पर उतना रेट नहीं मिल पाता। मखाना बिहार में हो रही है, शहद हो रही है बिहार में, बहुत काफी मात्रा में इसकी हो रही है, लेकिन एफपीओ के माध्यम से हम संगठित होकर यदि कार्य करते हैं तो हमारा उत्पाद राज्य और देश में तो होगा ही होगा, जो बिहार का जो सोच है कि हर भारतीय के थाली में एक व्यंजन बिहार का हो, तो इसके माध्यम से बिहार के स्तर से हमारे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में यह फेमस हो सकता है कि इस उत्पाद को हम आज जो यहाँ पर मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हम लोग स्टेट में 2500 फार्मर्स का सिलेक्शन किया गया और मास्टर ट्रेनर को तैयार किया जा रहा, और इसमें खास करके यहाँ पर जो इनकम नहीं हो रहा था लेकिन बी वेनम के माध्यम से बी वेनम निकालने का एक प्रोसेस बिहार में इसका स्टार्ट हो गया
5: जी।
3: इसको इंटरनेशनल मार्केट में 1,20,00,000 रुपये केजी तक इसकी मार्केट है। तो बी वेनम, परफोलिस, रॉयल जेली ये सब नहीं निकालते थे, लेकिन 50 वर्ष से पहले 1 से 1.5 लाख रुपया इनकम करते थे। लेकिन आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, आधुनिक तकनीकी से हम खेती करते हैं, मधुमक्खी पालक करते हैं, तो हमारा 8 से 10 लाख रुपये उत्पादन मिलता है, उत्पादन का कॉस्ट जो,
1: यानी आज के समय में जो हम स्मार्ट फार्मिंग की बात करते हैं, स्मार्ट फार्मर उससे जुड़े हुए हैं, और ये जो स्मार्टनेस है हम मान सकते हैं एफपीओ के जरिए देखिए अब आ रही है। नरेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे शुरुआत की गई, लेकिन जब हम विपणन की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, जो काम आपका एफपीओ अब बखूबी कर रहा है, तो ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि एफपीओ ने कहीं ना कहीं जो दूसरे किसान हैं उनको भी असीम विकल्प और संभावनाएं दिखाई वैश्विक बाजार की तरफ भी।
4: बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर कोई भी मार्केट अगर हम पकड़ते हैं तो मार्केट में ऐसा कोई नहीं कि एक ही जगह के एरिया के या फिर एक ही फार्मर की चीजों की जरूरत होती है, अलग अलग एरिया के फार्मर आते हैं। सब सिटीज जो है मेट्रो सिटीज बन गए, जैसे अगर मुंबई की बात करते हैं, मुंबई पुणे की, तो यहाँ पे दिल्ली से लोग है, चंडीगढ़ से लोग है, बिहार से लोग है, चेन्नई से लोग है, तो सब लोगों की सब रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक साथ अगर ज्यादा एफपीओ जाते हैं तो हम अलग अलग तरीके के वराइटीज के प्रोड्यूस, एग्री प्रोड्यूस उनके तक यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने नाफेड़ के साथ भी ये किसान मंडी किया, तो उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे चेरी में, चेरी नाफेड़ ने जो कश्मीर के एफपीओ है उनका चेरी नाफेड़ के साथ मिलकर हमने मुंबई में लाए। जैसे हमारे महाराष्ट्र के जो एफपीओ है जिसका हमारा खुद का जैसे वेजिटेबल का प्रोडक्शन है, कहाँ पे ऑरेंजेस का प्रोडक्शन है, कहाँ पे मैंगो का प्रोडक्शन है, ये जो चीजें मेट्रो सिटीज में लगती है वो हम उनके साथ टाइप करके उनको भी मार्केट लिंक दे देते हैं। इसे भी हमारे लगभग 168 ग्रुप्स और एफपीओ है जिसका हम सालाना 100 करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सीधा बेचते हैं
1: जी,
4: जिसकी प्राइम मिनिस्टर सर ने भी उनके मन की बात में प्रशंसा की है। लेकिन कोई भी मार्केट डेवलप करना है तो एफपीओ के थ्रू आप वहां तक जा सकते हैं, और एक ग्रुप के तरह, मतलब कोई भी चीज देखो, हम सीधी चीज है कि हम जितने बड़े हो जाते हैं, जितने लोग जुड़ते जाते हैं, तो उतना ही काम बड़ा हो जाता है। जितने बड़े हो जाते हैं तो स्केल की जो हमें बेनिफिट है वो अपने आप मिल जाते हैं। तो स्केल करने के लिए देखो मार्केट में हर चीज जा रही है, पहले भी जा रही थी एफपीओ के पहले, जैसे जैसे जैसे समाज बना 2000 साल से लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। हम अगर एक साथ होते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो काम करने वाले लोग हैं या हमारे जो सेम इंटरेस्ट वाले लोग हैं उनका बेनिफिट सिक्योर करना हमारे एफपीओ का जरूर काम है। तो जितने ज्यादा एफपीओ जुड़ जाते हैं तो उतने ज्यादा आपका प्रोडक्ट संगठन हो जाता है और उतना ज्यादा आपका शेयर मार्केट में बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल नरेंद्र जी, इतने ज्यादा जो एफपीओ आपने बताया जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ उसमें इतने संख्या में जो किसान है वो आपसे जुड़े हुए हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने भी उस बात को सराहा, वो किस तरह का अनुभव रहा आपके लिए?
4: बिल्कुल बढ़िया सर, जब अगर कोई चीज आप बनाते हैं, देखो हम फार्मर के बच्चे हैं, हम कोई चीज ऐसा तो नहीं कि 10 साल 20 साल प्रेडिक्ट करके बना सकते हैं। हम आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कुछ चीज बनाते हैं कि अभी हमारा माल आज जो हार्वेस्ट किया है वो बेचने के लिए हम कहाँ पे जाए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, इस वजह से हमें पता चलता है। यही चीज अगर गवर्नमेंट के लेवल पे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और ऐसी प्रशंसा करती है तो हमें और भी उसमें अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है, और हमारे जैसे जो लोग है बाकी उनको भी लगता है गवर्नमेंट इन छोटी छोटी चीजों को अगर प्रशंसा कर रही है तो गवर्नमेंट इन चीजों में ध्यान दे रही है, तो उसके जैसे और 1,000 लड़के तैयार हो जाते हैं और 1,000 एफपीओ बन जाते हैं कि जो चाहते हैं कि हम अपना मार्केट तैयार करें और हमारे किसानों को भी बेनिफिट दे दें।
1: बिल्कुल नरेंद्र जी, लेकिन ये आपका बड़प्पन है, आप अभी भी इसको छोटी बात कर रहे हैं, जबकि खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को सराहा भी है, और लगातार इसी वजह से भी हम मान सकते हैं कि कोशिश की जा रही है और ज्यादा मजबूती जो है वो किसान उत्पादक संगठन क्षेत्र में आ सके। और खासतौर से गौरव जी, अगर देखा जाए एक जिला एक उत्पाद जैसी भी योजनाएं हैं सरकार की, तो क्या इनका भी समावेश हम मान सकते हैं?
2: बेसिकली जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम है, इसका मेन लक्ष्य यही है इकोनॉमी ऑफ स्केल लाने के लिए। हर एक एरिया की अपनी एक विशेषता है कि जैसे स्ट्रॉबेरी है आपकी वो महाबलेश्वर से आती है, या आपका दशहरी है वो मलिहाबाद से है, उसी तरीके से आपका जो बासमती है वो उसके लिए तरावड़ी है या अमृतसर है, तो उस तरीके से उस एरिया की जो विशेषता है वहाँ पे मेजोरिटी फार्मर्स जो हैं आप हम पाते हैं कि वो उस क्रॉप के उत्पाद में संलिप्त होते हैं
1: जी।
2: तो ये जो स्कीम है इसका कन्वर्जेंस एफपीओ के साथ में इसीलिए किया जा रहा है कि उस एरिया की जो उस एरिया की एक विशेषता है उसका कमर्शियल स्केल पे फार्मर को रियलाइजेशन बढ़ा के दिया जा सके इस एफपीओ के संगठन के माध्यम से
1: जी।
2: तो उसी तरीके से से ओडीओपी स्कीम का गवर्नमेंट ने कन्वर्जेंस किया ये एफपीओ स्कीम के अंदर, तो ज्यादातर जो कोशिश है उस एरिया के अंदर प्राइमरी लेवल पे उस क्रॉप को जरूर उसमें इन्वॉल्व किया जाए जिस जो उस एरिया की विशेषता है,
1: यानी एफपीओ जो है इससे भी जुड़ सके।
2: यस,
1: तो देखिए किस तरीके से जब भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद जैसी जो योजनाएं हैं उनके जरिए भी कोशिश यही कि अगर वहां पे ज्यादा फायदा हो रहा है तो किसान अगर संगठित होंगे, अगर उनके वहां कोई किसान उत्पादक संगठन है तो वो इस योजना से जुड़कर और भी ज्यादा लाभ ले सकता है। और इसके लिए अलग अलग राज्यों से भी हमने देखा किस तरह का जो रुझान है वो होता नजर आया। शशिभूषण जी आप बता रहे थे कि किस तरीके से करीब अगर हम बात करते हैं बिहार राज्य की भी, तो यहां भी करीब 200-300 के करीब जो एफपीओ उनका निर्माण अभी हो चुका है, लेकिन इन एफपीओ में सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं किसी उत्पाद को लेकर आपको रुझान नजर आता है या जो कृषि के संबंधित सेवाएं हैं उनको लेकर रुझान नजर आता है?
3: अभी जिस कृषक उत्पादक संगठन का मुख्य रूप से यहाँ पर ऑर्गेनिक का है जो बढ़ावा ज्यादा दिया जा रहा है, जैविक खेती का
1: जी,
3: जैविक खेती पर, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन काफी मिल जाता है और इस चीज को यदि हम लोग एफपीओ के माध्यम से ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक शॉप ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का यदि हम प्रोडक्शन करते हैं इसका नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड है। ऑर्गेनिक का फोकस करने की आवश्यकता है, खास करके यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, उत्पादन तो कर ही रहे हैं, उत्पादन में कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की सिस्टम की ओर यदि जाते हैं तो हमारा उत्पादन लागत कमेगा और उत्पादन लागत कमने के साथ साथ हमारा वैल्यू एडिशन बढ़ जाता है और खास करके पर्यावरण को देखते हुए प्रदूषण को देखते हुए भी और ह्यूमन में जो आज जो कोविड जो चल रही है इसमें भी बहुत काफी उपयोग में लाया जा सकता है, खास करके इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो ऑर्गेनिक खाना है, जैविक खेती करना है, जैविक खेती करके हम उत्पाद को अच्छे ढंग से इसके उपयोग में ला सकते हैं और हमारे किसान हैं खुशहाल होंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि उत्पादन को लागत को कम करने में जैविक ही ऐसा है। इस पर किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत काफी महंगा नहीं है, जैविक को वह घर में ही तैयार कर सकते हैं, खास करके जैविक खेती करना करने के लिए जो प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल बर्मी कंपोस्ट जो है जो हमारा प्राकृतिक प्रवाह है वह दिन रात हमारे केचुआ

0: वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन आने वाले समय में इनको कैसे हम मान सकते हैं कि जो इनकी कड़ी है वो अब जुड़ पाएगी स्टार्टअप से, और उसके बाद जब आत्मनिर्भर कृषि की हम बात करते हैं वो भी एफपीओ के जरिए साकार हो सकेगा।
1: किसान उत्पादक संगठन, जी हाँ किसान साथियों, जो एफपीओ है इसके माध्यम से बहुत सारे किसान जो हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा किसान है वो अपना एक संगठन के माध्यम से अपनी जो आमदनी है उसे बढ़ा सकता है। चर्चा का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। एफपीओ से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण चर्चा बातों को हम जानेंगे और भी महत्वपूर्ण इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम 90.8 एफएम के साथ झाबुआ की आवाज पर।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार किसान उत्पादन संगठन के बारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: जो मूवमेंट है जिसके तहत ये छोटे किसानों को साथ में लाकर ये FPO की संरचना की जा रही है। दूसरा जो मूवमेंट है वहाँ पे स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। जो स्टार्टअप मूवमेंट है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, DST है, वो लोग स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा इंक्यूबेशन एजेंसी को सपोर्ट करते हैं
3: जी।
2: तो ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये लोग जो एग्रीकल्चर के पेन पॉइंट्स हैं, ये ऐसे सब इलीट इंस्टीट्यूट से आते हैं, IIM, IIT से, जो कोशिश कर रहे हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके तहत किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के पेन पॉइंट्स हैं, चाहे वो प्री हार्वेस्ट के हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के हैं, उसको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है
3: जी।
2: जैसे प्री हार्वेस्ट के अंदर कुछ स्टार्टअप्स हैं, IIT कानपुर ने अभी एक ऐसा सॉइल टेस्टिंग का मशीन का इजाद किया जिसमें कि रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है, जो उसको चलाने की कॉस्ट है, ऑलमोस्ट ना के जैसे है, और उसके अंदर विद इन मिनट्स वो सॉइल टेस्ट कर पाते हैं
3: जी।
2: तो इस तरीके की प्री हार्वेस्ट के टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने एग्रोनेक्स्ट एक स्टार्टअप के साथ टाई अप किया उसको ग्राउंड पे ले जाने के लिए। ऐसे कृषि तंत्र एक FPO है, सॉरी स्टार्टअप है, जिसने एक ऐसा ही ऑटोमेट किया सॉइल टेस्टिंग का प्रोसेस को। ऐसे एक इंटेलोलैब करके एक स्टार्टअप है जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांजेक्शन्स में व्यापारी के साथ में फार्मर्स को, वो क्वालिटी फ्रंट पे आती है। तो उन्होंने
3: गौरव जी एक दूसरे के पूरक होते हमें ये नजर आ रहे हैं अगर हम FPO और स्टार्टअप्स की बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए अगर आपको जरूरत पड़ रही है इनपुट्स की या कच्चे माल की अगर हम बात करते हैं, तो वो शायद हमारा FPO जो है वहां पर वो भली भांति वो कार्य कर रहा है।
2: हाँ जी, FPO एक साइड में है और जो टेक्नोलॉजी का समावेश है यहाँ पे वो स्टार्टअप मूवमेंट के द्वारा देखने में आ रहा है
3: जी।
2: तो ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से पूरक के जैसा कार्य कर रहे हैं
3: जी, बिल्कुल। और यहाँ शशिभूषण जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब क्योंकि अब जैसे ही जो FPO का निर्माण होता है उसके बाद समस्याएं उनके सामने रहती हैं, कुछ चुनौतियां भी सामने रहती हैं, और शायद काफी हद तक जो उनकी चुनौतियां हैं उनका समाधान अगर वो स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं या सरकार की तरफ से उन्हें मदद मिल रही है तो काफी हद तक वो समाधान हो जाता है। बिहार की अगर बात करें तो क्या वहां भी एक मजबूत कड़ी के तौर पर नजर आ रहे हैं हमारे जो FPO हैं और जो एग्री स्टार्टअप्स हैं?
4: बिहार स्टेट में भी स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं उनको हम लोग है जो प्रशिक्षण के माध्यम से, खास करके ट्रेंड होना अति आवश्यक है। यदि जब तक प्रशिक्षित नहीं होंगे तो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मुर्गी पालन करना है, बकरी पालन करना है, मधुमक्खी पालन करना है, तो स्टार्टअप करने के पहले उनको है जो प्रशिक्षित किया जाता है, और खास करके उनको यह वहाँ लोकल स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र है, आत्मा कार्यालय है, जिला कृषि कार्यालय है, तो वहां से संपर्क स्थापित करके हमारे प्रखंड स्तर पर भी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक वहां पर सहयोग करते हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी उनको एडॉप्ट कराते हैं, और बामिती स्तर से उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, खास करके ATM BDM और जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज में हमारे जुड़े हुए हैं, कृषि समन्वयक भी है जो ब्लॉक स्तर पर है, और उनको हम लोग प्रशिक्षित करके और प्रशिक्षण लेकर उनको किसान का जो जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई मुर्गी पालन करना चाहते हैं, कोई बकरी पालन करना चाहते हैं, तो उनको विशेष तौर पे प्रशिक्षित करके और उनका जो भी प्रॉब्लम होता है, जो चैलेंज है, उसको चैलेंज को दूर किया जाता है। खास करके यदि जब तक हम लोग उन किसानों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तब उनका जो लॉस होने की संभावना बनी हुई रहती है। और हर हमेशा खास करके कृषक उत्पादक संगठन हमारा FIG FAG का निर्माण किया हुआ है, उसके माध्यम से जो FPO से जुड़े हुए हैं उनको भी प्रशिक्षण देने के लिए भी व्यवस्था किया जाए, ताकि प्रशिक्षित होकर वह आसानी पूर्वक जैसे जिस क्षेत्र में लोग डिस्ट्रिक्ट इसमें क्षेत्र क्षेत्र पर ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिस क्रॉप को फसल ले रहे हैं उस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा दिया जाए,
3: यानी बेहतर कुशलता और दक्षता के साथ कोशिश यही की जाती है। अगर प्रशिक्षण आप लेते हैं तो और बेहतर आप उसमें हो सकेंगे और ज्यादा निपुण आप उसमें हो सकेंगे, जिसका फायदा आपको आने वाले समय में मिल सकेगा। नरेंद्र जी, हाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले आपके सामने भी जाहिर तौर पर चुनौतियां रही होंगी जब एफपीओ का निर्माण आपने किया था, किस तरीके से बाजार तक पहुंचना है, लेकिन अब किस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो बाजार है या व्यापारी हैं बड़े, वो शायद खुद आप तक पहुंचते होंगे आप?
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बेसिकली अगर ये देखे तो एक इकोसिस्टम होती है जहाँ पे सारे मतलब प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग की चीज है, जब तक एक गट्ठे में ऑर्गेनाइज नहीं होती तब तक इसमें से कोई भी आदमी ठीक से काम नहीं कर पाता है। हमारा क्या काम होता है कि ये सब ऑर्गेनाइज करना, मतलब अच्छा प्रोड्यूस कंज्यूमर को चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ती है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन के लिए पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करना, फार्मर्स की रिसोर्सेस अवेलेबल करके देना, अच्छे इनपुट्स अवेलेबल करके देना, ये सब चीजें करनी पड़ती है। जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो ट्रीटमेंट होती है या सप्लाई चेन होती है, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हुए होते हैं, तो वो लोगों को आपको एक साथ जोड़ना पड़ता है और एक इकोसिस्टम बनानी पड़ती है जो आपकी स्ट्रांगली अप्रोच हो, सीड से लेके प्लेट तक, मतलब अपने फार्म से लेके कंज्यूमर के घर तक जाने तक की जो सप्लाई वो खड़ी करने के लिए जो आपको लोग जरूरत होते हैं वो आपको एक इसमें जोड़ने पड़ते हैं
3: जी।
5: और जैसे जैसे काम बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, वैसे लोग आपको मिल भी जाते हैं और लोग आपके पास आ भी जाते हैं, लेकिन आपको इसमें स्ट्रांग ऐसा मैसेज देना होता है लोगों तक कि एक अच्छे मॉडल है जहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से फार्मर्स का, बाकी स्टेक होल्डर का, सबका इंटरेस्ट कैसे बरकरार रहे, ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी के साथ कैसे अपना वर्क करें ताकि सबको बेनिफिट हो, लॉसेस कम हो, कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन बने जिसमें कंज्यूमर भी बेनिफिट मिले
3: जी,
5: फार्मर को भी बेनिफिट।
3: नरेंद्र जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि क्योंकि इतने सारे एफपीओ जो है वो आपसे जुड़ते हैं और एक कारोबार जो है बड़े स्तर पर पहुंचता है, और उसमें जब बात आती है हिस्सेदारी की या खासतौर से मुनाफे की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो हर एक एफपीओ है वहां ये सुनिश्चित किया जाता है कि कितना मुनाफा आपको मिल सकता है? क्योंकि किसान के जहन में ये विश्वास दिलाना कि यहां आपको इतना मुनाफा मिल सकता है, ये कहीं ना कहीं मुश्किल रहता है, चुनौतीपूर्ण रहता है। तो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो किसान है उसका विश्वास नजर आता है एफपीओ को लेकर?
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बात कही कि हमेशा ये होता है कि जब कुछ मिलता नहीं हो तो
3: एफपीओ को लेकर।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बात कही कि हमेशा ही होता है कि जब कुछ मिलता नहीं हो तब तक सब लोग साथ होते हैं एफपीओ के, जब कुछ मिलना चालू हो गया तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है, बहुत सारे चीजें हो जाती है उसमें
3: जी।
5: हम जिस तरह से काम करते हैं तो हम बेसिकली वर्क बेसिस पे काम करते हैं, हम जब काम चालू करते हैं तब भी डिसाइड करते हैं कि किसका क्या वर्क है और उसको वर्क के हिसाब से कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। जैसे हमारे इसमें अगर देखते हैं तो हमारे दो टीम बनते हैं, एक एफपीओ की कोई भी, एक जो होती है कल्टीवेशन वाली प्रोडक्शन वाली, दूसरी टीम जो होती है वो सेल्स वाली। एक फार्मर है सबके खुद एक कम्युनिटी पर प्रोडक्शन कर रहा है तो हम ये डिसाइड कर देते हैं कि 40% अगर 20% सप्लाई चेन की कॉस्ट है और 20% सेल कटिंग, तो 40% सेल्स में जाएगा, 60% प्रोडक्शन में जाएगा। जो प्रोडक्शन करने वाला फार्म है उसने अगर 200 किलो भी कम्युनिटी प्रोडक्ट की है तो उसका सेल्स प्राइस देख के 60% उस फार्मर को सीधा जाता है, 40% सेल करने वाले को जाता है। इस हिसाब से अगर आप सब चीजें प्री डिफाइंड है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय, तभी आपके काम बहुत लॉन्ग टर्म चला जाता है कि आपके सब चीजें डिफरेंट डिफाइन है, आपका जो जो जैसे काम कर रहा है वो बेसिस पे अगर सबको मिल रहा है, क्योंकि जब ग्रुप बड़े लेवल पे एक साथ आ जाता है तो हमेशा उसको एक चीजें लगती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, हमारे यहाँ भी कुछ पता नहीं, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, तो उनको ट्रेनिंग देना भी होता है, जैसे कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं लोग तो उनको पता होता है कि मेरा एक पोर्टफोलियो है और मुझे इसके लिए उतना पैसा मिलने वाला है। वैसे ही एपीसी भी हर किसी का एक पोर्टफोलियो होता है, हर आदमी कोई एक तो सुपरस्टार नहीं होता कि हर चीजें एक ही आदमी करेगा, तो जो आदमी जो कर रहा है उसको वो अच्छी तरह से निभाए और उसको उसके लिए पैसा मिले,
3: यानी सबकी जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित कर दी जाती है और उसी के अनुसार जो हिस्सेदारी आती है यानी जो मुनाफा है वो देखिए किस तरीके से हम मान सकते हैं कि एक सही अनुपात में, निश्चित अनुपात में हर एक एफपीओ तक पहुंचता है। और खासतौर से गौरव जी देखा जाए तो शायद आपको भी काफी तसल्ली मिलती होगी, काफी खुशी होती होगी जब एक किसान जो है कृषि में जो अर्थशास्त्र छिपा हुआ है जब उसको जानते हैं समझते हैं। तो
2: इसका मेन ऑब्जेक्टिव मुकुल जी यही है कि हम लोग जो किसान है उसको इसका जो इकोनॉमिक्स है वो समझ में आना चाहिए। जैसा शुरू में नरेंद्र पवार जी ने कहा था कि एग्रीकल्चर जो है इसमें बहुत सारा साइंस का समावेश है
3: जी।
2: यहाँ पे एक फार्मर को बॉटनिस्ट होना जरूरी है, उसको प्लांट पैथोलॉजिस्ट होना जरूरी है, उसको एग्रो इकोनॉमिस्ट होना जरूरी है। तो जिसका इन्होंने यहाँ पे अभी मेंशन भी किया किस प्रकार से ये लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उस तरीके का अलग अलग अपना पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो का निर्वहन करते हुए एफपीओ जिस तरीके से अपना टारगेट अचीव करती है, तो ये काफी एक सक्सेसफुल मॉडल के जैसे इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे।
3: कितनी संख्या तक एक किसान जो है वो एक एफपीओ में जुड़ सकते हैं, और अगर सबसे कम संख्या आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि कितनी एक न्यूनतम सीमा जो है वो कितनी है और अधिकतम कितनी है
2: इसमें जो नया स्कीम है उसमें। जैसे हिली एरियाज है जहाँ पे स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है, कि कश्मीर की बेल्ट है या हिमाचल है या नॉर्थ ईस्ट एरियाज है, वहां पे 100 तक फार्मर्स को साथ में लेके एक संगठन का निर्माण होता है, और ये संख्या जो है 200 तक भी जाती है, और इसके अलावा अगर कहीं पे थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है तो उसमें थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। जो नॉर्मल प्लेन एरियाज है वहां पे अभी 300 किसानों को लेके, मिनिमम 300 किसानों को लेके ऐसा एक एफपीओ बनाया जाता है, जिसकी संख्या 500 और 500 से ऊपर 1000 तक भी चली जाती है। और कुछ बड़े एफपीओ हैं जैसे अलग अलग कमोडिटीज में है, मिल्क के जो एफपीओ हैं वहां पे ये थाउजेंड्स में है, कि जैसे एनडीडीबी सर्विसेज हैं उनके एफपीओ बने हैं, तो वहां पे 20,000-25,000 इस तरीके से फार्मर्स की, क्योंकि जो इसका की है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल है। जितना ज्यादा किसान साथ में आएंगे उतना ही उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, उतना ही उनको इकट्ठा ऑप्टिमाइजेशन होती है ऑपरेशंस में, वो अपना खर्चा कम कर पाते हैं साथ में काम करके।
3: बिल्कुल, और कुछ ऐसी स्थिति हमने इस बार के बजट में भी देखी, जो कहीं ना कहीं नाबार्ड को भी जिम्मेदारी दी गई है, ना सिर्फ स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं या एफपीओ की बात करते हैं।

0: सकते हैं, तो हम मान सकते हैं कि जो योजना का उद्देश्य है वो यही है कि एक किसान को कैसे हम फायदा पहुंचा सकते हैं।
1: बिल्कुल, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो छोटा किसान, जिसकी छोटी जोत होती है, जिसकी अपनी नेगोशिएशन और बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे किसान साथ में मिलके आए, इस तरीके का जैसा नरेंद्र पवार जी का संगठन है, इस तरीके के संगठन का निर्माण हो और फिर उसके बाद में वो एक कॉरपोरेट के जैसा इसको इंस्टीट्यूशन को रन करें और जिसमें हर फार्मर की सहभागिता हो वैल्यू चेन सिस्टम के अंदर और उनको उनके जो प्रोडक्ट का बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो, उनकी आमदनी बढ़े।
0: बिल्कुल गौरव जी, लेकिन एक सवाल अक्सर जो किसान है उनके जहन में भी आता है, कई बार उन्होंने हमसे भी इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की है, जब हम बात करते हैं सहकारिता की, कॉपरेटिव की, उनसे कैसे हम जो एफपीओ को अलग मान सकते हैं?
1: कॉपरेटिव और एफपीसी का जो अभी मेन डिफरेंस जो है, कॉपरेटिव जो है उसके अंदर भी ऐसे ही फार्मर संगठित होकर करते हैं, लेकिन उसमें जो नॉर्म्स हैं, बायलॉज जो होते हैं जो गवर्न करने के लिए, उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम है। और जो एफपीसी है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जो अभी नई जितनी भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रही है वो कंपनीज एक्ट के अंदर बन रही है, तो इसमें उस लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि उनको एफपीओ रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए किस तरीके के बायलॉज का वो लोग निर्माण करते हैं, तो ये अभी रियलाइज किया जा रहा है कि ये एक बेटर मॉडल है,
0: एक बड़ा अंतर इसको मान सकते हैं, जिस वजह से किसान खुद को थोड़ा सा स्वतंत्र भी मानते हैं कि इस तरह की देखिए जो बाधाएं हैं या बंदिशें हैं वो उन पर नहीं है। और खासतौर से शशि भूषण जी, अगर देखा जाए जो अब लगातार अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश की भी अगर बात की जाए, तो अब एक हम रुझान मान सकते हैं, खासतौर से एक समय था जब जो युवा पीढ़ी थी माना जाता था कि उनकी रुचि अब शायद कृषि में नहीं है, लेकिन अब वही युवा पीढ़ी है जो कि ना सिर्फ एफपीओ का निर्माण कर रही है, स्टार्टअप से जुड़ रही है और कोशिश यही कि आत्मनिर्भर कृषि के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
2: युवा पीढ़ी जो है खास करके इस क्षेत्र में एफपीओ के माध्यम से यदि आते हैं और उनका युवा को प्रशिक्षण लेकर और जिस सेक्टर में इंटरेस्टेड है, जिस क्षेत्र में वो इंटरेस्ट है, जैसे मिशन के तहत भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कई कोर्सों पर, वर्मी कंपोस्ट हो गया, सीड प्रोडक्शन हो गया, मशरूम उत्पादन हो गया, गार्डनर हो गया, जिस क्षेत्र में इंटरेस्टेड युवा वर्ग है वो यदि संगठित होकर इस क्षेत्र में एफपीओ के माध्यम से यदि आते हैं तो इसमें निश्चित तौर पे उन युवा वर्गों को रोजगार मिलेंगे और खास करके उन लोग युवा इसमें यदि आते हैं एफपीओ के माध्यम में जुड़ते हैं तो उनका जो आज जो बेरोजगार का जो बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, जो पलायन हो रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं और इस क्षेत्र में अपने इन क्षेत्र में लोकल में वोकल लोकल क्षेत्र में अपने गांव के को यदि युवा वर्ग इसमें आते हैं कृषक उत्पादक संगठन करके और इसमें आत्मा योजना के तहत प्रशिक्षण लेते हैं और कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित हो जाते हैं तो वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं और अन्य किसानों को भी जो इसमें जुड़े हुए हैं उनको सदस्य बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और उनका उत्पाद देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजारों में भी जाएगा और उनका आमदनी सुदृढ़ होगा यदि संगठित होकर यदि खेती करते हैं, खास करके एफपीओ के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर हमारे बिहार ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा इस पर साधन है और किसी से बड़ा कोई उद्योग नहीं है इस क्षेत्र का। यदि उद्योग के रूप में यदि हम चयन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें अधिक से अधिक बहुत काफी सभी लोगों को रोजगार मिल सकता है जिनके पास भूमि है।
0: जो बड़ी समस्या रहती है, चुनौती हम मान सकते हैं रोजगार की, वो भी एफपीओ के जरिए देखिए एक समाधान जो है, क्योंकि ना सिर्फ आपको खुद को रोजगार बल्कि जो बाकी और हैं उनको भी आप रोजगार मुहैया करा सकेंगे। साथ ही यहां नरेंद्र जी जानना चाहेंगे, एफपीओ की जब हम बात करते हैं, किसान उत्पादक संगठन की जब हम बात करते हैं, इसमें महिलाओं की भागीदारी की अगर बात की जाए, क्या कुछ ऐसे भी संगठन है जो आपसे जुड़े हुए हैं जो पूर्णतः जो महिलाएं हैं वो संचालित कर रही हैं, या जो और एफपीओ में कितनी किस जो भागीदारी है महिलाओं की वो नजर आती है आपको?
3: बिल्कुल सर, अगर इसमें पूरे सेक्टर में भी अगर देखते हैं, जैसे आपने बोला कि अभी युवा क्यों आ रहे हैं यहाँ पे ज्यादा, तो जैसे रूरल एरिया में मतलब गांव में जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, ये सब लोग अभी के है जिसकी उम्र 30 साल 35 साल है, हमारे उम्र के लोग है लड़के भी, तो जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है गाँव में तो वैसे गाँव के युवा इस बिजनेस में आ रहे हैं। वैसे ही जब हमारे औरतों को, हमारे जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा मिलेगी, अच्छा अवसर मिलेंगे, रिसोर्सेस मिल जाएंगे, तो अपने आप आ जाएगा। महाराष्ट्र में अगर देखते हैं तो बहुत सारे महिलाएं संगठन है जो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अपने गौरव जी भी बोलेंगे, नाफेड़ के साथ भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो पुत्र शक्ति करके हमारे एक्टिव हुए, जो खुद ओनियन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लगभग 45,000 मेट्रिक टन का उन्होंने इस साल ओनियन का काम किया। अभी वो उनका कल मेरे पास आए थे, वो तो उनका एक प्राइवेट मार्केट बना रहे ओनियन का, बस जो ओनियन वुमन महिलाएं ही चलाएंगे, महिलाएं उसके लाइसेंस वगैरह होंगे, महिलाएं परचेस करके महिला सेल करेंगे और महिलाएं मार्केट चलाएंगे। अवसर और उपलब्धि अगर होती है तो महिला पुरुष ऐसा कोई फर्क नहीं है, गांव के लोग शहर के लोग ऐसा कोई नहीं, लेकिन सब जगह पर रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, जैसे शिक्षा हो, बाकी सारे रिसोर्सेज हो, अपॉर्चुनिटीज हो, तो बाकी कोई कम नहीं इसमें।
0: बिल्कुल, यानी मान सकते हैं कोई भी जो भेदभाव है देखिए वो नहीं है, फिर चाहे हम जो हमारे पुरुष किसान उनकी बात करें, महिला किसानों की बात की जाए। और जैसा नरेंद्र जी ने कहा कि संसाधन अगर हमें मिल जाते हैं तो फिर हर कोई यही चाहता है कि उसका आर्थिक विकास हो सके, वो तरक्की कर सके, और उसकी तरक्की के साथ साथ जुड़ी है इस देश की तरक्की भी।
4: आने वाले समय में भी अनेकों संभावनाएं हमें नजर आ रही है, तो इसमें और क्या क्या बदलाव होने हो सकते हैं आदि जानकारियों को हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। सो बने रहिए हमारे साथ रेडियो 90.8 FM के साथ।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: और खासतौर से महिलाओं की भी अगर बात की जाए, तो ब्रेक में जाने से पहले नरेंद्र जी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि पूर्णतः जो महिलाएं हैं, कई ऐसे एफपीओ हैं जो वो संचालित कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण जो है वो भी इनके जरिए हो रहा है, रोजगार सृजन भी हो रहा है। और जब एक नए भारत की बात हम करते हैं, बदलते भारत की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं गौरव जी जो इस बदलते भारत की बदलती कृषि है वो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि एफपीओ से अब जुड़ती हुई नजर आ रही है।
1: ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारी समस्या थी सीमांत किसानों की, उसको अब हम एफपीओ के माध्यम से उसको काफी तक प्रॉब्लम को हम लोग रिजोल्व कर पाए हैं। और आगे अगर हम लोग वृत्त चित्र के ऊपर देखें कि जैसा आपने भी थोड़ा जिक्र किया था कि और बामेती से शशि भूषण जी ने भी बोला था कि वहां से उनका एक्सपोर्ट हुआ पोटैटो बिहार से, तो उस तरीके की संभावनाएं इसमें जुड़ती जा रही हैं, जहां पे जो एफपीओज हैं वो वैल्यू चेन के अंदर उनकी हिस्सेदारी एक तरीके से बढ़ती नजर आ रही है। वहां पे आज की तारीख में बहुत सारे एफपीओज के ऐसे एग्जांपल हैं जो नरेंद्र पवार जी के जैसे आगे वैल्यू चेन में रिटेल एंड के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कॉरपोरेट काम कर रहे हैं, फार्म ग्रोसर के नाम से ऐसी एफपीओज हैं जो सीधा कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, उनका रियलाइजेशन बढ़ रहा है। और इसका जो अगला बड़ा हम लोग एक बदलाव देखेंगे कि ये एफपीओ उस लेवल तक पहुंचेंगी जहां पे ये डील स्ट्राइक करेंगे एक्सपोर्ट के लिए। बहुत सारे एफपीओज अभी इस तरीके की संभावनाएं तलाश रहे हैं, त्रिपुरा से पाइनएप्पल है वो यूके जा रहा है, या इधर से पोटैटो इनका बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, उस तरीके से मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज हैं
0: जो बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जो है वो करते नजर आ सकते हैं एफपीओ हमारे।
1: बिल्कुल, इस सिचुएशन में एफपीओ कुछ पहुंच चुके हैं जहां पे उनकी जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स हैं, जो कन्वेंशनल प्लेयर्स हैं उनसे भी उन्होंने पास्ट में ज्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं, ग्रेप्स के केस में ऐसा हो रहा है। और मैंने वही बताया कि जैसे अब आगे भी संभावनाएं हैं जहां पे बहुत सारी ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं जो बाहर कंट्री में जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्लान कर रहे हैं डायरेक्ट सोर्सिंग का फार्मर या एफपीओ के द्वारा।
0: जी बिल्कुल, जैसा यहां देखिए गौरव जी ने कहा कि काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हम उनको जानकारी मुहैया करा रहे हैं। नरेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी संख्या में जो किसान हैं आपसे जुड़े भी हैं, क्या आपको लगता है कि किस तरीके से जो प्रशिक्षण है उसको और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और उसमें जब हम तकनीकी ज्ञान की बात करते हैं या प्रयोगात्मक शिक्षा की जब खासतौर से बात की जाती है, वो कितना जरूरी आपको लगता है कि किसान को तकनीकी जानकारी भी मुहैया कराई जाए?
3: बिल्कुल सर, इसमें जैसे एफपीओ एक साथ आ जाते हैं तो एफपीओ के थ्रू ये लोगों को ये सब सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन इसका एक हमें फंडामेंटल सोचना पड़ेगा कि हर कोई चीज में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन नई अपडेट हो जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में हो, वेदर के बारे में हो, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में हो, कोई डे टू डे मिलने वाली चीज है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि कोई एक एफपीओ के साथ जुड़े हैं तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। हमें बड़े लेवल पे हमेशा इंफॉर्मेशन फ्लो फार्मर तक पहुंचाना पड़ेगा कि वो अपने प्रोडक्शन में कैसे सुधार कर सकता है, कौन से नए सीड आए हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आए हैं, कौन से नए इनपुट्स आए हैं, सेल्स की क्या इंफॉर्मेशन है, मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च हम लोगों को कैसे दे सकते और डे टू डे होने ऑपरेशन डे टू डे होने वाली चीज है जो अपने गवर्नमेंट के थ्रू भी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम लेके फार्म विजिट करके फार्म फील्ड स्कूल के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, जैसे यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इसके थ्रू भी बहुत सारे प्रयास करने पड़ेगी कि फार्मर को डे टू डे बेस पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे हम कोई भी आदमी है अगर यहाँ पे रहता है तो हमेशा रोज न्यूज देखता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा है, वैसे ही जैसे एग्रीकल्चरिस्ट है वो उन्हें हमेशा ये जानकारी मिलनी चाहिए कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, फार्मिंग में क्या बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्या बदल रही है, मार्केट कैसे बदल रहा है, और रोज का रोज मिलना चाहिए। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहायता लेके बहुत बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप भी इन्वॉल्व होंगे, यूपीओ तो होंगे लेकिन स्टार्टअप और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। जैसे गौरव जी की फर्म है जो इसमें बहुत अच्छा काम करती है, बस इन्फॉर्मेशन ना देके आपको इंक्यूबेशन तक उनको लेना पड़ेगा ताकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर खड़ा हो, नहीं तो फिर क्या होता है ना, ये एक्टिविटी एक दो साल तक चलती है उसके बाद स्लो हो जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एपीओज है जो शुरुआत में तो अच्छे काम किए लेकिन उनको दिशा नहीं मिली, कुछ सपोर्ट नहीं मिला, उनकी कैपेसिटी जिस तरह से चाहिए ये एक दिन में डेवलप होने वाली चीज नहीं है, तो उसको कंटिन्यूस एफर्ट लेने पड़ते हैं, अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। तो एक कंटिन्यूस एफर्ट वाला एक प्लान और एक सोची समझी हमें शेड्यूल बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी सबको बढ़ावा देने के लिए।
0: बिल्कुल, तो एक सही रणनीति के साथ ना सिर्फ सही दिशा बल्कि जो एफपी उनकी दशा भी बेहतर रही इसके लिए लगातार हमें सक्रिय रहना पड़ेगा। और यहाँ शशि भूषण जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, कितना सहमत आप नरेंद्र जी की बातों से?
2: जो बताए बहुत बहुत काफी इस पर देने की जरूरत है, और खास करके जो नया नया मतलब टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट जो हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, इसकी नए नए जो इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत से वैरायटी नए नए वैरायटी आ गए जो अच्छे प्रोडक्शन हाई मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने के लिए ये चीज को होनी आवश्यकता है। और खास करके जो हमारे जो यूनिवर्सिटी जो रिसर्च कर रही है, अनुसंधान केंद्र शोध जो कृषि क्षेत्र में कर रही है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में भी बहुत काफी शोध हो रही है, इस पर निश्चित तौर पे यदि हम एफपीओ के माध्यम से जिस क्षेत्र में जो काम कर रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन हो, मत्स्य हो, इस क्षेत्र में बहुत काफी नई नई तकनीकी आ चुकी है और इसकी सूचना इंफॉर्मेशन वो वैज्ञानिक और एफपीओ के जो कार्य कर रहे हैं इनको है जो इसके माध्यम से तकनीकी के माध्यम से इन वेबिनार के माध्यम से हो, तो हर हमेशा इन्फॉर्मेशन यदि मिलते हैं सही समय पर, यदि उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो निश्चित तौर पे एफपीओ बहुत काफी आगे बढ़ेगी। यह तकनीकी जानकारी मुहैया कराना अति आवश्यक है और सूचना जो वैज्ञानिक के जो सूचना जो है मौसम वैज्ञानिक जो है मौसम के आधारित, क्योंकि कृषि एक मौसम आधारित है और मौसम यदि मौसम की जानकारी हो जाती है तो बहुत काफी खर्च को लागत को कम कर सकते हैं, और जो मौसम के कारण हमारे फसल की बहुत काफी नुकसान होता है, और इसमें मौसम आधारित को जानकारी निश्चित तौर पे किसानों को एफपीओ से जुड़े हुए हैं यदि वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो निश्चित तौर पे उस सही समय पर सही निर्णय लेकर वह उत्पादन को मार्केट में बेच सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, यदि इसकी उपयोगिता करते हुए हमारे एफपीओ जो उपयोग करते हैं तो अन्य किसानों को जो सभी किसान उसमें जो मेन जो एफपीओ के जो है उनको यदि सूचना मिल जाता है और उनके माध्यम से वो प्रशिक्षित एक प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उनके जो सदस्य हैं जो 200-300 जो किसान फार्मर्स है उनको है भी सूचना इनके माध्यम से जाए ताकि सभी किसान जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभान्वित किया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल शशि भूषण जी, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए इस बार के बजट में भी हमने देखा कि किस तरीके से कृषि शिक्षा पर भी जोर दिया गया और उसमें बदलाव की बात कही गई है पाठ्यक्रम में, तो जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं अलग अलग राज्यों में तो वहां भी इसकी बानगी हमें देखने को मिलेगी, तमाम ये जो जानकारी है किसानों के बीच और बेहतर तरीके से पहुंच सकेगी।
2: कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र जो कृषि किसानों के साथ जो जोड़ने का जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र में वहां पर प्रक्षेत्र में जो फार्म साइंस सेंटर होते हैं वहां पर उस क्लाइमेटी के अनुसार किसानों को यदि वहां पर दिखाते हैं कि कौन सी वैरायटी और फसल कैफेटेरिया वहां पर फसल कैफेटेरिया की लगाई जाती है, धान लगाए, गेहूं लगाए तो कैफेटेरिया को उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। और वहां पर यदि किसान देखते हैं कि हमारे कौन सी वैरायटी इस क्षेत्र में अच्छा एराइज करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज दे सकता है, तो उस क्षेत्र को विजिट कराने की आवश्यकता है। और एक्सपोजर यदि कराते हैं या एफपीओ बहुत ही बढ़िया कोई काम कर रहे हैं, जो एफपीओ के जो क्षेत्र में संबंधित जो क्षेत्र में अच्छा एफपीओ जो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र भी अन्य एफपीओ के किसानों को वहां पर विजिट कराने की आवश्यकता है, ताकि उस एफपीओ के माध्यम से किस तरह खेती किया जा रहा है तो परिभ्रमण और प्रशिक्षण एक मस्ट है। और एफपीओ के माध्यम से एफपीओ को भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।
4: किसान उत्पाद संगठन, जी हाँ किसान साथियों, इस संगठन के माध्यम से हमारा जो किसान है उसको एक नई आशा की किरण नजर आती है, क्योंकि इस संगठन के माध्यम से जो किसान है वो अपना जो उत्पाद है उसे देश और प्रदेश में कहीं पर भी से निर्यात कर सकता है। साथ ही आप और हम किसान भाइयों हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा जो संगठन है इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं हमारी जो पहुंच है वह हम बढ़ा सकते हैं और हमारा जो निर्यात है हम देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं और अच्छी से अच्छी आमदनी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसान साथियों हमें आवश्यकता है हमारा जो संगठन है इसे मजबूत बनाने की, साथ ही जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। हम केवीकी के माध्यम से हम प्रशिक्षण ले सकते हैं, साथ ही हम विद्यालयों के माध्यम से भी हम इन अलग अलग जो खेती है उसके प्रशिक्षण हम लिए जा सकते हैं। साथ ही कोशिश करने की आवश्यकता है हमारे जितने भी किसान संगठन है वह हमारी जो अपनी जो कृषि है उसमें नवीनता लाए और जो अपनी पहुंच है उसे बरकरार रखें, बढ़ा कर रखें। के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना है, आशा करते हैं आज की यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया 90.8 FM के साथ छबा की आवाज पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
8: नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के खेती बाड़ी कार्यक्रम से आप सभी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेते हैं। साथ ही हम आशा करते हैं कि हमारा जो ये खेती बाड़ी कार्यक्रम है उससे न केवल आप लाभ लें परंतु अपने साथी किसान साथियों को भी अपने नवीनतम कृषि के बारे में बताएं, साथ ही आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे भी आप रेडियो टांडिया भील के एप्लीकेशन के माध्यम से और रेडियो टांडिया भील के मोबाइल नंबर पर भी आप समस्याओं को लिख के हमें भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि केवीकी के माध्यम से आप तक अच्छी से अच्छी उत्तम फसलों वाले बीजों को आप तक पहुंचाएं, साथ ही आप तक जो नवीनतम कृषि पद्धति है उसको भी आप तक पहुंचाएं। आप और हम सभी किसान साथ भाई यह अच्छे से जानते हैं कि लगातार रासायनिकों का प्रयोग हम जो हमारे खेतों में कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी जो मिट्टी है वो बंजर होती जा रही है, इसीलिए किसान साथियों हमें हमारा रुख करने की आवश्यकता है प्राकृतिक खेती के ऊपर और जैविक खेती के ऊपर। किसान साथियों, अलग अलग विधियों के माध्यम से हम जीवामृत है, जैविक खाद है, केचुआ खाद है आदि हम बना सकते हैं और इससे न केवल हमारा वातावरण बल्कि हमारी जो मृदा है जो बंजर हो चुकी है उसमें भी पुनर्जीवन आ सकता है। तो किसान साथियों, आज के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों को, कैसे हम हमारी मृदा को बचा सकते हैं, हमें कौन सी फसल करके अधिक से अधिक मुनाफा लिया जा सकता है और हमें किस तरह कृषि को करना चाहिए। साथ ही अगर हमारी कृषि में कौन सी नवीनताएं आई है और हम अगर हमारा जो किसान है वो किस और अपना रुख करे तो उसे अच्छे से अच्छी और मुनाफे वाली कृषि मिल सके, इन सभी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
8: ना आके उसे कमजोर, ना है वह कमजोर, जब नारी में है शक्ति सारी फिर क्यों कहे उसे बेचारी। किसान साथियों, आप और हम यह बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो नारियां हैं वह एक परछाई की तरह हमारे साथ लगी होती है। हमारे खेतों में जो उनका जो योगदान है वह अमूल्य है, वह बोने से लेकर निंदाई गुड़ाई, खेत खेत का कचरा साफ करना, बाकी सारे कामों में जो हमारी नारियां हैं वह हमें बहुत ही हमारा बहुत ही साथ देती है। साथ ही किसान साथियों, आज हम इस खेतीबाड़ी के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं कुछ महिलाओं के ऊपर जिन्होंने खेतीबाड़ी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो किसान साथियों, आइए इस चर्चा को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
9: गांव में जीवन यापन का सबसे महत्वपूर्ण घटक कृषि है। 2011 के जनगणना के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या का करीब 70% हिस्सा गांव में बसता है। और इन लोगों की आमदनी और जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है। गांव में कृषि कार्य हो या पशुपालन, महिलाओं की भूमिका पुरुषों के मुकाबले अग्रणी है। कृषि क्षेत्र के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। आर्थिक रूप से सक्रिय 80% महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 33% मजदूरों के तौर पर और 48% स्वनियोजित किसानों के तौर पर कार्य कर रही हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। कृषि कार्यों के साथ साथ महिलाएं मछली पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों में भी बखूबी अपना योगदान दे रही हैं। फसल की पैदावार के हर महत्वपूर्ण काम में महिलाओं का अहम योगदान रहता है। इतना ही नहीं, पशु प्रबंधन में भी महिलाएं प्रमुख योगदान दे रही हैं। गाय और भैंसों के पालन में महिलाएं रोजाना 3 से 6 घंटे तक श्रम करती हैं। किसानों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है। खेतीबाड़ी में महिलाओं को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 6 वर्षों में सरकार ने काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कुल 30% हिस्सा महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की ओर से भी महिलाओं के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर और तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। यानी सरकार की ओर से महिला किसानों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से पूरे देश में 645 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में किसानों को खेतीबाड़ी, पशुपालन और खेती से जुड़ी नई तकनीकों और शोधों की जानकारियां दी जाती हैं। स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए महिलाओं के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भी महिला किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने, उनके विकास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है।
10: तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की हम यहां पर शुरुआत कर लेते हैं, रुक कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर सुनेजा का। डॉक्टर सुनेजा, रिपोर्ट में भी हमने देखा, शुरुआत में भी हमने जिक्र किया कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनका जो स्थान है काफी अहम हो जाता है। और आज हम जहां बात कर रहे हैं हमारी महिला किसानों की ही, तो आपसे शुरुआत में यही जानना चाहेंगे कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान पर आप क्या कहेंगी।
11: अदिति, आपने ठीक कहा कि 80% आर्थिक रूप से जो महिलाएं कार्यरत हैं कृषि में वो हमारी किसान बहनें ही हैं, और कृषि का सारा काम हमारी महिला किसान करती हैं। बुआई से लेकर फसल कटाई, निराई गुड़ाई, खरपतवार हटाना, उसमें उर्वरक डालना और यहाँ तक कि कटाई उपरांत जो प्रसंस्करण क्रियाएं हैं वो भी हमारी किसान बहनें करती हैं, यहाँ तक कि विपणन का काम भी किसान बहनें ही करती हैं। तो किसान बहनों का कृषि में भागीदारी की बात की जाए और यदि आंकड़ों की बात की जाए तो खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में 55-60% महिलाएं कार्यरत हैं, वहीं पर पशुपालन के क्षेत्र में 93% तक महिलाओं की भागीदारी है
10: जी।
11: इसी तरह से मछली पालन में 24%, कृषि वानिकी में और जो वन आधारित लघु उद्योग हैं उनमें हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अपूर्व रही है और उस सराहनीय रही है
10: जी। बिल्कुल, तो हमारी जो महिलाएं हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए, चाहे बात हम खेतों में कार्य करने की हो, फसल की कटाई के उपरांत जो हमारे प्रबंधन कार्य होते हैं, कृषि कार्य करने होते हैं, विपणन की ही बात कर लें तो तमाम कार्यों में हमारी महिलाएं सम्मिलित होती हैं और जो पशुपालन है, अन्य जो कृषि संबंधित व्यवसाय हैं उनमें भी हमारी महिलाएं एक बहुत ही एक स्तंभ के रूप में खड़ी होती हैं और अच्छी तरह से कार्य करके कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं और अच्छी आय अर्जित करने में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर श्रीवास्तव आपका रुख करना चाहूंगी, आपके संस्थान के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान की हम बात करते हैं तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबन के लिए किस तरह के कार्य आपके यहाँ पर किए जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें जागरूक किया जा रहा है?
12: ये हमारे संस्थान के लिए भी बड़े गौरव की बात है क्योंकि हम लोग हमेशा महिलाओं के लिए ही काम करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस मीटिंग के माध्यम से कि हमारा संस्थान जो है सबसे पहले 1996 में बना, जब इसकी स्थापना की गई तो ये दो वैज्ञानिकों से शुरू हुआ था और उस समय इसका नाम था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर
10: जी।
12: उसके बाद महिलाओं की भागीदारी को खेती में देखते हुए इस संस्थान को 2008 में फिर से अपग्रेड किया गया और इसका नाम रखा गया डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर। और धीरे धीरे जो वैज्ञानिकों का काम था इस संस्थान में वो आगे बढ़ता गया और महिलाओं की भागीदारी भी खेती में बढ़ती गई। उसको देखते हुए पुनः 2014 में इस संस्थान को सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर के रूप में दर्जा दिया गया। और अभी हम फिर इसी बीच में जो हमने ये ड्यूरेशन लिया 96 से लेके 2014 तक, इसी बीच में हमारे दो नेशनल कंसल्टेशन और ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर दिल्ली में आयोजित हुए
10: जी।
12: तो वहाँ पे जो हमारे माननीय अयप्पन साहब थे उस समय भूतपूर्व डीजी साहब, तो उन्होंने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पूछा 117 देशों के लोग उसमें पार्टिसिपेट कि आप लोगों के यहाँ सारे देशों में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, जो कोई संस्थान ऐसा है जो पार्टिकुलरली कृषि में महिलाओं के लिए काम कर रहा हो
10: जी।
12: तो वहाँ पे जवाब मिला कि नहीं, ऐसा कोई संस्थान हमारे यहाँ नहीं है, जनरली जेंडर पे वार हम लोग काम करते हैं लेकिन पार्टिकुलरली कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम करने के लिए किसी देश में कोई इस तरह के संस्थान नहीं है। तो उस टाइम से फिर हम लोग पहले बोलते थे ये इंस्टीट्यूट साउथ ईस्ट एशिया में है और उस टाइम से हम लोग इसको बोलने लगे कि ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूनिक अकेला है। और अभी हमारे संस्थान को इसी 2020 में बेस्ट इंस्टीट्यूट इन एशिया फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर अवार्ड भी मिला है
10: जी।
12: तो ये हमारे संस्थान के लिए बड़ी गौरव की बात है। और हम सबसे बड़ी जो खास विशेषता है इस संस्थान की कि हमारा संस्थान एक सिंगल विंडो के रूप में काम करता है। हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। अगर धान के लिए कोई समस्या किसान बहनों की है तो वो यहाँ पे आएंगे तो उनको धान की बात या समस्या का समाधान मिलेगा। मछली की समस्या का कुछ समस्या है वो इस संस्थान में आएंगे तो मछली के बारे में भी हम उनको बता पाएंगे। उनको खेती किसानी के बारे में है, पशुपालन के बारे में है, बकरी के बारे में है, मुर्गी के बारे में है, तो अगर उनकी कोई भी समस्या है तो इस संस्थान में आने से उनकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पे हो जाएगा
10: जी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपका जो संस्थान है पूर्ण रूप से हमारी महिला किसानों को समर्पित है और उनकी किसी भी तरह की समस्या हो खेती बाड़ी को लेकर आप उनका समाधान उन तक पहुँचाते हैं। और जब हमारी महिला किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर सहूलियत हो जाएगी और आसानी से वो कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगी और आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम जरूर बढ़ा पाएंगी। बिल्कुल, हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सके इसके लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सरकार भी कई तरह के हम योजनाएं कहें वो भी ला रही है ताकि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें और भी ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। इसके बारे में आज के कार्यक्रम में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर मैं डॉक्टर रश्मि का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर रश्मि, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से हैं, आपके संस्थान के जरिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी महिलाएं, महिला किसानों की ही नहीं साथ ही साथ मैं ग्रामीण क्षेत्रों की हर महिला की बारे में यहां पर बात करना चाहूंगी कि उन्हें और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
13: हमारे संस्थान में महिलाओं का योगदान जो है वो पहले से डॉक्यूमेंट किया गया है, उस पर शोध किया गया है। उसके लिए हम अलग तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जिससे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो हमारे जो विभिन्न संभाग हैं उनकी अपनी अपनी तकनीकें हैं, उनको अपना के हम महिलाओं को ट्रेनिंग दे के उनके द्वारा कुछ उद्यम भी हमने शुरू कराए हैं। दिल्ली के आसपास के काफी गांवों में हमने ये कार्यक्रम लागू किया है और काफी महिलाएं इसके लिए बहुत उनकी अपेक्षाएं थी और वो इसमें आगे भी आई हैं। उन्होंने बहुत सारे स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं, फेडरेशन बनाए हैं, कुछ ने तो अपनी कंपनियां भी लॉन्च करी हैं। और क्योंकि ट्रेडिशनली जो पहले से महिलाएं करती रही हैं वो कटाई उपरांत जो क्रियाएं हैं वो करके उनको मूल्य संवर्धित उत्पाद बना के वो बेचती रही हैं। अगर आप देखें तो इम्फाल में जैसे महिलाओं द्वारा एक मार्केट ही है, महिलाओं द्वारा संचालित आयोजित, सिर्फ महिलाएं उसको ऑपरेट करती हैं इम्फाल में। उसी तरह से ट्रेडिशनली चलता आया है, लेकिन इसको एक आज के परिपेक्ष में उद्यम की तरह से, कंपनी की तरह से, किसान महिलाओं द्वारा संचालित कंपनी या सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्वयं सहायता समूहों के द्वारा संचालित करके, तो उससे बड़ी उनकी आत्मनिर्भर पर भरता बढ़ी है। वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो पाई हैं। अचार है, मुरब्बे हैं, पापड़ हैं, बढ़िया हैं, सोयाबीन से निर्मित उत्पाद हैं और मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं, जिस तरह से हमारे साथ में पूजा शर्मा है, ये भी बताएंगे आपको डिटेल में, ये हमारे संस्थान से जुड़ी रही हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस तरह के स्वयं सहायता समूह। और हमारा जो केवीके है शिकोपुर में, वहां के तो तीन, जैसे एक तो क्षितिज है जिसको ये पूजा शर्मा संचालित करती हैं, एक प्रयास ग्रुप है, एक आरजू ग्रुप है, जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपने उत्पाद रखे हैं।
10: जी बिल्कुल, तो महिलाओं को आप लोग प्रशिक्षित करते हैं हर स्तर में, केवल खेती किसानी के कार्यों तक ही नहीं बल्कि उसके पश्चात क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, उद्यम शुरू किए जा सकते हैं, इन तमाम जरियों के जरिए हमारी जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। और हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो एक अहम भूमिका उसकी भी रही है हमारी महिलाओं को इस मुकाम तक पहुंचाने में। और एक ऐसी ही सफल किसान, महिला किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पूजा शर्मा जी, उनसे ही जान लेते हैं किस तरह से उनकी इस सफर की शुरुआत हुई। पूजा जी क्या कहेंगे आप?
14: मैं 2013 से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी और वहां से मैंने प्रशिक्षण लिया। बचपन से ही खेती बाड़ी और पशुपालन किया था तो सोचा क्यों ना, मतलब कुछ ना कुछ किया जाए, अपने लिए तो हर कोई करता है। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों को साथ लेके और उनके साथ मिलके कुछ काम करूं। और 2013 में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र में जाके 7 दिवसीय प्रशिक्षण लिया और सोया नट्स का हमने प्रशिक्षण लिया। फिर हमने काम शुरू किया, हमने स्वयं सहायता समूह बनाया। समूह बनाने के बाद जैसे ही हमने काम की शुरुआत की तो काफी सारी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन शुरुआत में जो दिक्कतें आती हैं उनके बाद तो आगे बहुत अच्छा मतलब काम हो जाता है। समूह में मिलके हमने जैसे ही सोयाबीन का प्रशिक्षण तो लिया, मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे जैसे बचपन से किसान भाई हैं, खेतीबाड़ी हमने भी की थी भाइयों ने के साथ मिलकर, तो क्यों ना हम उन्हीं चीजों को बना के मार्केट में दें ताकि हमारे किसानों का भी फायदा हो। जैसे कि आज हमारे मोदी जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय डबल होनी चाहिए। मेरा मानना है कि 2022 से पहले हम किसानों की आय डबल कर सकते हैं। जैसे बाजरे से हमने खिचड़ी बनाई, फिर बाजरे से हमने लड्डू बनाए और आज मतलब एक एनजीओ की हेल्प से बेकरी ऑन लगने की वजह से आज हम बाजरे के बिस्किट बनाते हैं, ज्वार के बिस्किट हम बनाते हैं, रागी चना मतलब कोई भी मोटा अनाज हमने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके हमने बिस्किट नहीं बनाए।
10: जी बिल्कुल, तो फसल उत्पादन तक ही सीमित ना रहकर आप प्रसंस्करण करती हैं, मूल्य संवर्धन करती हैं जिसके चलते आय काफी अच्छी अर्जित होती है और अगर ऐसी ही कदम हमारी अन्य महिला किसान भी उठाएंगी तो निश्चित तौर पर जो हमारी सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके उससे पहले ही इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। बस जरूरत है सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो विभिन्न संस्थान हैं उनकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको जानने की, उनको समझने की। जब जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, आप मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर

0: जितने भी निर्णय लेने वाले निकाय हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिसके आधार पर प्लानिंग की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, ब्लॉक एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, उनमें महिलाओं का नामांकन और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो इन चार स्तंभों के अराउंड मंत्रालय ने अपनी रणनीति तैयार करके आज ये अचीव कर लिया है कि जितने हमारे कार्यक्रम हैं, लगभग एक दर्जन मंत्रालय के मिशन कार्यक्रम और किसान कल्याण के कार्यक्रम हैं, उनमें महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
1: जी हाँ, तो हमारी महिला किसान बहनों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं, अलग अलग प्रकार की रणनीतियों के द्वारा हमारी जो कोशिश की जा रही है कि हमारी जो महिला किसान है वह कैसे आगे आ सके, और इनका भी जैसे हमारे पुरुष किसान है वैसे उसी तरह के से हमारी महिलाओं को भी उतना सम्मान मिले, उतना उनको भी उन योजनाओं का जो है फायदा मिल सके। साथ ही किसान साथियों, कैसे हमारी जो महिला किसान है वह कैसे अपना विकास कर सकती है, इन्हीं सारी चीजों को आगे हम जानेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइटिया भील 90.8 FM के साथ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टाइटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, हम महिला किसान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: तो जैसा आपको विदित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहुंच मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा है। हम हर गांव तक, हर हमारे जो कार्यक्रम है उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। जितने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम है, राज्य सरकारों के सहयोग के साथ में इनका क्रियान्वयन बखूबी किया जा रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं जिसमें कि हम लोग महिलाओं को सीधी बहुत ज्यादा ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं या उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्यों ना हो, जिसमें कि करीब 67% हमारी महिलाएं जो हैं आज ग्रामीण विकास विभाग के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको लाभ मिला है, लाभान्वित हुई है। उसी प्रकार से मनरेगा में भी आज हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी महिलाएं आज इस समय में, स्पेशली कोरोना के टाइम में, जबकि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मेजर इश्यू हो गया, तो हमारी महिलाओं को मनरेगा के माध्यम से भी बहुत रिलीफ मिली है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें महिलाएं सीधी भागीदारी कर रही हैं। मैं उनमें से कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बोलना चाहूंगी मनरेगा में भी, क्योंकि कई हम लोग केवल इसमें ही विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ आज हमने एक काम किया और कल आगे बढ़ गए। हमारा प्रयास ये है कि हम सस्टेनेबल अथवा ऐसे कार्य ले जिनका की परिणाम दूरगामी हो। जैसे न्यूट्री गार्डन का एक प्रोग्राम हम लोग लेते हैं, ना केवल जिसमें हम जो न्यूट्री गार्डन है या ऐसे फल पौधे लगाते हैं जिससे कि लोगों को आमदनी मिले, बल्कि एक इसके पीछे उद्देश्य ये भी है कि हमारी महिलाओं को इसमें अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल सके। दूसरा, हम लोग कुएं बनाने का बहुत सारा काम करते हैं, वो इसलिए जिससे कि सिंचाई के स्रोत हमको उपलब्ध हो पाए। खेतों में काम करने का काम लिया जाता है मनरेगा में, जिससे कि उन्नत खेती हो सके। साथ साथ में बागवानी के अन्य कार्य भी लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम है, पशुपालन शेड बन रहे हैं जिससे कि लोग जो एनिमल हस्बेंड्री में या दुग्ध उत्पादन में अपने जो जानवर दे रहे हैं उनको सेफली रख सके। कुक्कुट पालन के लिए भी शेड्स बनाने का कार्यक्रम इन सभी योजनाओं में, इस योजना में रखा गया है।
3: जी बिल्कुल।
2: दूसरी तरफ में हमारा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हम लोग सीधे सीधे महिलाओं के साथ में ही कार्य करते हैं। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी पहुंच 7 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ में है। हमारा सीधा सीधा कार्यक्रम उनके माध्यम से क्रियान्वित हो रहा है। हम लोग स्वयं सहायता समूहों को तैयार करते हैं और स्वयं सहायता समूह एक ही गांव के एक जैसे लोगों के समूह होते हैं, जिसमें कि महिलाएं इकट्ठा होकर अपने दिनचर्या के बारे में बात करती हैं, अपने किस तरह से जीविका उपार्जन बढ़ाया जाए उसके बारे में बात करती है। एक तरीके से समूह को संगठित करने का कार्यक्रम लिया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का ये कार्यक्रम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और इसमें हम लोगों ने पिछले कई सालों में उनके समूहों को संगठित करने का बहुत अच्छा काम किया और अब हम आजीविका की ओर अपना ध्यान देकर जा रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक महिलाओं को, जो हमारी ये 7 करोड़ महिलाएं हैं, उनको हम आजीविका का कोई ना कोई साधन उपलब्ध करा सकें। तो हमारे सारे प्रयास पोस्ट
3: जी, तो ये तमाम प्रयास हैं जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं ताकि हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी, क्या किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
2: मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगी कि पिछले 4-5 सालों से हम लोगों ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का प्रारंभ किया
3: जी।
2: और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए, कई राज्यों में इसकी परियोजनाएं ली गई और इस परियोजना के माध्यम से हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज ये कि हम इस बात को समझें या समाज इस बात को समझे कि महिलाओं की भागीदारी कृषि में बराबर की है और उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि 70% महिलाएं जो है वो एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन के साथ में जुड़ी हुई है। तो हम लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं और हम लोग ऐसी प्रकार की खेती जिसमें की लागत कम हो, जिसमें की वातावरण को उतना नुकसान ना हो और इकोलॉजिकली जो साउंड प्रैक्टिसेस हैं हम वो उनको अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी कृषि सखियां तैयार हुई, हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, ऐसे लोग जो कि समुदाय से ही आते हैं, समुदाय के बीच में रहते हैं और समुदाय में जाकर कुछ ट्रेनिंग हम उनको देते हैं और फिर वो जाकर उस ट्रेनिंग को वहां पर रेप्लिकेट करवाते हैं या दूसरे लोगों को और ट्रेन करते हैं, जिससे कि ज्यादा ज्यादा लोगों को इन एग्रीकल्चर इकोलॉजिकली प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता लग पाए। तो ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का हमारा कार्य चल रहा है, इसमें कई महिलाएं हमारे साथ में, करीब 60 लाख महिलाएं हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई है और निरंतर जुड़ती जा रही है महिलाएं। जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया तो उसके साथ साथ में अब ये हुआ कि हम लोगों को कृषि विभाग के साथ में मिलकर कुछ और गतिविधियों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो अब हम लोग का जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है कि हम अपनी कृषि सखियों को और ट्रेन करें और ज्यादा अपनी महिलाओं को ट्रेन करें, दीदियों को ट्रेन करें, कृषि सखी बनाए, जो कि कृषि की जो बातें हैं, जो सूझबूझ की बात है कि किस प्रकार का बीज उपयोग किया जाए, किस प्रकार की खाद उपयोग की जाए, उसके बारे में उनको जानकारी हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात होती है, सॉइल टेस्टिंग की बात होती है, हम उनके साथ में मिलकर ये काम करें। एक इसमें बहुत अच्छा एक हमारा अनुभव रहा है, हम लोगों ने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए, क्योंकि क्या होता है गाँव में जो हमारी दीदियां हैं उनके पास में इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी नहीं होते, बहुत छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स होते हैं लेकिन वो उनके पास में नहीं होते। तो कस्टम हायरिंग सेंटर हुआ, यानी कि गांव में एक ऐसा समूह बनाया गया जहां पर कि एग्रीकल्चर औजार या इम्प्लीमेंट्स रहे और लोग अपना इसको थोड़े से फीस के साथ में या किराए के साथ में ले जाएं, गांव में लोग इसका उपयोग करें। सो हमारी सबसे बड़ी भागीदारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में यहाँ पे शुरू हुई, उनकी जो एक आत्मा योजना है उसके तहत हम लोग फाइनेंसिंग इन स्वयं सहायता समूह को किया गया। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में कई राज्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बहुत अच्छा काम हुआ है और आज जो ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स है वो रेवेन्यू अर्न करने की स्थिति में भी आ गए हैं।
3: लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें इन तमाम नीतियों का या फिर कहें योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ मिल सके, इसके लिए उन्हें किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, इस पर आप क्या कहेंगे?
2: बहुत, ये तो सबसे बड़ा मूल मुद्दा यही है कि किस तरह से इन महिलाओं को बता सके कि ये योजनाएं हैं और अब आप इनका फायदा उठाए। इसमें दो चीजें, एक तो हम प्रोजेक्ट मोड में कर रहे हैं जिसमें कि हम नीचे जाकर इन महिलाओं के साथ में काम कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, हम लोगों ने कुछ प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस भी बनाए, बड़ी कंपनियां बनाई है, करीब 6 कंपनियां हमने पहले आज से 2-3 साल पहले प्रवृत्त की थी जो कि सभी आज रेवेन्यू अर्न करने की स्थिति में आ गई है। 6 प्रोड्यूसर कंपनीज हमने इस साल भी प्रमोट की है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, जिसमें हमारी सब महिलाएं ही भागीदार है और आगे भी इस प्रकार की 40 तो बड़ी कंपनियां हम बनाने वाले हैं और इन कंपनियों में किस प्रकार का काम होगा, क्या प्रोडक्ट होंगे, ये इन महिलाओं के सहभागिता से हम लोग काम करें, मतलब कि ये प्रोजेक्ट मोड पे है। लेकिन जो हमारी आम महिलाएं हैं, आम बहनें हैं जिन तक हमें पहुंचना है, यानी हमारा उद्देश्य तो हर महिला तक पहुंचने का है, उनके लिए हमारे जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं, हमारे फार्मर ट्रेनिंग स्कूल्स जो विलेज लेवल पे फील्ड फार्मर ट्रेनिंग स्कूल हम इनको बोलते हैं, हमारे कुछ आरसीटी के माध्यम से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हर जिले में है उनके माध्यम से हम प्रशिक्षण के कार्य ले रहे हैं और हमारा जो एक चैनल बना हुआ है, जैसे स्वयं सहायता समूह होते हैं 10-15 महिलाएं होती है, उसके ऊपर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, 10-15-20 के ऊपर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है और फिर ऐसे ही 15-20 विलेज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है जो कि ज्यादा करके एक ब्लॉक में 2 या 3 होते हैं या कहीं पर एक भी है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो ये जो फेडरेटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो विभिन्न चरण है या विभिन्न स्टेजेस हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के, इनके माध्यम से ये हमारी बड़ी मजबूत कड़ी है। हम इनके तक पहुंचते हैं, हम इनको बातें बताते हैं और फिर वो नीचे कैस्केडिंग इफेक्ट से हमारी महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास करते हैं।
3: अंतिम सवाल मैम आपसे करना चाहेंगे कि 15 अक्टूबर को निश्चित किया गया है कि महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाए, तो ऐसे में हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके मनोबल को बढ़ाने में ये कदम कितना कारगर साबित होगा और इसके जरिए आप हमारी जो महिलाएं कार्यक्रम देख रही हैं उन्हें किस तरह का संदेश देना चाहेंगी?
2: देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जब हम सभी लोग ग्लोबल पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, उस समय में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही ऐसी है जो कि किसी तरीके से खड़ी रही। आपको मालूम है ग्लोबल सप्लाई चेन्स हमारी ब्रेक हुई लेकिन लोकल सप्लाई चेन्स ने उनको सप्लीमेंट किया। आज हम लोगों के पास में शहरों में जो भी चीजें आ रही है वो लोकल सप्लाई चेन से आना शुरू हुई। इसमें जो हमारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है या प्रधानमंत्री जी ने जो एक अवधारणा आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है उसमें हमारी सब महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमारा देश गांव में रहता है, हमारी महिलाएं अधिकांश हमारे पूरी पॉपुलेशन का करीब करीब 69% 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। हमारी जो महिलाएं हैं जिनके लिए कार्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं उनको ये भी देखा गया है कि आज की तारीख में कृषि पर बड़ी तरीके से निर्भर है। यदि कृषि पर हमारी निर्भरता है तो हमें जरूरत है कि आज जो बहुत सारे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनका फायदा लेते हुए उन्नत कृषि की ओर, उन्नत या डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स लेकर और दूसरा एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर, यानी कि जहां पर कि ना केवल गेहूं और चावल हो बल्कि दालें भी हो, वहां पर सब्जी भी हो, वहां कुक्कुट पालन भी हो, तो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज हो। और सभी को शुभकामनाएं महिलाओं को हमारे 15 अक्टूबर के लिए।
1: किसान साथियों, जैसा कि ये अभी आपने जाना कैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारी जो महिला किसान है उन्हें अग्रणीय करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, साथ ही अलग अलग प्रकार के उन्हें स्वसहायता राशि भी प्रदान की जा रही है। तो हमें बस मेहनत करने की आवश्यकता है, हमारी महिलाओं का हमें मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है और उन्हें आगे करने की आवश्यकता है। जो भी कार्य वो लोग कर रहे हैं उसमें हमें पूर्णतः उनके सहयोग की आवश्यकता है। इसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याभील 90.8 FM के साथ।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्याभील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, हम ब्रेक पर जाने से पहले लगातार चर्चा कर रहे थे किस तरीके कैसे हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें अग्रणीय करने के लिए अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से यह प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी जो महिला का जो सशक्तिकरण है, क्योंकि हमारे ग्रामीण महिलाओं के का जो मूल आय का स्रोत है वह कृषि है, तो इसमें अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहायता राशि की मदद से उन्हें आगे लाने के प्रयास चल रहे हैं। तो किसान साथियों, आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: हमारे संस्थान की प्रमुखता रही है, जैसा कि मेरे सुनेजा मैडम ने बताया, कि जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय और फार्मर कल्याण मंत्रालय है
3: जी।
2: तो हमारे संस्थान का ये है कि जो नीतियां निर्धारित होती हैं केंद्रीय सरकार से, उसको उन सारी नीतियों को हम लोग मूर्त रूप देते हैं गांवों में जाकर के किसानों के खेत पे उनके साथ भागीदारी करके। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा संस्थान एक सही विंडो सिस्टम है, हमारे यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो हर क्षेत्र के माहिर हैं और वो किसानों के खेतों पे गांवों में जाकर के उनकी समस्याएं को खुद उनसे बातचीत करके लेके आते हैं और समस्याएं प्राप्त होने के बाद फिर अपना वो शोध कार्यक्रम बनाते हैं। उसके बाद शोध कार्यक्रम में हमारी प्राथमिकता ये है कि जो उनकी समस्या है उसको सोल्यूशन मोड में, कि हमको 2 साल में या 3 साल में उनको कोई सोल्यूशन देना, जिससे कि वो कृषि की धारा में मुख्य रूप से जुड़ पाए। और मैं अभी भारत सरकार की बात करना चाहूंगा तो ये ICR की, तो ICR एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी नेशनल लेवल पे कृतज्ञ कृषि तकनीकी ज्ञान की एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये नेशनल लेवल पे है और जिसमें ये संस्थान को भी मौका मिला है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में एज ए मेंबर। तो इसमें पार्टिकुलरली ऐसी चीजों को ध्यान दिया जाएगा जो महिलाएं खेती किसानी में काम करती हैं और उनकी जो ड्रजरी है, कार्य करने की क्षमता कैसे बढ़े और जो ड्रजरी है उनको काम करने के टाइम में जो उनको दुख तकलीफ होता है वो कैसे कम किया जाए। तो ये इसलिए 5 जोन पे ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और उसमें फिर नेशनल लेवल पे इसमें अवार्ड की भी व्यवस्था की गई है और इसमें जो प्रथम पुरस्कार है 5 लाख रुपए का है, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए का है और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का है और इसका जो घोषणा होगी ये 1st week of December में होगी। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था और उन्होंने अपने किसी संबोधन में आह्वान भी किया है कि हमारे कृषि में प्रमुखता ये होनी चाहिए कि महिलाओं की जो ड्रजरी है उसके लिए कौन कौन से तकनीकी ज्ञान है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो उनके कठिन कठोर साध्य क्रम को कैसे कम किया जाए।
3: तो आपने यहाँ पर जिक्र किया कि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें कई तरह की सहूलियतें, यहाँ पर कहें कि आर्थिक रूप से भी सहायताएं मुहैया कराई जा रही है। शुरुआत में आपने जिक्र किया कि यंत्र जो हैं हमारी महिलाओं की आसानी के लिए बनाए गए हैं, उनको दिए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकें। क्या इसके लिए भी किसी तरह की सब्सिडी दी जाती है?
4: हाँ, इसकी भी सब्सिडी है और हमारा एक ICR का एक इंस्टीट्यूट है सिफिट, वहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं जो मतलब लो कॉस्ट भी हैं, उनमें से कई लो कॉस्ट भी हैं और जो जिनकी कीमत अधिक है उसके लिए भी सहायता सरकार से मिल सकती है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के को तो इस तरह की सब्सिडी मिलती है सरकारी संस्थाओं द्वारा।
3: जी बिल्कुल, तो हमारी महिलाओं को यहाँ पर अनुदान राशि भी दी जाती है ताकि हमारी महिलाएं तमाम तरह की जो कृषि संबंधित यंत्र हैं वो आसानी से ले सकें और उनका इस्तेमाल करके कृषि के कार्य और आसानी से कर सकें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और पूजा जी का रुख करना चाहूंगे। पूजा जी, खेती किसानी का कार्य करें या फिर हम बात करें महिलाओं को कृषि के से संबंधित व्यवसायों में कार्य करने की ही, तो किस तरह की चुनौतियां आती हैं महिलाओं के सामने, इसके बारे में आप जिक्र करें ताकि आपके अनुभव हमारी महिलाएं सुन सकें।
5: जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, परेशानियां तो उनको आएंगी क्योंकि वो गांव से जब बाहर निकलती हैं, एक तो वो घूंघट पर्दे में होती हैं और पर्दे से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है लेकिन निकल जाती हैं महिलाएं, और निकलना पड़ेगा उनको क्योंकि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए यही मतलब एक अच्छा मौका है। वो स्वयं सहायता समूह से जुड़े, और जैसे हमारी महिला किसान हैं, वो खेती बाड़ी में जो भी चीजें पैदा करती हैं उनको मूल्य संवर्धन करके मार्केट में दें, तो किसानों को मेरे हिसाब से मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, उनको मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही उनको मतलब रैली वगैरह में जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से
3: जी।
5: तो क्यों ना महिलाएं समूह में जुड़ें और काम करें।
3: आइए बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी डॉक्टर सुनेजा का। डॉक्टर सुनेजा, अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, अगर हम खासतौर पर यहाँ पर बात करें या फिर साथी जो संबंधित व्यवसाय होते हैं जैसे पशुपालन वगैरह है, इसमें ज्ञान और कौशल के लिए वित्तीय जो हमारी व्यवस्था है उसके लिए क्या किया जा रहा है हमारी सरकार द्वारा?
6: महिलाओं को कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी सहायक धंधे, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुकर पालन, बकरी पालन, इन सब विषयों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए और वो वित्तीय सहायता विभिन्न स्कीमों में दी जा रही है कि उसका फायदा वो उठा सके, उसके लिए सरकार की एक आत्मा नामक एक योजना है जिसको कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के नाम से जाना जाता है, आत्मा के नाम से बेहतर जाना जाता है। ये सब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक हिस्सा है। इस योजना में चूंकि महिलाओं की हर राज्य में हर जिले में एक अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग तरह की उनको जानकारी और प्रशिक्षण चाहिए, इसलिए एक महिलाओं की जो एक समर्पित पद महिला समन्वयक का पद 2014 में जब मोदी सरकार ने आत्मा स्कीम का संशोधन किया था उसमें ये विजन किया गया था, ताकि उस राज्य में, राज्य के हर जिले में और जिले के हर ब्लॉक में महिला विशेष समस्याओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। इसी के साथ साथ महिलाओं की क्या जरूरतें हैं ब्लॉक स्तर पर उसको कार्य योजना में शामिल करने के लिए जितनी भी ब्लॉक स्तर पर फार्मर एडवाइजरी कमेटी बनाई गई हैं, उसमें कम से कम 30% महिलाओं का नामांकन और भागीदारी आवश्यक है। किसी राज्य सरकार को तब तक वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती जब तक इस आत्मा स्कीम के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व इन समितियों में नहीं होता
3: जी।
6: जब महिलाएं कार्य योजना बनाने में शामिल होती हैं, तो वो अपनी प्रशिक्षण संबंधी, अपनी ऋण संबंधी और उनकी जो सूचना संबंधी जितनी भी जरूरतें हैं उनको वो बकायदा बता सकती हैं, उस कार्य योजना में शामिल करा सकती हैं। इसी आत्मा के जरिए सरकार के जितने मिशन और उप मिशन है, जैसे खाद्य सुरक्षा मिशन है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स ऑयल पाम है, बीज और रोपण सामग्री उप मिशन है, पौध संरक्षण उप मिशन है, एग्रीकल्चर स्कीम ऑन मार्केटिंग है,
3: तो
6: कुछ स्कीमों में जो विशेष सब्सिडी महिलाओं को दी जा रही है जो पुरुषों से अधिक है, उसका फायदा भी उठाने के लिए आत्मा के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और आत्मा के महिलाओं की जानकारी
3: जी बिल्कुल। तो महिलाओं तक जानकारियां यहां पर पहुंचाई जा रही हैं, और हम कहें यहां पर वित्तीय सहायता की तो महिलाओं को ये भी प्रदान की जा रही है ताकि वो स्वावलंबी हो सके। और ऐसी विषय में मैं डॉक्टर श्रीवास्तव से जानना चाहूंगी। डॉक्टर श्रीवास्तव, महिला किसानों को स्वावलंबी बनाने में राज्य सरकारों के योगदान पर आप प्रकाश डालें।
7: ये मैडम बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि केंद्र सरकार जो काम करती है या केंद्र सरकार के जो संस्थान काम करते हैं, बिना राज्य सरकारों के सहयोग से किसान महिलाओं तक पहुंचना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसको लेकर के आए, जैसे मैं बात कर रहा था कि शेड्यूल कास्ट का प्लान, उसमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वुमेन जो है उनको हम अपने संस्थान में लाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के लिए हमको ये शेड्यूल कास्ट का प्लान के अंतर्गत महिलाएं कहाँ से मिलेंगी, तो हम राज्य सरकारों के साथ संपर्क करते हैं ब्लॉक लेवल पे और उनके पास एक शेड्यूल कास्ट का पूरा लिस्ट बना रहता है, वहां से हम सिलेक्ट कर लिए और उनकी जो समस्या होती है 20-20 के ग्रुप में हम समस्या वाइज उनको अपने संस्थान में बुलाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और उनका जो क्रिटिकल इनपुट है जो उनको बहुत जरूरत है जिसकी वजह से वो अपने इनकम को दोगुना कर पाएंगे उसको हम उनको क्रिटिकल इनपुट 100% देते हैं। और जहां तक सब्सिडी की बात है तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी ज्ञान है, इसको हम राज्य सरकार के साथ साझा करते हैं। हमारे यहाँ जो ऑलरेडी एक हर महीने में एक बैठक होती है स्टेट लेवल रिसर्च एंड एक्सटेंशन कमेटी की एक मीटिंग होती है जिसमें राज्य सरकार के सभी उच्च पदाधिकारी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, वाइस चांसलर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के होते हैं, प्लस आईसीआर संस्थान के सभी निदेशक होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं। तो उसमें यह चर्चा होती है कि आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या तकनीकी है जो स्टेट लेवल टेक्नोलॉजी कमेटी को हम लोग जिस और संस्थान के माध्यम से देते हैं और स्टेट लेवल टेक्नोलॉजी कमेटी उसमें से सिलेक्शन करके, वैलिडेशन करके, टेस्ट करके अपने यहाँ उसको रिकमेंडेशन में पॉलिसी एंड प्रोग्राम में डालती है और उसके बाद कितनी सब्सिडी किस चीज पे दी जाएगी वो स्टेट डिसाइड करता है और इस तरह से सब्सिडी मिलने के बाद वो टेक्नोलॉजी ग्रास रूट लेवल तक महिलाओं तक पहुंच पाती है। तो मैडम ग्रास रूट तक पहुंचने के लिए स्टेट का बहुत बड़ा योगदान है, उसके बिना योगदान के बिना हम लोग सीधे गांव तक पहुंच नहीं सकते हैं या टेक्नोलॉजी या तकनीकियां हमारी कुछ हद तक तो पहुंच पाएंगी थोड़ा सा बोलने के लिए, लेकिन जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है या डबलिंग द फार्मर्स इनकम की बात है तो हमको केवल 10-20 लोगों का नहीं करना है, पूरे देश के लिए करना है, पूरे देश की 50% महिलाओं के लिए करना है। तो हमें बहुत ही जरूरी है कि हम स्टेट के साथ अपना कोलैबोरेशन बनाएं और उनके माध्यम से ही हम ग्रामीणों तक पहुंचें।
3: जी, तो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं ताकि जमीनी स्तर पर जो तकनीकों की जानकारी है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो पहुंच सके और न केवल हमारे किसान बल्कि हमारी महिला किसान भी यहां पर आत्मनिर्भर बन सके।
1: जी हाँ, न केवल किसान बल्कि हमारी जो महिला किसान है वह कैसे सशक्त बन सके। महिला किसान सशक्तिकरण पर काफी जोर दिया जा रहा है, साथ ही प्रशिक्षणों के माध्यम से भी हमारी जो महिला किसान है उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षण देकर कैसे अपनी कृषि में वह बदलाव ला सके, साथ ही कृषि में जो उन्नत कृषि है उसे कैसे किया जा सके और जो महिला जो हमारी महिला किसान है उनको आगे करने के लिए हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो भी जोरों शोरों से लगा हुआ है। तो किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में बस इतना ही, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडा भील 90.8 FM के साथ छाबवा की आवाज पर।

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, आज के कलाकार का एक बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही मधुर कार्यक्रम मैं लेकर

0: पर हाजिर हूँ आपका दोस्त समीर। और आज हमारे साथ जो टैलेंट, जो प्रतिभा, जो गायिका मौजूद है वो है गौरी जी। बातचीत होती रही तो बस मैं गौरी जी को गौरी माँ कह बैठा, अच्छा लगा मुझे। तो बस चलिए, मेरे लिए तो मैं वो माँ ही हो गई, अब मैं उनको गौरी माँ ही बुलाऊंगा। बाकी की बातें हम गौरी माँ से करेंगे। और गौरी माँ, आपका बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सभी सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ना, आप कौन हैं,
1: yes.
0: कहाँ हैं, क्या करते हैं आप?
1: Yes. सबसे पहले मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मुझे माँ कहा। आई थिंक दैट्स अ प्रिविलेज गिवन टू मी।
0: आई थिंक प्रिविलेज इज माइन।
1: और मैं बंबई की हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, ऑलवेज लिव्ड हियर। और प्रेफरेबली वुड लाइक टू कंटिन्यू टू लिव इन मुंबई एज लॉन्ग एज आई लिव।
0: ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो आप अभी क्या करते हो माँ? I mean, what are you doing right now?
1: I am retired now.
0: But not tired.
1: No, definitely not.
0: बिल्कुल ठीक है.
1: Definitely not. I had a Monjini's cake shop.
0: अरे वाह.
1: In one of the buildings in my colony itself.
0: Okay.
1: Which I ran, वो 30 साल मैंने चलाया. तो अभी 23 में we had some family problems, I should say. And means I couldn't manage. मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो मुझे लगा इट्स नॉट फेयर टू कंटिन्यू, तो मैंने वो बेच दिया आउटलेट।
0: कोई इशू नहीं। मुंबई में कौन से मेरे ख्याल से आपने बताया होगा, शायद मैं भूल गया, कौन सी जगह पर मुंबई में? आई मीन कांदीवली, बोरीवली, खार,
1: अंधेरी।
0: अंधेरी,
1: अंधेरी,
0: अंधेरी इज अ हैपनिंग प्लेस। बहुत कूल।
1: आई लिव इन अंधेरी ईस्ट।
0: अंधेरी ईस्ट, वाह। साकीना का या कहाँ?
1: हाँ, उतना दूर नहीं। Okay.
0: अच्छा अच्छा, क्योंकि काफी समय पहले मैंने मुंबई में काम किया एक साल के लिए, तो मेरा ऑफिस भी अंधेरी ईस्ट में ही था। पहले तो वो कौन सा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है ना, उसके ठीक सामने था।
1: यस यस यस।
0: उसके बाद वो साकीना का शिफ्ट हो गया था। फिर इसके बाद वापस वो लोग शायद इधर आ गए थे। एनीवेज, तब तक मैंने छोड़ दिया था। एंड आई यूज्ड टू लिव इन कांदिवली ईस्ट।
1: ओके,
0: चलिए। एनीवेज दोस्तों, आपने जाना कि गौरी माँ कहाँ हैं, क्या करती हैं। और आगे बढ़ते हुए पहले हम गौरी जी के गाए हुए इन गीतों का आनंद उठाएं, उसके बाद हम वापस आएं और उनके बारे में जानने के लिए, उनके संगीत को जानने के लिए। पेश करता हूँ ये गीत

0: बहुत सुंदर गायकी और बहुत ही सुंदर प्रारंभ। गौरीमा मुझे आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ। अच्छा मुझे ये बताओ गौरीमा कि संगीत की यानी कि म्यूजिक की यानी कि आपकी गायकी की यानी कि आपकी सिंगिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से गा रहे हैं आप, किसने आपको मोटिवेट किया या किसने आपको कहा कि बस अब गाना शुरू कर दीजिए?
1: मेरा अभी 2022 में मैंने सबसे पहले मुंह खोला गाना गाने के लिए।
0: अच्छा।
1: बिफोर दैट आई डिडंट सिंग एट ऑल।
0: ओके।
1: और मेरी माँ एक्चुअली आई थिंक इज माई द वन हु मोटिवेटेड मी मोस्ट। तो उन्हें मैं ऐसे अनप्लग्ड गाने गा के जस्ट रिकॉर्ड करके सुनाती थी।
0: ओके।
1: तो वो इतनी खुश होती थी एवरी डे शी यूज्ड टू आस्क मी और किया क्या रिकॉर्ड, आज रिकॉर्ड किया क्या, आज रिकॉर्ड। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। फिर मेरी बड़ी बहन है तो वो स्टार मेकर की मेंबर थी, तो शी टोल्ड मी टू अबाउट स्टार मेकर। शी literally pressurized me into joining Star Maker or I was very happy because it's a lovely platform. और मेरी अभी समदन है नमिता।
0: okay.
1: जो जिसने मुझे ये ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया, ये फैमिली में इंट्रोड्यूस किया। और दिस फैमिली इज लिटरली नाउ माई एक्सटेंडेड फैमिली। वेरी वेरी नाइस पीपल।
0: Beautiful.
1: यतीन जी हैं, शीतल हैं।
0: ओके।
1: शीतल को पिकर।
0: यतीन
1: वेरी नाइस पीपल। यतीन नाडकर्णी।
0: ओके ओके।
1: बैंगलोर में हमारे कैप्टन हैं। को कैप्टन शीतल को पिकर है जो मुंबई में।